नमस्कार, सुप्रभात। FM 103 MHz पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 25वीं तिथि तदनुसार 16 अगस्त सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 5:58 और 53 सेकंड हो चुके हैं। इसी के साथ ही आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अपने संबोधन में श्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने एक संकल्प और समर्पण के साथ देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल देश ने नई रफ्तार पकड़ी है और नई गति से आगे बढ़ाए। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मोबाइल विनिर्माण तक हर क्षेत्र में कई गुणा उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर प्रधानमंत्री ने

0: कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के तहत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
1: हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा चाहते हैं कि वो भारत में हो, और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
0: मंत्री ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तब पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने एक दशक के भीतर ही 100 करोड़ देशवासियों को सामाजिक सुरक्षा का कवर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की वजह से भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता और पारिवारिक रिश्ते इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार जताया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भी शामिल हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। इनके अतिरिक्त नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले का कल समापन हो गया। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में एआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध करने और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुराब में हुए हवाई हमलों के वीडियो इस बात का प्रमाण है कि बलूचिस्तान में स्थानीय आबादी के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की गई। भारत श्रीलंका के बीच खेले जा रहे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। 2 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। बारिश के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। कृषि की कुछ बातें, खेती की बातें कार्यक्रम के तहत आइए जानते हैं। नर्सरी प्रबंधन और प्रवर्धन, आलेख और वाचन स्वर प्रतिमा वर्मा का है। पूर्व प्रसारित यह जानकारी है।
3: तमाम किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, फल उद्यान की सफलता नर्सरी पर आधारित है, अतः नर्सरी की भूमिका किसी भी उद्यान के संस्थापन में अहम होती है। नर्सरी में पौध उत्पादन के सही तरीके का इस्तेमाल करते हुए पौध तैयार किए जा रहे हैं या नहीं, इस बात पर ध्यान देना अति आवश्यक है। नर्सरी पौध प्रबंधन करने का विशेष क्षेत्र होता है, जिसमें विशेष रूप से देखभाल और उचित प्रबंधन में पौधे से पौध तैयार किए जाते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, फलों की नर्सरी तैयार करने के लिए कुछ विशेष बातों पर ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, जैसे बीज की क्यारी, वृक्ष लगाने का क्षेत्र, रास्ते और सड़क, सिंचाई की नाली, पानी निकास नाली, सिंचाई व्यवस्था, खाद के लिए गड्ढे, पौध संरक्षण और अन्य देखभाल। बिल्कुल किसान भाइयों, फल नर्सरी स्थापित करने के लिए स्थल का

0: चयन होना अति आवश्यक है। इसमें मुख्य रूप से भूमि के प्रकार का ध्यान देना आवश्यक है जो उत्तम प्रकार की हो, जैसे दोमट या बलुई दोमट मिट्टी जिसमें पानी निकास की सुविधा हो और कंकरीली पथरीली ना हो। इसके साथ ही आवागमन के साधन से परिपूर्ण हो, जिससे आसानी से पौध तैयार कर किसी भी स्थान पर मांग के अनुरूप पौधा भेजा जा सके। किसान भाइयों, एक बात हमेशा ध्यान में रखें, बीज की क्यारी जो मूल वृंद के लिए उगाई जाती है खुले स्थान में होनी चाहिए, जिससे पर्याप्त रोशनी मिल सके। इसके साथ ही क्यारी में पर्याप्त नमी और खाद तथा उर्वरक का प्रबंध भी रखना चाहिए। किसान भाइयों, कलम काटने के उपरांत पौधों को आंशिक छायादार स्थान पर ही रखें। एक फल की विभिन्न किस्मों की अलग अलग क्यारी बनाएं। क्यारी का इस प्रकार रेखांकन करें कि सभी के रास्ते मुख्य रास्ते में मिलते हों। इसके साथ ही मिट्टी, रेत एवं खाद मिलाने और भरने के अलग स्थान होने चाहिए। किसान भाइयों, नर्सरी की सिंचाई बरसात के दिनों को छोड़कर आवश्यकता के अनुसार सुबह शाम करनी चाहिए, जिससे नर्सरी में उचित नमी बनी रहे। आदर्श फल नर्सरी के लिए आवश्यक बात यह है कि पैतृक वृक्ष जिससे कलम या शाख ली जानी हो वह नर्सरी के अंदर हो। किसान भाई, उसके साथ ही नर्सरी में क्यारी चक्र भी अपनाया जाना चाहिए, जिससे स्वस्थ पौधे के निर्माण में सहायता मिल सके। खाद का गड्ढा एक कोने में रखें और स्वयं की खाद बनाकर सड़ी खाद का प्रयोग करना चाहिए। रोगग्रस्त पौधे से किसी भी दशा में शाख का चुनाव कभी ना करें। पौधों को समय समय पर उचित खाद और उर्वरक देते रहना चाहिए। पौधों पर समय समय पर कीटनाशक और रोगनाशक दवाओं का प्रयोग भी करते रहें। बीजों को उपचारित करने के बाद ही क्यारी में लगाएं। पानी निकास का प्रबंधन उचित रूप से करें। किसान भाइयों, नर्सरी के प्रवर्धन से तात्पर्य इस बात से है कि नए पौधों को अधिक से अधिक मात्रा में बीज एवं वानस्पतिक प्रवर्धन के माध्यम से तैयार किया जा सके। जी हाँ, किसान भाइयों, बीज द्वारा प्रवर्धन करने से बीजों में भिन्नता पाई जाती है, जिसे बीजु पौधे या सीडलिंग कहते हैं, तथा फलन देर से आती है। इसके साथ ही पौधों के किसी वानस्पतिक भाग जैसे तना या जड़ से जब प्रवर्धन करते हैं तब मातृत्व पौधे में पूर्ण रूप से समानता पाई जाती है, परंतु कुछ पौधे में आसानी से वानस्पतिक प्रवर्धन संभव नहीं हो पाता है। वानस्पतिक प्रबंधन को अपनाकर कम समय में मांग के अनुरूप अधिक से अधिक पौधों को तैयार किया जा सकता है। साथ ही जिस पौधों से पौधा तैयार किया जाता है उसके गुण जैसे पौधे में समानता और फल में समानता पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप अच्छी प्रजातियां के पौधे आसानी से किसी जगह पर तैयार कर लगाते हुए आसानी से उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। इसके द्वारा तैयार पौध में फलन शीघ्र प्रारंभ हो जाती है। किसान भाइयों, कलम द्वारा पौधों के प्रवर्धन की विधि एक आसान प्रक्रिया है। इसमें पौधों के वानस्पतिक भाग या तना, परिवर्तित तना और जड़ के किसी भी भाग को अलग कर पृथक रूप से भूमि या तैयार क्यारी में लगाकर उपयुक्त वातावरण देने पर पूर्ण रूप से नया पौधा विकसित हो सकता है। इस प्रक्रिया में तैयार पौध मातृ पौध के समान ही मिलते हैं। कुछ पौधों में आसानी से यह विधि अपनाई जाती है, जैसे अनार, अंजीर, अंगूर एवं नींबू वर्गीय फल। किसान भाइयों, इस प्रकार कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देकर हम फलों की नर्सरी का प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में आज बातें बस यही तक। दीजिए हमें अनुमति।
1: नर्सरी प्रबंधन एवं प्रवर्धन, अभी आप सुन रहे थे कृषि की बातें कार्यक्रम, खेती की बातें कार्यक्रम के तहत कृषि संबंधी कुछ जानकारी। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। रामचरितमानस गान का पाठ, आइए अब आपको सुनवाते हैं गोस्वामी तुलसीदास कृत।

भरत के साथ अयोध्या का समस्त समाज अवधपुरी के मार्ग पर उदास लौट रहा है। सभी श्री राम के विरह में विह्वल हैं। ऐसी मनोदशा में स्नान भोजन की सुधि किसे होगी? यमुना, गंगा तथा गोमती को पार कर चौथे दिन लोग अयोध्या पहुंचे। मंत्री गुरुवर वशिष्ठ की देखरेख में भरत को राज्य सौंप सहेज कर मिथिलापति चार दिनों बाद तिरहुत लौट गए। भरत ने श्री राम की चरण पादुका को सिंहासन पर स्थापित करके गुरुजन तथा माताओं की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर धर्म

गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस गान का पाठ अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है, प्रस्तुत है आज का चिंतन।

अहंकार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत में अहम अर्थात मैं से हुई है। मैं में केंद्रित होने वाला व्यक्ति अहंकार रूपी रोगों से ग्रसित हो जाता है। छोटा सा बच्चा जब वह जन्म लेता है तो उसके भीतर किसी तरह का कोई भी अहंकार नहीं होता, निश्चल होता है उसका मन। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वह बड़ा होता है, उसके अंदर भी प्रतिस्पर्धा का भाव जगने लगता है, कुछ अलग करने की, दूसरों से अलग दिखने की, और धीरे धीरे उसके अंदर भी अपने भाई बहनों के प्रति प्रतिस्पर्धा के भाव आ जाते हैं, यानी उसके अंदर भी अहंकार का बीज

करने लगता है। शुरू में तो यह भाव आवेग हमारे वश में होता है, पर समय बीतने पर यह इतना बलशाली हो जाता है कि हम उसके अधीन हो जाते हैं। हमारे सारे कार्यकलाप ही अहंकार पूर्ति से प्रेरित होने लगते हैं। अहंकार वह पात्र बन जाता है जो कभी भी भरने का नाम ही नहीं लेता। धन, पद, प्रतिष्ठा, यश पाकर भी हम हमेशा अतृप्त रह जाते हैं। जीवन उस मरुस्थल की तरह, रेगिस्तान की तरह बन जाता है, जिसमें अहंकार तृप्ति की प्यास मृग तृष्णा की जैसे बन जाती है। अहंकार से मानव रोगों से ग्रसित होने लगता है। अहंकार के बलवती होने से जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण और जटिल हो जाता है। अहंकार के मद में हम और अधिक गहरे डूबते चले जाते हैं। हमारे अंदर ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, ये सब लक्षण उभरने लगते हैं जो अहंकार के कारण होते हैं। अहंकार के चक्रव्यूह को तोड़ पाना आसान नहीं है। उसके लिए सबसे पहले मन में नम्रता, समर्पण और त्याग को अपनाना होगा, और जब हम इसे अपनाएंगे तभी हमारे अंदर का अहंकार मिटेगा। क्योंकि यह अहंकार हमारे मन मस्तिष्क में छुपा हुआ होता है, इसलिए हमें अपने मन मस्तिष्क को साफ रखना होगा, किसी के प्रति किसी प्रकार का द्वेष नहीं पालना होगा, तभी जाकर हमारे अंदर का अहंकार मिटेगा। अहंकार से छुटकारा पाने के लिए हम अपने इस सुंदर शरीर से, जो कि सांसारिक है, और ये पद प्रतिष्ठा जो कि क्षणभंगुर है, इससे हम बच कर रहें। यानी जब हमारे अंदर ये भाव आ जाएगा कि ये सब तो बस दिखावे के लिए ही है, तो हमारे अंदर अहंकार नहीं पनप पाएगा। अंतर मन की आत्मा से जो व्यक्ति जुड़ जाता है उसके अंदर अहंकार नहीं जम हो पाता है। अहंकार का अंधेरा अपने आप छटने लगता है यदि हम उस प्रकाश को महसूस कर लें, लोगों के प्रति ईर्ष्या को दूर कर दें, सभी को अपना समझें, तब जाकर हमारे अंदर का अहंकार मिटने लगता है। इसलिए अपने अंदर के अहंकार को मिटाने के लिए हमें समभाव की नीति अपनानी होगी। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई निर्धन नहीं, कोई धनी नहीं, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, सभी समान हैं और अपने अपने कार्य क्षेत्र में, कार्य यात्रा में वो लगे हुए हैं। और जब हम ऐसा सोच पाएंगे तो हम अहंकार से रहित हो जाएंगे।

अहंकार। अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, वाचन और संकलन निर्मला तिवारी का था। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना में आइए सुनते हैं कुछ आरतियाँ।

0: तुलसी महारानी की आरती के साथ ही आराधना कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आपको जानकारी दिलवाएं दांतों की देखभाल पर। डॉक्टर सिबगातुल्लाह बातचीत कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों नमस्कार। हर व्यक्ति अपने आप को खूबसूरत दिखना चाहता है और यदि आपके दांत चमकीले हों, मोती जैसे चमक रहे हों, तो यही दांत आपके खूबसूरती को बहुत बढ़ा देता है। यदि आपके दांत चमकीले और स्वस्थ हैं तो हर व्यक्ति अपने आप को आत्मविश्वास से भरा हुआ पाता है। तो आज हम बात करेंगे कि आपके दांत कैसे स्वस्थ रहें, कैसे चमकीले रहें और किन किन बातों का ध्यान रखा जाए और खान पान में किन चीज़ों का सेवन किया जाए ताकि आपके दांत स्वस्थ रहें और आप भी स्वस्थ रहें। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आमंत्रित हैं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सिबगतुल्लाह। डॉक्टर साहब स्वागत है।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब। दांत मोतियों जैसे हमेशा चमकता रहे, किन किन बातों का ख्याल रखा जाए?
2: सबसे पहले दांतों की देखभाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम खान पान या देखभाल सही से नहीं किए तो सबसे पहले हमारे दांतों में कैविटी सड़न शुरू होता है और उसके साथ साथ बहुत सारे बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। जैसे आज 100 में 90% लोगों के साथ जब ब्रश करेंगे तो ब्रश के साथ ब्लीडिंग होता है, तो लोग अनदेखा कर देते हैं। तो इस अनदेखे में अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपकी ये समस्या धीरे धीरे बढ़ते चले जाएगी। अगर छोड़ देंगे बढ़ते बढ़ते, जो आज हम अपने लैंग्वेज में पारिया जो बोलते हैं, तो उससे ग्रसित हो जाएंगे, जहाँ पे पूरे दांत हिलने लगेंगे, फिर दांत निकालना पड़ेगा, वक्त से पहले दांत ख़त्म हो जाता है। तो खान पान पर ध्यान देना है, ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ नहीं जाना है। अगर कोई मीठी चीज़ खा रहे हैं तो अच्छे से खाने के बाद कुल्ला कर लेना है। रात में अगर दूध वगैरह या फिर चॉकलेट या किसी तरह का मीठा सेवन कर रहे हैं तो खाने के बाद अच्छे से ब्रश कर लेना है कि उसका मीठापन दांत के अंदर या जो हम स्वीट्स लिए हैं को लगा ना रहे। अगर वो लगा रहता है तो आपके दांत वक्त से पहले कैविटी सड़न शुरू हो जाएगा। सड़न शुरू हो गया तो धीरे धीरे आप नेग्लेक्ट करते चले गए, डॉक्टर से नहीं मिले, तो वो धीरे धीरे एडवांस स्टेज में चला जाएगा।

0: फिर आरसीटी की नौबत आ जाएगी, रूट किनाल करना होगा या तो फिर दांत निकालना होगा। अगर अर्ली स्टेज में आप डॉक्टर से सलाह लेते हैं, परामर्श लेते हैं, दिखाते हैं, तो रेस्टोरेशन करके भर के बचाया जा सकता है। तो इससे सबसे पहले हुआ कि ब्रश अच्छे से करें, सुबह में भी ब्रश करें, रात में भी ब्रश करें, कुछ मीठा चीज़ खाएं तो अच्छे से कुल्ला करें। अगर आपके दांतों के अंदर को खाना फंसता है तो उसको आप फ्लॉश करके दांत को क्लीन रखें। जब ये सब चीज़ें आप नियमित रूप से करेंगे तो आपके दांत स्वस्थ रहेंगे, मोती जैसे चमकीले रहेंगे। अपने चेहरे को आईने में निहारते हैं, हर चीज़ को आईने में देखते हैं कि खूबसूरती कैसा है, मेरे चेहरे में कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहा। इसी तरह आज हमारे मुंह के अंदर भी निहारने की ज़रूरत है, जो अंदर गाल है उसमें भी चेंजेस देखना है। अगर कुछ चेंजेस दिखता है तो डॉक्टर से इमीडिएट परामर्श लेना है। और अगर आपके दांतों में सड़न दिख रहा है, ब्लैकनेस दिख रहा है, या फिर पीलापन दिख रहा है दांतों में, टाटर जमा हुआ दिख रहा है, तो डॉक्टर से संपर्क करें, जो आपको एडवाइस करें आप उनसे ट्रीटमेंट लें। तो इससे हमारे दांत स्वस्थ रहेंगे और सुंदर भी रहेंगे।
1: हम लोग दो टाइम ब्रश नहीं करते हैं, सुबह का ब्रश तो करते हैं लेकिन सोने के पहले बहुत लोग ब्रश नहीं करते हैं। खाया, मुँह धो लिया, कुल्ला कर लिया और सो गए, तो बहुत सारी चीज़ें अंदर ही रह जाती है।
0: अगर खाना का कोई पार्टिकल्स दांत में फंसे रह गए, या फिर हम मीठा चीज़ कुछ लिए और मीठा खाकर डायरेक्ट कुल्ला नहीं किए या ब्रश नहीं किया और डायरेक्ट सो गए, तो इससे भी दांतों को नुकसान है, क्योंकि कैविटी जो लगता है मीठापन से ज़्यादा होता है। बच्चों में भी ज़्यादातर देखा जाता है कि बच्चे बोतल से दूध पी रहे हैं, पीते पीते सो गए, तो उनके दांत में कैविटी अर्ली स्टेज में आ जाता है, उसको हम लोग नर्सिंग बोतल कैरीज बोलते हैं। इसी तरह बड़ों में भी आदत है, बहुत से दूध पिए, दूध पीने के बाद सो गए, कुल्ला नहीं किए, बहुत सा ऐसा मिथ भी है कि दूध पीने के बाद पानी नहीं पीना है या ऐसा है। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो हमारे दांत वक्त से पहले ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। और अगर ब्रश नहीं किए, खाने का पार्टिकल फंसा रहा, तो फिर दांतों से मसूड़ों से, मसूड़े जो अटैच है वो फिर धीरे धीरे लूज़ होता चला जाएगा, जिससे ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग होगा तो फिर पारिया का रूप लेगा। दोनों वक्त ब्रश करना बहुत ज़रूरी है।
1: कुछ चीज़ें खाते हैं तो झंझनाहट होती है, जलन होने लगता है, और कभी ठंडी चीज़ें खा लिया तो इसमें यह परेशानी आने लग जाती है, ऐसा क्यों होता है?
0: जो झंझनाहट और सिलसिलाहट की जहाँ तक बात होती है, या तो हम रॉन्ग टेक्निक से ब्रश करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्रश करते हैं, हार्ड ब्रिसल वाले ब्रश करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उससे हमारे दांतों के साइड में कटना शुरू हो जाता है। जैसे पहले हम लोग देखते थे कि कुआं से लोग पानी भरते थे, कुआं के ऊपर लकड़ी का रखा रहता था और रस्सी से खींचते थे तो लकड़ी के ऊपर दाग आ जाते थे रस्सी, उसी तरह दांतों के साइड में दाग आ जाते हैं, जिससे इनामिल के लेयर हट गया, डेंटिन आ गया, तो डेंटिन सेंसिटिव होता है, जिससे ठंडे गर्म का महसूस होता है। एक ऑप्शन तो ये हुआ। दूसरा वजह यह होता है कि अगर हम कोई वैसा पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, या फिर दांत का पाउडर जो मंजन हम लोग बोलते हैं वो यूज़ कर रहे हैं, जिसमें एब्रेसिव ज़्यादा हो, तो वो रगड़पन ज़्यादा होता है, जिससे इनामिल वहाँ भी वेयर ऑफ हो जाता है। तो वो जहाँ से इनामिल वेयर ऑफ हुआ, इनामिल हटा, सेंसिटिव हो जाता है। तो आप अगर ये चीज़ है तो आप इमिडिएटली डॉक्टर से परामर्श लें। अगर आपके इनामिल हट गए हैं तो उसके लिए टूथपेस्ट वगैरह आते हैं जो आपको रिपेयर अनप्रोटेक्ट करेंगे कि आगे हटे नहीं। अगर आप रॉन्ग टेक्निक ब्रश यूज़ कर रहे हैं, या रॉन्ग टेक्निक से यूज़ कर रहे हैं, या हार्ड ब्रिसल यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको चेंज करना है। आपको जो डायरेक्शन में यूज़ करना है, ऊपर वाले दांत के लिए ऊपर से नीचे, और नीचे वाले दांत के लिए नीचे से ऊपर, इस डायरेक्शन में आपको यूज़ करना है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इससे क्या होगा कि आपके दांतों को जो साइड में कटता है वो कटेगा नहीं। और सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश यूज़ करना है, जिससे वो साइड में ख़राब ना हो। अगर एब्रेसिव ज़्यादा है तो उससे भी वेयर ऑफ होगा इनामिल, तो उससे भी बचना है।
1: तो किन किन चीज़ों का सेवन हम करें और कौन कौन सी बुरी आदतों से हम दूरियां बनाएं?
0: खान पान में जहां तक की बात है, जिससे बाहर की चीज़ें, आज हमारे
1: यहाँ फास्ट फूड का बहुत,
0: हमारे यहाँ एक फैशन हो गया फास्ट फूड। फास्ट फूड से बचना है, दांत तो हमारे ख़राब होंगे, दांत के साथ साथ बॉडी भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे क्षतिग्रस्त होंगे, आप पीड़ित हो जाएंगे, बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे, तो वो फास्ट फूड से अवॉइड करना है। और हाइजीन खाना लेना है, जो भी हो घर का खाना लें। घर का खाना लेने से आपको पूरा प्रॉपर हाइजीन मिलेगा।
1: और कौन कौन चीज़ों से हम दूरियां बनाएं?
0: सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि गुटखा नहीं लेना है, पान नहीं लेना है। अगर स्मोकिंग की आदत है तो स्मोकिंग छोड़ना है, क्योंकि इससे दांत तो आपके पीले होंगे, दांत खराब होंगे, साथ साथ आपके गाल में जो मुकोसा है वो भी ख़राब होंगे। तो उससे लाइकन प्लेनस होगा, लीकोप्लेकिया होगा, गाल में जलन शुरू हो जाएंगे, गर्म चीज़ नहीं खा सकते, वो धीरे धीरे फिर कन्वर्ट कैंसर की तरफ जा सकता है। तो ये सब चीज़ों

0: उससे बचना है, ज़्यादा मिर्च नहीं लेना है, मिर्च लेंगे उससे भी नुकसान है, तो ये सब चीज़ों से बचना है और दूसरों को भी बचाना है जी।
1: हमारे माता पिताओं को क्या कहेंगे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनमें फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन होने लग गया है, लापरवाही ज़्यादा हमारे बच्चों में दिखाई पड़ने लग गया है, तो दांतों का वो ख्याल कैसे रखें, माता पिताओं को क्या संदेश देंगे?
0: बच्चे छोटे हैं तो वो ब्रश अगर नहीं कर पाते हैं, जैसे एक साल के बच्चे हैं, दो साल के बच्चे हैं, जनरली वो ब्रश नहीं करते हैं, तो वो कॉटन के कपड़े से लेकर उनके दांतों को साफ करना है, सुबह में भी वही चीज़ करना है, रात में भी वही चीज़ करना है, और कोशिश करें जब भी बच्चा दूध पिए तो अच्छे से कॉटन के कपड़े साफ़ कर लें कि दूध का अंश जो हम शुगर ऐड कर रहे हैं उसका अंश मुंह में ना रहे, इससे क्या है कि लॉन्ग रन चलेंगे। और अगर बड़े बच्चे हो गए हैं तो सुबह में भी उसको प्रैक्टिस कराना है, अपने उसके साथ लगे रहना है ब्रश के लिए, सुबह में भी ब्रश कराना है, रात में भी ब्रश कराना है, नहीं तो बच्चे ब्रश के साथ खेलेंगे, मुंह में डालेंगे, दो सेकंड बाद मम्मी ब्रश हो गया, तो वो चीज़ देखना है। और जहाँ तक खान पान की बात आई, फास्ट फूड तो ऐसे भी हानिकारक है हेल्थ के लिए। दूसरी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है, चॉकलेट से दूर रखना बच्चों को। अगर आप चॉकलेट दे रहे हैं तो अच्छे से कुल्ला कराना है और ब्रश कराना है, इससे बचना है, और जब बचेंगे तो बच्चों के दांत भी सुरक्षित रहेंगे, डॉक्टर के पास विजिट भी कम होगा
1: जी। तो बड़ी अच्छी बातचीत हुई कि अपने दांतों का ख्याल कैसे रखें, और सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आप बुरी आदतें रखते हैं, तंबाकू का यदि आप सेवन करते हैं, तो तत्काल प्रभाव से इसे आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ेंगे तो दांत आपके स्वस्थ रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिबगतुल्ला, दंत रोग विशेषज्ञ, आज आप हमारे उस कार्यक्रम में, और मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के तहत दांतों की देखभाल पर बातचीत सुन रहे थे। भेंटवार्ता कर थे डॉक्टर सिबगतुल्लाह रांची के डॉक्टर, और बातचीत कर रहे थे संजीव कुमार लाल। इसी के साथ ही स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। देशेन ह्यः अशीतितमः स्वातन्त्र्यदिवसः आचरितः। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् राष्ट्रियध्वजम् आरोहितवान् तथा अनेकाः महत्वपूर्णाः घोषणाः कृतवान्। राष्ट्रं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् विगतेषु द्वादशवर्षेषु देशस्य कोटिशः नागरिकाः स्वसंकल्पेन समर्पणेन च देशं नूतनासु उन्नतिषु नेतुं सर्वसम्भवं प्रयत्नम् अकुर्वन्। प्रधानमन्त्री सबलं प्रतिपादितवान् यत् बृहन् स्वप्नाः दृढतराः संकल्पाश्च राष्ट्रस्य प्रयत्नानां समग्रं स्तरं सामर्थ्यं च वर्धयन्ति।
1: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
0: विकसित भारताय यूनां महिलानां च सशक्तीकरणे बलं दत्त्वा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विभिन्नानां लोकसेवा परीक्षाणां कृते निर्धन मध्यम वर्गीय परिवाराणां युवभ्यः निःशुल्कम् अन्तर्जाल माध्यमेन प्रशिक्षणं प्रदातुं घोषणां कृतवान्। सः इदमपि घोषितवान् यत् प्रशासनेन आगामि एकवर्षे एककोटि युवभ्यः AI इति कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशलस्य प्रशिक्षणं प्रदातुं निर्णयः कृतः। केन्द्रीय सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अद्य राजस्थानस्य अलवर नगरे

0: स्थिते अलवर सरस दुग्ध परिसरे नूतनस्य दुग्ध संयंत्रस्य आधारशिलां स्थापयिष्यति। सहकारिता मन्त्रालयेन संसूचितं यत् अस्मिन् अवसरे अन्तर्जालीय माध्यमेन शिलान्यासः क्रियते तथा राजस्थानस्य 17 जनपदेषु 260,000,000,000 रूप्यकाणां विभिन्न विकास परियोजनानां उद्घाटनमपि अन्तर्जालीय माध्यमेनैव करिष्यते। एतदतिरिक्तम् आजीविकोत्सवस्य अन्तर्गतं 9 नियुक्तेभ्यः 15,000+ कर्मिभ्यः नियुक्तिपत्राणि अपि वितरिष्यन्ते। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्यारभ्य तमिलनाडु राज्यस्य 2-दिवसीययात्रायां भविष्यति। यात्रावधौ असौ चेन्नई चेंगलपट्टु तिरुवरूर तंजावूर नगरेषु विविधेषु शैक्षणिकेषु स्मारकेषु साहित्यिकेषु च कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति। अद्य श्रीराधाकृष्णन् चेंगलपट्टुनगरे SMR विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थायाः 22वें दीक्षांत समारोहे भागं ग्रहीष्यति। सः चेन्नई नगरे नागालैंड मणिपुर पश्चिम बंगाल राज्यानां पूर्वराज्यपालस्य प्रथमपुण्यतिथेः कार्यक्रमे अपि भागं ग्रहीष्यति। ततः परं उपराष्ट्रपतिः चेन्नई नगरे इकोज ऑफ अ नेशनलिस्ट माइंड इति पुस्तकस्य विमोचन कार्यक्रमे अपि भागं ग्रहीष्यति। दिल्ली प्रशासनेन दिल्ली परिवहन निगमस्य बसयानेषु महिलायात्रिणां कृते प्रचलितायाः कागद निर्मित पाटलचटिका व्यवस्थायाः अवधि अस्य मासस्य 31 दिनांकपर्यन्तं विस्तृतः अस्ति। परिवहन विभागस्य आदेशानुसारं निःशुल्क बस यात्रायै महिलाः DTC अथ दिल्ली क्लस्टर इत्येतयोः बस यानेषु कागद निर्मित पाटलचटिकायाः उपयोगं निरन्तरं कर्तुं शक्नुवन्ति। प्रथमवारं आयोजिता सूर्यपथ त्रिरंग वैश्विक यात्रा ह्यः सम्पन्ना। इयं यात्रा पश्चिमदिशि फिजी देशादारभ्य संयुक्त राज्य अमेरिका पर्यन्तं 45 देशेषु बहुषु च कालक्षेत्रेषु सम्पन्ना। अमृतोद्यानम् अद्यारभ्य आगामि मासस्य 15 दिनांकपर्यन्तं सामान्य जनेभ्यः उद्घाटितं भविष्यति। अस्माकं वार्ताहरानुसारं उद्यानं प्रातः 10 वादनात् सायं 6 वादनपर्यन्तं उद्घाटितं भविष्यति। अन्तिमप्रवेशः सायं 5 वादनपर्यन्तमेव भविष्यति। अनुरक्षणकार्याय उद्यानं प्रत्येकं सोमवासरे पिधानं भविष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
2: हमने पिछले दिनों AI इंपैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
2: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमरीका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम की 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और ICAR की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करेगा। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। परीक्षा एजेंसी ने बताया कि उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार निशुल्क बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकते हैं। यह योजना आज से लागू हो गई है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुराब में हुई हवाई हमलों की वीडियो इस बात का प्रमाण है। श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत अपनी पहली पारी में 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। वर्षा के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का ही हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies without making it a political fight. In his Independence Day address to the nation from the ramparts of the Red Fort, Mr. Modi asked them to step forward to honour women and ensure that country's women secure 33% representation in the legislative assemblies and the Lok Sabha as soon as possible. He said that women should be given the opportunity to contribute to shaping India's policies.
2: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: Stressing on empowerment of youth and women for a Viksit Bharat, Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle-class families for various public examinations. He also announced that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector.
2: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: The first of its kind Suryapath Tiranga Global Relay concluded yesterday, completing its journey from Fiji in the east to the United States in the west across 54 countries and multiple time zones. External Affairs Ministry said that the Suryapath Tiranga

अभी से कुछ देर बाद यानी कि 7:15 पर बच्चों को संबोधित कार्यक्रम बाल सभा प्रस्तुत किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागरंग में आप सुनेंगे गायन राग देश मल्हार, राग सावन आयोमा ठुमरी शोभा गुट्टू कलाकार होंगी और उस्ताद अली अकबर खान। 7:30 हम आपको सुनवाएंगे रागरंग कार्यक्रम। समाचारों के लिए शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में सुबह 8:00। 8:00 सुनेंगे आप समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ और 8:30 आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। 8:45 पर अपने स्टूडियो से हम आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कड़ी संख्या 8। जोहार पलामू कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा सुबह 9:00। प्रस्तुति स्वर होगा निर्मला तिवारी का, संयोजनकर्ता होंगे श्री प्रशांत गौरव। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत में सुनवाएंगे आपको कुछ फिल्मी गाने सुबह 9:30। 10:00 एक बार फिर हम शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में हिंदी अंग्रेजी समाचारों के लिए और उसके बाद 10:10 पर शामिल होंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र में, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के विभिन्न कार्यक्रम शाम 5:29 तक।

शाम 5:30 बजे हम एक बार फिर से जानकारी देंगे कार्यक्रमों की, और 5:35 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवावाणी। चर्चा होगी इस कार्यक्रम में हिंदी के लोकप्रिय कथाकार अमृत लाल नागर पर, और युवा अपने सेहत का रखें ख्याल, इस पर भी चर्चा की जाएगी। मिथिलेश कुमार सिन्हा की वार्ता सुनेंगे आप, अंग्रेजी भाषा का अध्ययन कैसे करें, पूर्व प्रसारित यह वार्ता होगी। प्रादेशिक समाचार 6:00 आकाशवाणी के रांची केंद्र से आप सुन पाएंगे, और 6:02 से खेती बाड़ी कार्यक्रम के तहत सुनेंगे आप चर्चा बतख पालन से अतिरिक्त आय, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर भी चर्चा होगी। दिलीप कुमार पांडे कृषि विशेषज्ञ पलामू से ली गई भेंटवार्ता आप सुनेंगे, और 6:30 जननी कार्यक्रम आप सुन पाएंगे, कृषक महिलाओं को संबोधित यह कार्यक्रम होगा। चर्चा होगी स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को लाभ और कैसे रखें सब्जियों को सुरक्षित। दिलीप कुमार पांडे कृषि विशेषज्ञ पलामू से ले गई भेंटवार्ता आप सुनेंगे, जैविक खाद पर बातचीत करेंगे संतोष कुमार। 6:55 पर शामिल होंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र में, 7:00 प्रादेशिक समाचार सुन सकेंगे आप, और जिले में आजकल 7:10 पर 7:15 पर अपने स्टूडियो से हम आपको सुनवाएंगे स्वरांजलि के तहत चंद गौसलें, फनकार होंगे गुलाम अली। लोकगीतों के कार्यक्रम महुआ के तहत सुनेंगे कुछ आप लोकगीत विंध्यवासिनी देवी और साथियों से 7:45 पर 8:00 सुनेंगे आप फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से, जिसके तहत सुन पाएंगे आप कुछ फिल्मी गाने, और 8:30 आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत संगीत के तहत कुछ गैर फिल्मी गाने गुरदास मान की आवाज़ में। रात्रि 8:45 पर शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में हिंदी अंग्रेजी उर्दू समाचारों के लिए। 9:30 आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के तहत आज के फनकार कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। रात्रि 10:00 हम अपने स्टूडियो से आपको सुनवाएंगे रजनीगंधा कार्यक्रम के तहत कुछ फिल्मी गाने। हिंदी अंग्रेजी समाचारों के लिए शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में रात्रि के 11:00 और 11:10 पर करेंगे सभा का समापन। तो यह थी कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी।

आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है और लीजिए अब समय हो चला है बच्चों के लिए संबोधित कार्यक्रम बालसभा का, तो आइए शुरू करते हैं यह कार्यक्रम। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का बालसभा कार्यक्रम में। बच्चों कल यानी कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आपने पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा। आप लोग बहुत जोश उत्साह से अपने राष्ट्रीय पर्व में शामिल हुए होंगे और तिरंगे को सैल्यूट किया होगा, है ना? और कितना गर्व होता है जब हम अपने तिरंगे को सैल्यूट करते हैं, जय हिंद और वंदे मातरम का उद्घोष करते हैं। बिल्कुल बच्चों, अपनी आज़ादी राष्ट्र सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि देश के प्रति हम ईमानदारी रखें, आपसी भाईचारा सद्भाव बनाए रखें, एकता और निष्ठापूर्ण समर्पण करें देश के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति तिरंगे का सम्मान करें, अनुशासित जीवन जिए। जी हाँ, जब हम बचपन से ही अनुशासन में रहते हैं तो हमारे अंदर एक लयबद्धता आती है कार्य के प्रति, समय के प्रति और देश के प्रति। जी बच्चों, कोई भी देश तभी सुरक्षित और प्रगति करता है जब उस देश के सभी नागरिक अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हों, देश हित को सर्वोपरि मानते हों, यानी कि देशभक्ति का जज्बा देश को सुरक्षित रखता है। और यह जज्बा हर किसी के अंदर होना ही चाहिए, तभी हम अपने राष्ट्र को आगे ले जा सकते हैं, उसे दुश्मनों से सुरक्षित रख सकते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। बच्चों आप कल के भविष्य हैं, आपके कंधों पर देश का भार होगा। ऐसे में

0: में आपका यह कर्तव्य बनता है कि अपने देश हित में आप कार्य कीजिए और बचपन से ही इसकी आदत डालिए। देश विरोधी ताकतों से अपने देश को बचाइए। राष्ट्र सुरक्षित होगा बच्चों, तभी हम सब सुरक्षित होंगे, और इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। बच्चों, आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। उन्हें हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन्हीं की रचित कविता के कुछ अंश से। आइए, क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ, हार नहीं मांगूंगा, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। जी हाँ बच्चों, वाजपेयी जी ऐसे राजनेता थे जिन्होंने हमेशा देश को सर्वोपरि रखा और जिन्हें विरोधी भी प्यार करते थे, पसंद करते थे। जी हाँ, यानी मतभेद तो था उनका आपस में, लेकिन मन भेद कभी नहीं था। विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, यानी प्रेम सौहार्द कम नहीं होना चाहिए, भले ही वो राजनीति विरोधी हो। जी, और सच्चे राजनेता का यही गुण भी होना चाहिए। बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी कवि हृदय, प्रखर वक्ता, दृढ़ निश्चयी, उसूलों के पक्के व्यक्ति थे। उन्होंने पत्रकारिता भी किया था, संपादन भी किया था कई पत्र पत्रिकाओं का, और वो पहले विदेश मंत्री ऐसे थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर देश को गौरवान्वित किया था। उन्होंने अग्नि 2 और परमाणु परीक्षण कर देश की सुरक्षा के लिए साहसी कदम भी उठाए थे। कई दलों के साथ मिलकर उन्होंने गठबंधन सरकार भी सुचारू रूप से चलाया, और यह तभी संभव होता है बच्चों जब व्यक्ति के भीतर धैर्य हो, सहनशीलता हो और सबको एक साथ लेकर चलने की कला हो, और यह कला उनके अंदर बिल्कुल कूट कूट कर भरा हुआ था, क्योंकि वो कवि हृदय थे, सबको प्यार करने वाले थे। ऐसे युग पुरुष के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें उनके जो अच्छे गुण हैं, अच्छी बातें हैं, उनका अनुसरण करना चाहिए। उन्हें आज देश भावपूर्ण श्रद्धा पुष्प अर्पित करता है, कर रहा है, ऐसे योग पुरुष को हम बार बार नमन करते हैं। और चलिए सुनवाते हैं आपको एक देशभक्ति गाना, और उसके बाद मिलवाएंगे आपको एक बाल कलाकार से।
1: श्याम, तुझे पता है तुम्हारे बाबू

0: जी हाँ बच्चों, अपने देश के प्रति जान हमेशा न्यौछावर रखने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि ये बड़े ही भाग्य से मिलता है। वो बड़े ही गौरवशाली व्यक्ति होते हैं जो अपने देश हित में, देश की सुरक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं, अपना बलिदान दे देते हैं। चलिए अब आपको मिलवाते हैं एक बाल कलाकार माहिन से, उनसे बातचीत कर रहे हैं संजय कुमार सिन्हा।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज हमारे बीच एक नन्ही सी बालिका है जो गीत संगीत में रुचि रखती है, और आज मौका है, क्या नाम है का?
2: माहिन।
1: माही, क्या गाना पसंद करती हैं आप? क्या देशभक्ति गीत गाती हैं आप?
2: हाँ।
1: सुनाइए।
2: मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है, वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। उस देश की नागरिक हूँ जो ठुकराए हुओं की शरण स्थली बन जाता है और सात समंदर पार पर देशों को भी अपने ब्रदर और सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र देश की आवाज़ बनकर मैं माहिन आलम कक्षा 3 की छात्रा आपके सामने उपस्थित हूँ। आज अपनी कविता इस देश के वीरों को समर्पित करने जा रही हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार।

0: जय हिंद जय भारत।
1: बहुत सुंदर बहुत सुंदर, इतनी अच्छी देशभक्ति गीत के लिए बहुत अच्छा है गाजी। ये जो है आंख में आंसू आ गए तुम्हारे जो है गीत से, और बहुत जो तुम्हारे उम्र के जो बच्चे होंगे उन्हें भी देश की जो है देशभक्ति के प्रति भावना जागृत होगी और वो भी आगे बढ़कर देश की सेवा में लगेंगे। तुम भी देश की सेवा में लगो, यही शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बच्चों कैसा लगा? एक बाल कलाकार ने बड़ी अच्छी बातें कहीं, बड़ी अच्छी कविता के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया और हमें अपने देश के प्रति समर्पित रहना है, यह बात हम आपको बार बार कहते हैं। और इसी के साथ ही अब इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे बाल सभा कार्यक्रम, और आइए अब शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंग के तहत सुनते हैं गायन।

अभी आप सुन रहे थे ठुमरी देश, कलाकार थी शोभा गोटू। इसी के साथ ही रागरंग कार्यक्रम संपन्न होता है। आइए अब शामिल होते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में समाचारों के लिए। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, उसके बाद प्रादेशिक समाचार रांची केंद्र से।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक देशों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों AI इंपैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI

0: स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
0: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही हैं। उन्होंने लोगों से महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
0: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर श्री मोदी ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के अंतर्गत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
0: जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल, एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिन तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रैली कल संपन्न हो गई। ये रैली फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
2: छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन तमिलनाडु की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

0: श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में एसआरएम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में सरस डेयरी परिसर के नए संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। वे विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने विरोध के नए कार्यक्रमों की घोषणा की है।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत आज झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। रांची में पुतला दहन कार्यक्रम अल्बर्ट टिक्का चौक पर आयोजित किया जाएगा। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी एसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य भर के पात्र नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराना है।
3: लगभग 15 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का नगद उपचार शामिल है। आयुष्मान भारत कार्ड प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को निशुल्क जारी किए जाएंगे। राज्य के कुल 1,307 निजी और 627 सरकारी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत उपचार प्रदान करेंगे। लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र न होने वालों के लिए आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 80 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उड़ीसा की बैतरानी नदी में बाढ़ से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित है। एक रिपोर्ट।
4: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि बैतरणी नदी में बाढ़ की चौथी लहर आ गई है। भद्रक जिले के अक्वापदा में नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर को पार कर गई है और आज सुबह 7 बजे तक 18.38 मीटर पर बह रही थी। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि भद्रक जिले के कई गाँव अलग थलग पड़ गए हैं। राजघाट पर सालंदी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जहाँ खतरे का स्तर 17 फीट है और नदी 16.50 फीट पर बह रही थी। गिंगुटी और कोकिला नदियां भी उफान पर है। IMD ने मयूरभंज और बालेश्वर के लिए रेड वार्निंग और 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मंगलवार तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शतरंज में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत।

0: आज
1: धन्यवाद मुकेश। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शक्ति की सप्तधारा का आह्वान। प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से कहा, 7 शक्तियां भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, 80 पर देश, जुबां पर युवा। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लाल किला से वंदे मातरम की गूंज के बीच मोदी ने राष्ट्रगीत गाया, फिर तिरंगा लहराया। आम्बेडकर, नेहरू, पटेल और मुखर्जी का योगदान याद किया। जनसत्ता के अनुसार दिमागी नक्सल अराजकता और हिंसा फैलाने के रास्ते खोज रहे हैं। दैनिक जागरण के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी का मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग। 1 करोड़ युवाओं को AI प्रशिक्षण का ऐलान। कहा, महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ आए राजनीतिक दल। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री का लाल किला से संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने को अपने शासन की बड़ी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल कर कुछ ताकतों पर करारी चोट की है। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, बस्तर के 93 गांवों में पहली बार दिखी तिरंगे की ताकत। नक्सल प्रभावित रहे इन गांवों में आजादी के बाद स्वतंत्रता दिवस का सार्वजनिक आयोजन। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, युवा कौशल के उचित उपयोग से देश को हो सकता है भारी लाभ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में सम्पन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges all parties to support implementation of women's reservation in parliament and state assemblies to strengthen women's contribution in shaping India's policies. Prime Minister announces free online coaching for competitive exams aspirants to ease financial burden on their families. 1 crore youths to be trained in artificial intelligence in next 1 year. Suryapath Tiranga, first of its kind campaign involving Indian missions in over 50 countries, concludes in San Francisco. Government rolls out foreign asset disclosure scheme for small taxpayers. And in chess, world number one Magnus Carlsen retains eSports World Cup title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has announced to provide free online coaching for students belonging to poor and middle-class families. In his address to the nation, Mr. Modi said, the move is aimed at easing the financial burden of aspirants preparing for competitive exams. He said this will save thousands of crore rupees of middle-class families in coaching classes.
3: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
2: द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट 1 करोड़ यूथ विल बी गिवन ट्रेनिंग इन AI स्किलिंग इन द नेक्स्ट 1 ईयर। ही सेड दिस विल एनेबल देम टू टेक द लीड इन द ग्लोबल AI सेक्टर। Mr. Modi said the country has to focus on 3 things, cost, quality and skill.
3: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
2: The Prime Minister said today India is making its place in the world of sports. Mr. Modi said in 2030 India will host the Commonwealth Games. Prime Minister Narendra Modi has urged all parties to support the implementation of women's reservation in parliament and state assemblies without making it a political fight. in his Independence Day address to the nation from the Rampart.

0: To be testy for sweets makers is another headline in the Financial Express. A master plan for Delhi 2047 proposes the Havelis of Chandni Chowk to Latians Delhi. Heritage buildings could soon get a lease of life by making them hotels and offices, notes the Sunday Express. And finally, the Economic Times carries a story of matchmaking startups using AI to narrow choices by creating user profiles based on dating history and personality, with traditional dating platforms losing steam. Under the headline, AI-led matchmaking apps getting all the investor love. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges all parties to support implementation of women's reservation in parliament and state assemblies to strengthen women's contribution in shaping India's policies. Prime Minister announces free online coaching for competitive exams aspirants to ease financial burden on their families. 1 crore youths to be trained in artificial intelligence in next 1 year. Suryapat Tiranga, first of its kind campaign involving Indian missions in over 50 countries, concludes in San Francisco. Government rolls out foreign asset disclosure scheme for small taxpayers. And in chess, world number one Magnus Carlsen retains eSports World Cup title. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी रांची से अभी आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: जन जन तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
4: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचे, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
5: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
4: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने का किया आह्वान। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने तेज किया आंदोलन। आज सभी जिला मुख्यालयों में करेंगे पुतला दहन। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव की घोषणा। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि। सदैव अटल पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अर्पित की श्रद्धांजलि। झारखंड विधानसभा परिसर में पुष्पांजलि कार्यक्रम। राज्य में अलग अलग सड़क हादसों में 12 लोगों की मौत। लातेहार में 7, लोहरदगा में 3 और हजारीबाग के केरेडारी में 2 की मौत। और मौसम विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का जताया पूर्वानुमान। अगले 2 दिनों के लिए बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने के मुद्दे को राजनीतिक लड़ाई ना बनाया जाए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी दल आगे आएं और महिलाओं को सम्मान देते हुए यह सुनिश्चित करें कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जल्द से जल्द 33% प्रतिनिधित्व मिले।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज हो गया है। भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने विरोध के नए कार्यक्रमों की घोषणा की है। पेश है एक रिपोर्ट।

0: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत आज झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं।
1: कि अगर आपसे सीजीएल और 11-13 जेपीएससी रद्द नहीं हो रहा है तो आप मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। हम लोग महापुतला दहन करने वाले हैं झारखंड के 24 जिलों के हर मुख्यालय में। अगर तब भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो मैं झारखंड के तमाम छात्रों से आह्वान करता हूं 20 तारीख को हम सीएम आवास घेरेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम वहीं बैठे रहेंगे।
0: रिफॉर्म मंच ने कहा कि आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा और इससे भगत सिंह के विचारों और संघर्ष की भावना से प्रेरणा मिलेगी। छात्रों ने दोहराया कि उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: इधर छात्रों के आंदोलन का जेएलकेएम ने पूर्ण समर्थन किया है, साथ ही कहा कि छात्रों की सभी जायज मांगों के समर्थन में पार्टी पूरी मजबूती के साथ छात्रों के साथ खड़ी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट जून 2026, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। एजेंसी ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे केवल एजेंसी की आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। दिल्ली स्थित सदैव अटल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने वाजपेयी को असाधारण दूरदर्शी और उत्कृष्ट राजनेता बताया, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। श्री मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का सुशासन और जन कल्याण पर केंद्रित दृष्टिकोण देशवासियों का सदैव मार्गदर्शन करता रहेगा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर झारखंड विधानसभा परिसर स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता शामिल होंगे। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पलामू संसदीय क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए बड़ी पहल हुई है। रेलवे बोर्ड ने गयाजी जिले के शेरघाटी से पलामू के कजरी तक 107 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉडगेज रेल लाइन के निर्माण के लिए 2,627 करोड़ 29 लाख रुपए के विस्तृत प्राकलन को मंजूरी दे दी है। परियोजना से पलामू और आसपास के क्षेत्रों में व्यापार, उद्योग, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पलामू सांसद वीडी राम ने कहा कि यह रेल परियोजना क्षेत्र के विकास और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड सरकार में पूर्व शिक्षा मंत्री रहे स्वर्गीय रामदास सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर जमशेदपुर के टेलको के खड़ंगा झाड़ चौक पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री दीपक बिरवा समेत कोल्हान के कई विधायक, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। मंत्री दीपक बिरवा ने रामदास सोरेन की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने झारखंड आंदोलन में योगदान और समाज के प्रति उनकी सेवा को याद किया गया।
3: झारखंड आंदोलन के अग्रणी आंदोलनकारी रहे हैं, इस राज्य के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और जिस तरीके से इस क्षेत्र के लोगों के लिए उन्होंने काम करने का प्रयास किया, विधायक बनकर के और मंत्री बनकर के आम लोगों के हित में जो काम उन्होंने आगे बढ़ाया वो हमेशा हम लोग के बीच में याद रहेगा और अफसोस भी रहेगा कि वो हमारे बीच में नहीं है। हम लोग भारी मन से आज उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
2: राज्य में अलग अलग सड़क हादसों में कुल 12 लोगों की मौत हो गई।

जबकि 5 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। लातेहार जिले में चंदवा लोहरदगा मार्ग की डेढ़ टंगवा घाटी में कल हुए भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। एक बेकाबू भारी कंटेनर ने बाइक और ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे यह दुर्घटना घटी। इधर रांची लोहरदगा मुख्य पथ पर 2 स्कूटी की सीधी टक्कर से हुए हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हजारीबाग के केरेडारी टंडवा मुख्य सड़क स्थित पतरा पुल के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पिता पुत्री की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। झारखंड में अगले कुछ दिनों के दौरान भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। आज राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन कई जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों की वेबसाइट ने छात्र आंदोलन की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, जेपीएससी जेएसएससी धांधली पर आर पार के मूड में प्रदर्शनकारी छात्र, अब सीएम हेमंत सोरेन के आवास को घेरने की तैयारी। हिंदुस्तान ने लिखा है, झारखंड प्रोटेस्ट छात्रों का सीएम आवास घेरने का ऐलान। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रांची समेत 20 जिलों में छाए रहेंगे बादल, 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। प्रभात खबर लिखता है, हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने वेल्स को 3-1 से हराया, कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दागे 2 गोल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने का किया आह्वान। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने तेज किया आंदोलन, आज सभी जिला मुख्यालयों में करेंगे पुतला दहन, 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव की घोषणा। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि, सदैव अटल पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अर्पित की श्रद्धांजलि। झारखंड विधानसभा परिसर में पुष्पांजलि कार्यक्रम। राज्य में अलग अलग सड़क हादसों में 12 लोगों की मौत, लातेहार में 7, लोहरदगा में 3 और हजारीबाग के केरेडारी में 2 की मौत। और मौसम विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का जताया पूर्वानुमान, अगले 2 दिनों के लिए बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस।

0: bring you a talk on Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One-Stop Center Scheme by Ankita Sarkar, Migration and Asylum Project, and Sanju Kumari, member One-Stop Center. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
1: घरेलू हिंसा का अधिनियम है, डीवी एक्ट है, ये 2005 में आया है। तो पहला सवाल ये बनता है कि क्या औरतों के पास कोई तरीका नहीं था, कोई उपाय नहीं था अगर उनके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है तो कोई भी रिलीफ मांगने का या पाने का। और ऐसा तो नहीं है, तो क्या हुआ करता था कि हमारे पास क्रिमिनल लॉज हमेशा से थे, लेकिन घरेलू हिंसा का अधिनियम जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे एक क्वासाई क्रिमिनल रेमेडी माना जाता है। और इसका ये मतलब है कि इस कानून के अंतर्गत क्रिमिनल लॉज के जो रेमेडीज है, जो रिलीफ है, वो चले नहीं जाते हैं, बट ये उनके साथ साथ उनके उनको और मजबूत बनाने में कोशिश करते हैं। तो अब अगर हम सोचें कि घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो 2005 में आया क्यों, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, तो अगर हम एक्ट का थोड़ा मुआवजा करें तो हम देखेंगे कि इसमें पनिशमेंट जो है, सजा देना, इससे फोकस हटा के दूसरी चीज़ों पे फोकस कई ज़्यादा दिया गया है कि हम सुरक्षा कैसे करें, रेसिडेंस का किस तरह से करा जाए, क्या टेम्परेरी कस्टडी की क्या बात हो सकती है, मॉनिटरी रिलीफ यानी कि पैसों के भरण पोषण की जो सुविधाएं हैं वो, इन टाइप के प्रोसेसेस कैसे किए जा सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी हम डीवी एक्ट के अंतर्गत देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम क्यों आंसर करना चाहेंगे एक्ट के अंतर्गत, जब हमारे पास सजा देने की, जो जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने गुनाह किया है, उनको सजा देने का मौका है। पहला सवाल ये है कि पीड़िता को किस चीज़ की ज़रूरत है, और ये जो सोच है इसे हम सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, या पीड़िता को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से कानून बनाए जा सकते हैं, ये एक नज़रिया हम इस एक्ट के अंतर्गत हम देख सकते हैं। और कोई भी पीड़िता को अगर वो घर छोड़ रही है किसी भी कानूनी घरेलू हिंसा की वजह से, तो पहली चीज़ उनको ज़रूरत हो सकती है कि उनको सुरक्षा रहे और घरेलू हिंसा उनके साथ ना हो, या फिर उन्हें दिन ब दिन डे टू डे भरण पोषण की ज़रूरत हो सकती है, बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, ये सवाल आते हैं। सो पीड़िता की जो नीड्स है वो कहीं ना कहीं डीवी एक्ट कई ज़्यादा आंसर कर पाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाती है, जिस तरह से क्रिमिनल लॉज कई बार सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए पहला जो एंट्री पॉइंट है किसी भी पीड़िता के लिए वो डीवी एक्ट के अंतर्गत काफ़ी आसान बनाया गया है। इसके अंतर्गत एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि कहीं भी एक्सेस टू जस्टिस की जहाँ हम बात करते हैं, तो किसी भी पीड़िता के लिए कोर्ट आना अपने घर से निकल के, ये रास्ता भी काफ़ी लंबा होता है। जो भी सोसाइटल प्रेशर्स हो, फैमिली प्रेशर्स हो, खुद के अपने अंतर्गत ये हो कि हमने रिलेशंस खराब नहीं करने हैं, हमारे बच्चों का ध्यान रखना है, ये सारे जो हमारे फैमिली यूनिट के प्रेशर्स होते हैं, ये सारों को निकल के कोर्ट तक पहुंचना, ये रास्ता भी काफ़ी लंबा होता है। और इसके लिए ना कि ये सिर्फ ज़रूरत है कि हमारे हम पीड़िता को बोले कि आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, बट ओवरऑल जैसे हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में जागरूकता होनी चाहिए ताकि पीड़िता को उस तरह का सपोर्ट भी मिल पाए। तो कम्युनिटी लेवल पे हम किस तरह से ये जागरूकता बढ़ा सके, ये एक्सेप्टेंस ला सके कि कल को जाके अगर कोई पीड़िता आगे आती है तो उन्हें बैकलैश ना फेस करना पड़े, उन्हें जितना कम रेजिस्टेंस हो सके उतना वो फेस करें, और आगे आके जुडिशियल सिस्टम जो है, चाहे वो लीगल एड के तौर पे हो, चाहे वो किसी तरह से किसी प्रोबोनो सपोर्ट के थ्रू हो, वो उसको एक्सेस कैसे कर सके, पीड़िता आके रिपोर्ट कर सके, तो उसके लिए उस तरह का माहौल भी बनाना एंटायर सोसाइटल स्ट्रक्चर में, जहाँ वो निकल के सेफ फील कर सके, सुरक्षित फील कर सके रिपोर्ट करने में और कानूनी मदद लेने में, ये एक माहौल बनाने का किस तरह से हम आगे स्टेप्स ले सकते हैं, ये सोचना भी ज़रूरी है। सो सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन में ये हम नहीं सोचेंगे कि सिर्फ आखिरी रिजल्ट क्या होगा, क्या ऑर्डर मिल सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है या आउटकम क्या है, बट क्या हम पीड़िता को कोशिश कर रहे हैं कि वो जिस समय पे चाहती है रिलीफ, उस समय पे उसे वो रिलीफ मिल सके, जिस

0: वॉइस की रिलीफ वो चाहती है, चाहे वो उस घर में रह के ही वो अपना केस चलाना चाहती है, तो हो सकता है शेयर्ड हाउसहोल्ड का ऑर्डर हो, या चाहे वो किसी और घर में रह के अपना सुरक्षा रखना चाहती है, या फिर वो किसी तरह से अगर उसके साथ वापस घरेलू हिंसा होता है तो उसका प्रोटेक्शन मांग सकती है। हम संजू मैम से सुनेंगे कि पहले तो कि क्या एक्ट के अंतर्गत, जैसे मैंने बताया कि कुछ अलग अलग प्रोटेक्शन है सिर्फ सजा के बिना, तो ये क्या क्या प्रोटेक्शन है और क्या ये प्रोटेक्शंस जब हम क्रिमिनल लॉज में देख रहे हैं तो हम मेनली मैरिज या मैरिटल स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, क्या डीवी का प्रोटेक्शन मैरिज के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है, कौन से और रिलेशनशिप्स होते हैं, कौन से और ऐसे नाते रिश्ते नाते होते हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं डीवी के अंतर्गत, और इन प्रोटेक्शंस को लेने में डे टू डे ओएससी का जो इंटरवेंशन है वो किस तरह के चैलेंजेस देख रहे हैं, या पीड़िता किस तरह की रेमेडीज मांग रही है जिसमें ओएससी का मदद होता है, क्योंकि जो लीगल प्रोसेस है वो डिफिकल्ट है नेविगेट करने के लिए।
1: यू वर लिसनिंग टू अ टॉक ऑन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एक्सेस टू जस्टिस एंड सखी वन स्टॉप सेंटर स्कीम। वी स्लिप इनटू अ शॉर्ट ब्रेक।

0: टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of Department of Justice on Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme.
2: Sakhi One Stop Center, Central Ministry की स्कीम है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसकी ओवरऑल इंडिया में 700 से 800 सेंटर्स रन कर रहे हैं। दिल्ली में ही 11 सेंटर्स हैं और ये जिला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत भी आती है, उनकी देख रेख में चलते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर एक्सेस करता नहीं था उस समय, महिलाओं को अपनी अवेयरनेस नहीं थी कि क्या करना है, कैसे करना है, कोर्ट जाने में वो बहुत घबराती थी, डरती थी। लेकिन सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत जब वो आई हैं तो इस स्कीम में महिलाओं को एक अवेयरनेस मिली है। हम डे टू डे लोकल अवेयरनेस करते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं और उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि सखी वन स्टॉप सेंटर के अंदर अगर आप आएंगी तो उनकी जो भी गोपनीयता है उसको बरकरार रखा जाएगा। वो बहुत ज़्यादा घबराती है इस बात को लेकर कि अगर परिवार में या सोसाइटी में ये चला जाता है जो एक स्टिग्मा है कि हमारी बात लीक हो जाएगी। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड, अगर वो आती हमसे बात करने के लिए तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि हमारी जो अभी मैं FIR या लीगल प्रोसीजर में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन जो उनका है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए वहाँ पर साइकोसोशल काउंसलर्स भी अवेलेबल होते हैं। मैं सखी वन स्टॉप सेंटर के स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ी सी रूपरेखा बता देती हूँ। सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर, सोशल काउंसलर्स और पैरालीगल वर्कर्स भी होते हैं। साथ में ही विधिक सहायता के लिए वहाँ पर डालसा से ही रोस्टर लगते हैं, ऑल द टाइम लॉयर्स अवेलेबल होते हैं 10 to 5 की शिफ्ट में। और उस दौरान जो भी सर्वाइवर या जो भी महिला हमारे पास आती है, हम उनको जो भी लीगल अवेयरनेस अगर वो चाहती है, लीगल एड चाहती है, तो हम उसको वन रूम फैसिलिटी देते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर का मोटो ही वन रूम फैसिलिटी देना है। उसको उसी प्रेमिसेस में मेडिकल भी प्रोवाइड होगा, उसको उसी प्रेमिसेस में लीगल काउंसलिंग भी प्रोवाइड होगी, काउंसलिंग भी वहीं होगी। और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि परिवार से या पति से कोई निकाल दी गई है, घर से निकाल दी गई है, रात के 2 बजे भी निकाल दी गई है, तो 181 हेल्पलाइन के द्वारा उनको पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में सखी वन स्टॉप सेंटर में लाया जाता है। मैं यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि पहले 5 दिन का सेंटर मिलता था, परंतु अभी बढ़ा कर ये सेंटर 20 दिन का कर दिया गया है ताकि उसे कहीं पर भी बिना आश्रय के ना रहना पड़े। उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी वहीं पर मौजूद स्टाफ के द्वारा देखी जाती है, वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी भी रहती है जिसे PFO बोला जाता है, पुलिस प्रोटेक्शन ऑफिसर। वो वहाँ पर उसकी कंप्लेंट लोकल थाने में रजिस्टर कराते हैं, साथ ही साथ उसकी DD एंट्री या FIR दर्ज कराने में जो भी मदद चाहती है वो उसको बहुत ईजी प्रोसेस के द्वारा मदद कर देते हैं। साथ ही वहाँ पर

0: आश्रय में कपड़ा, खाना एवं मेडिकल फैसिलिटी, अगर उसको उस दौरान कोई मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है तो वो भी उसको प्रोवाइड की जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी होती है। कौन सी महिलाएं एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इजी टू मूव सखी वन स्टॉप सेंटर में? कोई एज ग्रुप नहीं है, कोई एज बार नहीं है, आप आ सकते हैं किसी भी टाइम पर। 60 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक का बच्चा वो आ सकता है, कोई भी, इवन उससे छोटे बच्चे भी वहाँ पर आ सकते हैं। और उस दौरान भी हम उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट यानी कि चाइल्ड लाइन से फ्लैग करा देते हैं। उसके द्वारा वहाँ पे काउंसलर्स जो चाइल्ड लाइन पे आते हैं वो भी आते हैं। 181 हेल्पलाइन किसी भी प्रकार के लिए महिलाओं के लिए एकदम अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब बात करते हैं सामाजिक परिवेश में, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं हों या फिर घरेलू हिंसा से रिलेटेड कोई भी, चाहे 20 साल हो गए हो शादी को या 25 साल हो गए हो या 2 ही महीने क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की हिंसा जो भी है। कई बार मैंने अवेयरनेस के दौरान या हमारे वन स्टॉप सेंटर में जो महिलाएं आती हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि घरेलू हिंसा के प्रकार क्या हैं, उन्हें इमोशनल हिंसा पता ही नहीं होती है। उनको ये लगता है कि बस गाली गलौज कोई बात नहीं है, पर वो बहुत ईजिली मान लेती हैं गाली गलौज कोई बात नहीं है। सिर्फ उनके लिए हिंसा वही होती है जिससे मार दिया गया है, खून निकल गया है, वही उनके लिए एक हिंसा होती है। जब हम उनको बताते हैं कि इकोनॉमिकल हिंसा भी होती है कि आप कमा रहे हैं लेकिन आप अपनी पसंद से खर्चा नहीं कर सकते, वो भी एक हिंसा होती है। जो समय समय पर हम छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, मैंने मैप में एनजीओ के साथ में है या फिर हमारे जो लोकल एनजीओस वहाँ पे जो भी काम करते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में, अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट में है अजय कुमार जी, उनके सुपरविजन में बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए हैं, वहाँ पर से बहुत सारी महिलाएं निकल के आती हैं। मैं आपको सिर्फ बताना चाहूँगी यहाँ पर मुख्य वजह होती है कि उनके पास एजुकेशन की प्रॉब्लम है, एजुकेशन बहुत कम है। एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बावजूद भी महिलाएं एजुकेशन तक रीच ही नहीं कर पा रही है, कई बार ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, कई बार अलॉटमेंट्स के हो जाते हैं, कई बार पेरेंट्स के पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो फ्री एजुकेशन होने के बावजूद भी अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेज पा रहे। तो हम स्कूल के साथ में समय समय पर ऐसे काउंसलिंग सेशंस करते रहते हैं ताकि एजुकेशन का महत्व उन बच्चों को समझाया जा सके। कुछ होता है सामाजिक परिवेश, कि कुछ सामाजिक परिवेश में ये होता है कि हम ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाएंगे तो वो बिगड़ सकती हैं, जो कि उनकी पेरेंटिंग काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है, तो सखी वन स्टॉप सेंटर पेरेंटिंग काउंसलिंग भी करता है। अब बात आती है कि वो किस किस अधिनियम के तहत जा सकते हैं, तो हम उन महिलाओं को ये समझाते हैं कि अगर आपका सिंगल हाउस होल्ड है वहाँ पर भी आप उनका रेसिडेंशियल राइट ले सकते हैं, आश्रय का आपको अधिकार है, आप मेंटेनेंस के लिए फाइल कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करता कि शादी को कितना समय हो गया, आप अर्न करती हैं या नहीं करती हैं। पहले तो आप अपने उस परिवेश से निकलने की कोशिश करिए जब आपके साथ जो भी किस्म की हिंसा हो रही है उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं अपने काउंसलिंग सेशंस में हमेशा महिलाओं को बोलती हूँ कि जो भी हिंसा आप सहन करोगे तो सामने वाले को और बढ़ावा मिलता है। हिंसा कभी भी सहन नहीं की जाती है, पहले भी कई बार होता है नो का मतलब नो, तो पुरुषों को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और ये चीज़ हम काउंसलिंग में भी समझाते हैं कि अगर महिला किसी भी तरीके से नो कर रही है तो इसका मतलब नो ही है, नो का मतलब यस कभी नहीं हो सकता। होप कि आने वाले समय पर ऐसे सेंटर्स की जो भी एक्सेस, मतलब बहुत इजी टू रीच हो महिलाओं के लिए, और ऐसे सेंटर्स में किसी भी प्रकार का कोई सारा फीमेल स्टाफ रहता है तो सर्वाइवर्स बहुत इजी से आकर अपनी बातें बता देती हैं। कई बार वो ऐसी बातें भी बता देती हैं जिनको वो कहती है कि मैडम नोट मत कीजिएगा कैसे लिखते, क्योंकि मैं तो ये आपसे फैमिलियर होकर ही बता रही हूँ। तो वन स्टॉप सेंटर का एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी लोग सेंटर में विजिट करें तो अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद।
1: You had been listening to a talk on Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme by Ankita Sarkar, Migration and Asylum Project and Sanjay Kumari, member, One Stop Center. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, कड़ी संख्या 8। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में हम उपस्थित होंगे जोहार पलामू कार्यक्रम के साथ।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है, प्रायोजित क्षमा करेंगे, जोहार पलामू कार्यक्रम। प्रस्तुति स्वर है निर्मला तिवारी का, संयोजन करता है श्री प्रशांत गौरव।
4: जोहार पलामू।

जोहार, नमस्कार, स्वागत है आप तमाम साथियों का हमारे इस कार्यक्रम में। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, पर यह देश रहना चाहिए। राजनीति सत्ता का खेल नहीं, सेवा और विचारों की यात्रा है। व्यक्ति के विकास से ही राष्ट्र का विकास संभव है, ये सुविचार भारत रत्न स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के हैं। जी हाँ मित्रों, आज है उनकी पुण्यतिथि और उन्हें हम श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हैं उनकी ही रचित कविता के कुछ अंश से। मौन कविता से लिया गया यह अंश है। न मैं चुप हूँ न गाता हूँ, न मैं चुप हूँ न गाता हूँ, अकेला गुनगुनाता हूँ। सवेरा है मगर पूरब दिशा में, घिर रहे बादल रुई से धुंधलके में, मील के पत्थर पड़े हैं घायल। ठिठके पाँव ओझल गाँव, जड़ता है न गतिमयता है, स्वयं की दृष्टि से मैं देख पाता हूँ। न मैं चुप हूँ न गाता हूँ, अकेला गुनगुनाता हूँ, अकेला गुनगुनाता हूँ। मित्रों, वाजपेयी जी एक प्रखर वक्ता, कवि और कुशल राजनीतिज्ञ थे। वो कहते थे कि विचारों का भेद हो सकता है, पर किसी से मन भेद नहीं होना चाहिए, और यही कारण था कि उन्हें उनके राजनीतिक विरोधी भी पसंद किया करते थे, प्रशंसा करते थे। एक कवि के रूप में उन्होंने कई कविताएं लिखीं जिसमें वीर रस श्रृंगार रस की प्रधानता रही। उन्होंने जब भी कलम उठाया तो उनकी लेखनी से देश के प्रति, लोगों के प्रति चिंता, सुख समृद्धि, विकास की धारा बही। वो राजनीति को सत्ता का खेल नहीं बल्कि जनसेवा, देश सेवा मानते थे। उनकी ओजस्वी वाणी ने हमेशा लोगों को प्रेरित किया, आकर्षित किया। ऐसे युग पुरुष को हमारा वंदन है, नमन है। और आगे बढ़ते हैं, इस कार्यक्रम के सफर को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसके पहले सुनवाते हैं आपको एक गाना।

मित्रों, अब पलटते हैं इतिहास के पन्ने और अतीत के झरोखों से झांकते हैं कुछ पल जो खट्टे मीठे हैं। आइए डालते हैं एक नज़र। और आज की

तारीख की महत्वपूर्ण घटनाएं आपको बताते हैं। सन 1691 की यदि हम बातें करें तो आज ही की तारीख को अमेरिका में यॉर्क टाउन वर्जीनिया की खोज हुई थी। और सन 1787 में तुर्की ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। सन 1906 में दक्षिण अमेरिकी देश चिली में 8.6 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 20,000 लोगों की मौत हो गई थी। सन 1924 में नीदरलैंड तुर्की के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे आज ही की तारीख को। और सन 1946 में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का ऐलान किया। इस दौरान हिंसा में कोलकाता में करीब 5,000 लोग मारे गए और 15,000 लोग घायल हुए। सन 1990 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण लोपनोर में किया। रूस में अभ्यास के दौरान 2 सुखोई विमानों की आकाश में टक्कर हो गई थी। आज ही की तारीख को वेरेंटर्स सागर में रूस की परमाणु पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और लीबिया ने लाक्रवी बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली आज ही की तारीख को सन 2003 में। ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकी टीम ने वो ओलंपिक नौकायन में विश्व रिकॉर्ड कायम किया था आज ही की तारीख को सन 2004 में। और संयुक्त राष्ट्र परिषद ने हैती में अपने अभियान की अवधि को 6 माह के लिए बढ़ा दिया था आज ही की तारीख को। जम्मू में हिजबुल के 3 आतंकवादी मारे गए थे आज ही की तारीख को सन 2008 में। कांगो में तैनात 125 भारतीय पुलिस अफसरों और संयुक्त राष्ट्र शांति पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था आज ही की तारीख को। और आज की तारीख में जो जन्म लेने वाले व्यक्ति हैं, कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में आपको बता देते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री, कहानीकार का जन्म हुआ था आज ही की तारीख को। टी गणपति, दूसरी लोकसभा के सदस्य, उनका भी जन्म हुआ आज ही की तारीख को। आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कोटला विजय भास्कर रेड्डी का भी जन्म हुआ आज ही की तारीख को। सैफ अली खान, फिल्म अभिनेता, उनका जन्म हुआ आज ही की तारीख को। मनीषा कोइराला का भी जन्म आज ही की तारीख को हुआ। निधन हुआ अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न से सम्मानित तो पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक थे, उनका निधन हुआ आज ही की तारीख को। मुस्लिम सूफी भक्ति संगीत की विधा कव्वाली के महानतम गायक नुसरत फतेह अली खान, उनका भी निधन हुआ आज ही की तारीख को। सी अच्युत मेनन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिज्ञ, केरल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनका भी निधन आज ही की तारीख को हुआ था। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो आज की तारीख में इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। और मित्रों, इतिहास की बातें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। जो खट्टे मिट्टे अनुभव होते हैं, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, उनसे हम सीखते हैं। जो घटनाएं घट जाती हैं उसे हम ना दोहराएं, और जो अच्छी घटनाएं हैं उससे हम सीख लें। चलिए झांकते हैं अतीत की ओर और एक खूबसूरत गाना आपको सुनवाते हैं जो आंसू से भीगा हुआ है और जाते हुए लम्हों को दर्शाता है।

मित्रों, जो अतीत में चले गए, जो घटनाएं अतीत के पन्नों में दर्ज हो गईं, या जो हमारे अपने चले गए, या फिर उस दौर की बातें हम करें जब देश गुलाम था और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उस समय कितने लोग काल के गाल में समा गए, अपना बलिदान दिया, शहीद हुए और तब जाकर हम स्वतंत्र हुए। और आज हम तो बहुत भाग्यशाली हैं दोस्तों कि इस आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं जी। तो हमें उन पलों को, उन क्षणों को, इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए, उन लोगों के बलिदान को कभी भुलाना नहीं चाहिए जिनके कारण आज हम स्वतंत्र भारत में हैं। बस अपने देश की सुरक्षा, अपने लोगों की सुरक्षा का हम ध्यान रखें। और इसी के साथ अब बातों को बढ़ाते हैं आगे और करते हैं सेहत की बातें, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है और स्वास्थ्य अच्छा है तभी हम कोई कार्य कर सकते हैं। हम जो भोजन लेते हैं मित्रों, उससे हमारे शरीर का विकास

पास होता है, काम करने के लिए हमें ऊर्जा मिलती है। और शरीर के रख रखाव का काम होता है, खून बनता है, एंजाइम्स, हार्मोन्स ये आदि बनते हैं, और हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है यानी रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो तैयार होती है। इसलिए हमारे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, और भोजन के बारे में हम सबको जानकारी होनी चाहिए कि हमें कैसे खाद्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए, अपने भोजन में क्या शामिल करना चाहिए, क्या नहीं शामिल करना चाहिए। हमारे भोजन में मुख्य रूप से जो पदार्थ होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, फैट हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, और ये तीनों हमें अन्न, दूध, मांस, मछली, अंडे इन सब से प्राप्त होते हैं। भोजन में हल्की मात्रा में विटामिन और मिनरल भी आवश्यक हैं जो हमें साग, सब्जी, फल, दूध से मिलते हैं। भोजन के अलावा हमारे शरीर के लिए पानी अति आवश्यक है जी। यदि हम प्रोटीन की बातें करें तो भोजन में प्रोटीन हमें मिलता है दूध से, छेना से, दाल, सोयाबीन से, गेहूं, चावल में भी बहुत हल्की मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं, और मांस, मछली, अंडा में भी प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होते हैं। और प्रोटीन से हमारे शरीर का विकास होता है, लंबाई बढ़ती है, और खून, हार्मोन्स, एंजाइम्स, प्रतिरोधक क्षमता ये सब कुछ तैयार होते हैं बहुत कम मात्रा में। हमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है। चर्बी वाले जो पदार्थ होते हैं उसमें हैं घी, दही, मक्खन, तेल, दूध, मोटे अंडे, मोटे जानवरों के मांस हैं, ये सब फैट शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। फैट में भोजन पकाए जाते हैं, भोजन स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन अधिक फैट खाने से बचना चाहिए क्योंकि इससे शरीर मोटा होता है, खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है जो हमारे हृदय के लिए ठीक नहीं है। कार्बोहाइड्रेट की यदि हम बातें करें तो कार्बोहाइड्रेट से शरीर को हमारे एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जो हमें चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, गुड़, चीनी इन सब से प्राप्त होता है। विटामिन की यदि हम बातें करें तो शरीर के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए छोटी मात्रा में ही बड़े बड़े विटामिन काम कर जाते हैं। विटामिन की केवल उपस्थिति हमारे शरीर के लिए बहुत कारगर होती है क्योंकि हमारे शरीर में यदि विटामिन्स की कमी हो जाती किसी भी प्रकार की तो उसका हमारे शरीर पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। विटामिन ए अगर इसकी कमी हो गई तो फिर रतौंधी की बीमारी होती है, यानी कि रात में दिखाई नहीं देता है। हमें विटामिन ए प्राप्त होता है दूध, दही, घी, गाजर, पपीता, टमाटर, आम इन सब से काफ़ी मात्रा में हमें विटामिन ए प्राप्त हो जाता है। विटामिन बी की हम बातें करें, बी कॉम्प्लेक्स की बातें करें तो बी ग्रुप में कई विटामिन्स आते हैं इसलिए हम इनको बी कॉम्प्लेक्स के कहते हैं, और इसमें अन्न जो हमारे शरीर में जाता है उसको हजम करने की क्षमता, मेटाबॉलिज्म और मसूड़े, जीभ इन सबको स्वस्थ रखने में ये काम आते हैं। B1 यानी थायमिन अन्न को पचाते हैं, मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं, चावल, गेहूं, हरी सब्जियों से ये प्राप्त होते हैं, और इसकी कमी होने से बेरी बेरी नामक बीमारी हो जाती है जिसमें पूरा शरीर फूल जाता है जी। और B2 की बातें करें तो इसकी कमी से मसूड़े और जीभ पर फोड़े फुंसी हो जाते हैं, लालिमा आ जाती है। B6 की यदि हम बातें करें तो यह हमें प्राप्त होते हैं हरे साग, सब्जी, चावल, गेहूं में मिलते हैं, और इसकी कमी से बच्चों में कनभलन्स की बीमारी हो जाती है, कनभलसन की बीमारी हो जाती है। और नियासिन यानी B7 की बातें करें तो साग, सब्जी, चावल, गेहूँ में मिलता है, इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है, इसमें शरीर का चमड़ा मोटा और काला होने लगता है। विटामिन B12 की यदि हम बातें करें फोलिक एसिड की तो इससे एनीमिया की शिकायत हो जाती है यानी खून की कमी हो जाती है, और इसे हमें बनाए रखने के लिए हरी साग सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, और जो लोग मांसाहारी हैं वो मांस और मछली का प्रयोग कर सकते हैं। विटामिन सी की बातें करें तो आंवला, नींबू, अमरूद, संतरा, आम, अंगूर, हरी सब्जी, पत्ते वाली सब्जी, अंकुरित चना इन सब में प्राप्त होता है। इससे हड्डी और दांतों की मजबूती होती है, शरीर के जो ढांचे हैं उसको तैयार करने में मदद मिलती है, और आंत में आयरन और एब्जॉर्प्शन में मदद प्राप्त होता है।
तो इस तरह से जो ये विटामिन्स है काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं हमारे शरीर के लिए। और विटामिन सी की यदि कमी हो जाती है तो फिर दांत के

फेफड़ों से खून बहने की बीमारी हो जाती है और यह बीमारी भी काफ़ी परेशान करती है। विटामिन डी जो हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है जी, तो इसलिए सुबह का जो समय होता है उस समय जब सूरज धीमी उसकी रोशनी मतलब धीमी उसकी ऊर्जा होती है, उसका जो तापमान है वो कम होता है, उस समय धूप में बैठने से हमारे शरीर में चमड़े से विटामिन डी बनता है, तो हमें धूप का सेवन करना चाहिए। और विटामिन डी से हड्डी मजबूत होते हैं, विकास के लिए विटामिन डी आवश्यक है हड्डियों के विकास के लिए, और हड्डी में कैल्शियम फास्फोरस हैं, तो इस तरह से विटामिन डी का हमारे शरीर में काफ़ी महत्व होता है। विटामिन ई हरे साग सब्जियों से प्राप्त होता है, इसकी कमी से चर्म रोग हो जाते हैं, और इसलिए विटामिन ई का भी काफ़ी सहयोग है हमारे शरीर में। विटामिन के जो शरीर पर हल्का फुल्का कट लग जाता है, खून बहने लगता है, तो एक दो मिनट में खून अपने आप बंद हो जाता है, तो विटामिन के कारण होता है, इसके कारण खून बहना बंद हो जाता है, और यह साग सब्जियों से प्राप्त होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो नए जन्मे बच्चों में जो उनके पेशाब से खून आने लगता है विटामिन के की कमी के कारण, इसलिए गर्भवती माताओं को ध्यान रखना चाहिए कि सभी तरह के विटामिन उनके शरीर को प्राप्त हो, जिससे आने वाले नवजात को किसी तरह की बीमारी ना हो, क्योंकि उनको अपने शरीर के साथ साथ एक आने वाले बच्चे के लिए भी भोजन देना होता है। तो अपने खान पान का वो ध्यान रखेंगी तो होने वाला बच्चा स्वस्थ होगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं, लेकिन चूंकि हमारे कार्यक्रम का समय काफ़ी सीमित होता है दोस्तों, तो हम बहुत सारी बातें एक साथ नहीं बता सकते हैं, तो आज की बातें स्वास्थ्य सेहत के लिए इतनी ही। चलिए आपको लिए चलते हैं फिल्म संगीत की ओर, क्योंकि अच्छा संगीत भी हमारी सेहत के लिए टॉनिक का काम करता है। आइए सुनते हैं गाना।

0: इसी गाने के साथ ही अब जो हर पलम कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है, तो अपनी दोस्त निर्मला को दीजिए इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार, जोहार।
1: जोहार पलामू।

आप सुन रहे थे जो हर पलामू कार्यक्रम, प्रस्तुति स्वर्था निर्मला तिवारी का, संयोजनकर्ता थे श्री प्रशांत गौरव। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं कुछ फिल्मी गाने।

अभी आप सुन रहे थे हरिहरन और कविता कृष्ण मूर्ति को बॉम्बे फिल्म में। गीत के बोल महबूब के थे, धुन बनाई थी यार रहमान ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं कॉकटेल फिल्म का गाना।

0: कसम
1: मोहब्बत की कसम
0: मोहब्बत की कसम
1: मोहब्बत की कसम।
2: दिल तेरा दीवाना, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गाना। आवाज़ें थीं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की, गीत के बोल शैलेंद्र के थे और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने।

हम साथ साथ हैं फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। कविता कृष्णमूर्ति, हरिहरन, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाज़ों में। गीत के बोल आर किरण के थे, धुन बनाई थी राम लक्ष्मण ने। आइए सुनवाते हैं आपको इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

दहलीज फिल्मों का गाना अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में, और इसी के साथ यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। समय हो चला है समाचारों का, तो आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में समाचारों के लिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि एआई के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ रही हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मित्रता के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्य पर तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का 2018 में आज ही के दिन निधन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने भी अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने वाजपेयी को असाधारण दूरदर्शी और उत्कृष्ट राजनेता बताया, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया।

0: India's 80th Independence Day. The striking display of saffron, white and green served as a powerful symbol of the close and growing friendship between India and Israel, highlighting shared values, strong people-to-people ties, and hopes for a brighter future together. And in chess, world number one Magnus Carlsen has won Esports World Cup title for the second year in a row by defeating Belarusian Grandmaster Denis Lazarevic 2-0 in France. Representing Team Liquid, Magnus remained completely undefeated throughout the entire tournament. Meanwhile, American Grandmaster Hikaru Nakamura secured the third place after defeating Aliraza Firozia 5-1. And that is the end of this news bulletin.
1: सब आ जाओ, देखा तुमने? हाँ सर, हम तो रिहर्सल कर रहे हैं 3 दिन से. तो ही सेड, हाँ मैंने भी कल रात घर पे रिहर्सल किया था. उन्होंने एक दिन रिहर्सल किया था घर पे. सोचो, इस उम्र में उन्होंने घर बुला के हमें रिहर्सल किया
2: जी.
1: और सेट पे आके वो एकदम ऐसे हो गए और मेरा एनर्जी बूस्ट कर दी उन्होंने. कि जब अमिताभ बच्चन आपको ये कहता है, क्योंकि वो उनका तरीका है अपने मास्टर्स को डील करने का, उसी
3: वो परंपरा है.
1: हाँ,
3: गुरु को गुरु बनाने की.
1: और वो मुझे मास्टर जी कहते थे. तो सेट पे सब ऐसे परेशान, क्योंकि मास्टर जी आजकल कोई नहीं कहता.
3: हाँ,
1: कोरियोग्राफर्स को बहुत कम लोग कहते हैं जो जानते हैं कि मास्टर क्यों कहते हैं.
3: हाँ,
1: मास्टर को. फिर उन्होंने एक अपना व्लॉग लिखते हैं वो. उन्होंने अपने व्लॉग में मेरे बारे में लिखा.
3: अच्छा.
1: और उस वक्त लिखा कि एक नन्ही सी बच्ची थी जो मुझे सिखाती थी, और आज वो मेरी मास्टर बन गई. और आज वो एक फीमेल जो पूरे सेट को चला रही है, 1000 लोगों के सेट को, और वो मुझे भी ऑर्डर दे रही है. मुझे बहुत पसंद आता है जब ऐसे हमारी हमारी बेटियां यहाँ तक पहुंच जाती है.
3: क्या बात.
1: तब वो मेरे एक असिस्टेंट ने कहा कि सर ने लिखा, और मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो गई. मैं बहुत रो पड़ी, क्योंकि यही अचीवमेंट होती
3: वो
1: है.
3: चीज आपकी आंखों में अभी भी दिख रही है.
1: कि मैं बहुत खुश हो गई. ये थे अमिताभ बच्चन, और फिर आते अनुपम खेर जी.
3: हाँ, उनका तो जानना है.
1: उनका जो कॉमिक टाइमिंग है उसको कोई बीट नहीं कर सकता. वो इतने कमाल के एक्टर है, और उसके वो रुला भी देते हैं, वो हंसा भी देते हैं कि
3: पल में
1: पल में वो है. अब उनके लिए जो असिस्टेंट करके दिखा रहा था वो उस दिन आया नहीं. और मेरी एक लड़की असिस्टेंट थी, एकता. और मैं अपनी लड़कियों को तैयार करती हूँ कि तुम्हें ये करना है. जब मैं कर सकती हूँ तो तुम भी करोगी. और उसने वो कर लिया.
3: हाँ.
1: वो आई सेट पे, सर मैं अमित जी का कर रही हूँ, तू उनका कर. और उस लड़की ने जब अनुपम खेर बन के दिखाया पूरा सेट, ताली बजाया, अनुपम जी सिटी बजाने लगे.
3: हाँ.
1: बहुत खुश हुआ, बोले बस कमाल, अब मैंने ये करना है.
3: हाँ.
1: और वो उछल उछल के सेट पे अपने स्टेप करते थे, और पूरा सेट. उस गाने में ऐसा होता था कि एक भी जूनियर और एक भी डांसर, जैसे शॉट खत्म होता है ना तो हम लोग बाहर निकल जाते हैं. डांसर निकल जाते हैं, हाँ सेट में आ जाएंगे. जूनियर निकल, जूनियर्स बाहर ही नहीं जाते थे,
3: सब वहीं रहते
1: वही रहते थे. मतलब कि 500 लोग वहीं खड़े हैं, 100-150 डांसर वहीं खड़े हैं, और एक्टरों की रिहर्सल चल रही है, और हर बात पे वो हंस भी रहे.
3: हाँ.
1: वो ताली भी बजा रहे.
3: हाँ.
1: और बूढ़े डांसर्स थे हमारे पास, 60-70 हाँ, के डांसर्स हाँ, भी थे.
3: हाँ.
1: और वो आगे आते थे और इनके साथ नाचने लग जाते थे. तो एक अलग माहौल था उस सेट
3: जी,
1: पे.
3: जी, जी.
1: और उसके बाद डेनी सर.
3: हाँ, उनका भी जानना है. वो तो इस बड़े अलग टाइप का किरदार है.
1: वो सीधा बोल देते थे आके कि देखो बेटा मैं भूल जाऊंगा, मुझे नहीं पता, तुमने हाँ, करना है मेरे साथ.
3: हाँ.
1: तो कैमरा के पास हम लोग उनके लिए डांस करते रहते थे,
3: और वो कॉपी करते.
1: और बोमन ईरानी भी, इतने बड़े कलाकार है, उनका भी एक अलग कॉमिक टाइमिंग चल रहा होता था. और वो बोलते थे, उनका एक पोर्शन था जिसमें उन्हें लड़की बनना था, तो मैं जो बोलते थे तुम करके दिखाओ मुझे, मैं तुम्हें कॉपी करूंगा. और फिर उनको केटी को ये दोनों इनको बोलते हैं, और ये लड़की की तरह अदायगी दिखाते हैं, और फिर मैं उनको करके दिखाती. तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस हम लेते हैं ना ऐसे लोगों के साथ, ऐसे कलाकारों के साथ काम करके, वो शायद मैं इतना बोलूं तो आप इमेजिन नहीं कर पाओ जो हमने जिया है.
3: फिर भी हम कुछ प्रतिशत तक तो पहुंच गए.
1: पहुंच गए. और फिर हमारे एक प्यारे से शर्मीले से डायरेक्टर साहब जो सूरज बजातिया जी है,
3: बड़ी सॉफ्टली बोलने
1: वाले, बहुत ही सॉफ्ट. और वो जब आते हैं इन सबको देखते करते हुए, और वो मुझे ऐसे गले लगाते हैं, बहुत असर पे हाथ रखते हैं. हर बार बहुत अच्छा किया शबीना. तो ये कहानियां हैं जिनको हम जीते हैं, जिनके साथ हम सीखते हैं, कि इस उम्र में भी उनकी जो एनर्जी थी, जो सीखने की, बच्चों की तरह वो उछलते थे रिहर्सल पे. अरे एक बार एक बार एक बार एक बार, अरे मैं गलत कर दिया, अरे मैंने, वो भूल जाते थे कि उनकी उम्र क्या है.
3: जी.
1: मैं कहती थी सर आराम से, नहीं नहीं करना है. वो जो बचपन है बहुत मजा.
3: जी.
1: हमने उनसे सीखा कि कलाकार की कोई उम्र नहीं होती.
3: कलाकार कभी बूढ़ा नहीं,
1: बूढ़ा नहीं होता कभी. वो हमेशा एक छोटा बच्चा ही होता है. तो आप गाना देखिए, आपको पता चले उसमें.
3: हाँ, उस गीत को देखने के बाद मजा हमको भी आया था. हम सब भी उसके साथ थोड़ा डांस किए थे कि जब ये डांस कर सकते हैं तो हम तो कर ही नहीं सकते. मैंने आपसे बात कर ली एक्ट्रेस

0: के बारे में, यानी अभिनेत्रियों के बारे में, आपने हमारे पुराने जो दिग्गज हैं उन अभिनेताओं के बारे में भी बता दिया। एक अभिनेता है जिनकी हर फिल्म में शबीना का नाम लिखा ही हुआ है, साथ में शुरुआत कहाँ से हुई उनके साथ, और उसके बाद फिर शायद कोई फिल्म बीच में ऐसी थी ही नहीं जिसमें आप नहीं थी। तो आप समझ गई हैं मैं किस विषय पे बात कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ वो विषय आप खुद ही शुरू करें और हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: सबसे पहले मैं ये बताऊं, आप बात कर रही हैं मेरे, जिसे मैं जिंदगी में मैं कुछ लोगों को अपना मेंटोर गुरु मानती हूँ
0: जी,
1: और मेरी जिंदगी की हर एक सफलता का जरिया मानती हूँ। उनमें अगर सूरज बड़जात्या है तो उसमें एक बड़ा नाम है सलमान खान ऑल्सो
0: जी,
1: जिन्हें मैं भाई बुलाती हूँ
0: जी,
1: बहुत मोहब्बत से, और बहुत जब हाथ उठाती हूँ उनके लिए दुआ करती हूँ
0: जी,
1: क्योंकि आज भी जो आप उनका रूप बाहर देखते हैं
0: जी,
1: वो 5% भी नहीं है जो वो दुनिया के लिए करते हैं
0: जी,
1: 5% भी नहीं है। तो सलमान भाई का और मेरा काम जो शुरू हुआ, मेरी पहली फिल्म एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी खामोशी, गणेश हेगड़े के साथ।
0: खामोशी द म्यूजिकल जर्नी,
1: यस, जो मैंने पहले कहा आपसे कि स्टेज के बाद जब मैं कोरियोग्राफी में आई, जो मुझे गणेश आचार्य जी ने डांस करते हुए देखा, हमारा एक हॉल होता था मंगला हॉल, वहां पे जो डांस करते हुए देखा वो गणेश हेगड़े साहब के ही गाने का डांस कर रही थी मैं।
0: अच्छा,
1: गणेश हेगड़े की जो पोनी है वर्मा, जो बहुत बड़ी कोरियोग्राफर है, वो उनकी असिस्टेंट होती थी उस वक्त, वो मेरी सीनियर है और उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। उनके एग्जाम्स होते थे तो गणेश हेगड़े साहब को ये फिल्म मिली थी खामोशी, जिसमें वो कोरियोग्राफी कर रहे थे, उनकी पहली फिल्म थी, मतलब स्टेज करते थे वो, और संजय लीला बंसाली थे और ये एक लड़की असिस्टेंट ढूंढ रहे थे। तो उस फिल्म में पोनी वर्मा जी ने भी एज एन असिस्टेंट किया और फिर मुझे भी मौका मिला
0: जी,
1: एक स्केड्यूल करने का
0: जी,
1: और मेरे पहले हीरो थे सलमान खान।
0: ओके,
1: जबकि मुझे पता भी नहीं था कि ये सलमान खान है, क्योंकि उस वक्त घर में टीवी नहीं होता था, हम फिल्में नहीं देख रहे होते थे, हमें इतना पता नहीं था, स्कूल में थे हम,
0: आप उस चीज को उतना समझते भी नहीं थे,
1: एक्टिंग इंस्टीट्यूट में थे, सीख
0: जी,
1: रहे थे
0: जी,
1: और फिर उस फिल्म को करने का मौका मिला तो मुझे लगा कि ठीक है, पर डे इतना पैसा मिलेगा, हम गोवा चले गए।
0: हम पैसे के लिए गए थे,
1: चलो वही मास्टर है जिन्होंने स्टेज पे मेरे साथ किया है, कंफर्टेबल है, हम मास्टर जी समझते हैं, गणेश हेगड़े साहब,
0: कोई दिक्कत नहीं,
1: कोई दिक्कत
0: है,
1: नहीं है,
0: नहीं
1: मम्मी
0: है।
1: ने कहा बेटा चलो करते हैं, देख लो क्या है। तो हमने गाने उनके साथ में किए और मेरा पहला हीरो सलमान खान, और उसमें नाना पाटेकर जी भी थे और मनीषा कोराला थी,
0: बहुत
1: तो वो मेरी
0: प्यारी फिल्म है,
1: बहुत प्यारी फिल्म
0: जी।
1: वो फिल्म के बाद मैं 6 महीना एग्जाम्स के लिए वापस आ गई, मेरे एग्जाम्स हुए और उसके बाद स्टेज करने लगी और फिर गणेश आचार्य जी के साथ फुल फ्लेज में फिल्म में शूट किया। तो वो
0: खामोशी में जब सलमान खान को पहली बार आपने डायरेक्ट किया, तो व्हाट यू रियलाइज कि वो बहुत अच्छे डांसर हैं या बहुत अच्छे एक्टर हैं?
1: ही वॉज अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी ऑन सेट फॉर मी।
0: हाँ, भारत की बहुत सारी लड़कियां 90 के दशक में सलमान खान का पोस्टर अपने कमरे में लगाती थी,
1: जो मुझे मतलब छोटी है लड़की तो मुझे बड़े प्यार से बिहेव करते थे, क्या जो बता दो क्या करना है
0: जी।
1: वो भी बड़े यंग ही थे,
0: हाँ,
1: बट वो बड़े ही सूदिंग पर्सनैलिटी थी मेरे लिए उस वक्त, कुछ भी सब कुछ नया था।
0: हाँ,
1: कैमरा पहली बार देखा, अच्छा ऐसे शॉट होता है, अच्छा ये कभी नहीं देखा था,
0: वही सीख रहे थे वही कर रहे थे।
1: तो वो जब देख रही थी मेरे लिए था कि ये तो बड़ा अच्छा हीरो है, बड़े प्यार से बात करता है, मनीषा कोराला बड़ी अच्छी है, इसको बताना है। संजय लीला बंसाली से डर जाती थी मैं सेट पे कई बार, नाना पाटेकर जी से डर जाती थी, बट काम करने आए थे, बस इतनी समझ तो थी नहीं
0: जी।
1: सलमान खान इसलिए याद है कि ही बिहेव रियली वेल विथ मी।
0: हाँ, वो शायद उम्र का भी ऐसा था कि वो आपसे उम्र में भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे,
1: हाँ, और
0: बहुत
1: वो
0: ज्यादा
1: समझते
0: गैप
1: थे
0: नहीं
1: कि
0: था।
1: वो समझ रहे थे कि अच्छे बच्ची नहीं है अभी आई है, और उस वक्त वो तो बड़े स्टार हो चुके थे,
0: जी
1: वो उनकी
0: बिल्कुल
1: बड़ी बड़ी फिल्में आ रही थी।
0: जी,
1: उसके बाद मैं वापस आ गई, उसके बाद में सलमान भाई का, अब उसके बाद जब मैं कोरियोग्राफर बनी तो काफी वक्त तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मैं जब कोरियोग्राफर बनी, एक नियम होता है कि आप जाके सबसे मिलते हो जिनके साथ आपने काम किया है, कि गोविंदा से मिली मैं, सलमान से मिली, क्योंकि मैं उनके असिस्टेंट डेज में कर चुकी,
0: तो
1: मतलब
0: बताने तो जाना
1: खामोशी के
0: पड़ेगा।
1: बाद मैं गणेश आचार्य जी की असिस्टेंट बनी तो सारे गाने सलमान खान के किए मैंने, जुड़वा से लेके जितनी भी उनकी फिल्में थी, रानी मुखर्जी के साथ बोलो, गोविंदा के साथ काम किया, तो सलमान भाई के साथ एक असिस्टेंट डेज में फिर रेपो बन गया, कि वो जब डांस करते थे कैमरा के नीचे मुझे बोलते थे चल तू कर, तो उन्हीं को सिखा रही होती थी, क्योंकि मैं गणेश मास्टर जी मेल है,
0: हाँ,
1: उनके असिस्टेंट थी, उनको कॉपी करती थी, तो सबको लगता था मास्टर जी के बाद शबीना है जो अच्छा करती है उनका स्टाइल, तो तू सिखा, सनी डेओल बोल रहे तू सिखा, संजू बाबा बोल रहे तू सिखा, गोविंदा जी बोल रहे तू सिखा, तो लड़कियों को भी सिखा रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, तो एक वो एक चलन आ
0: रेपो बन
1: गया,
0: गया

0: तो वो सलमान भाई के साथ रेपो बन गया जब उन्होंने पहली बार मुझे अपनी फिल्म के लिए बुलाया। वो थी दबंग में बुलाया था सबसे पहले,
1: जी
0: पहली दबंग मस्त मस्त दो
1: जी
0: नैन गाने किया
1: जी
0: था वो बुलाया। उसके बाद में एक गैप आया, उसके बाद में फिर जय हो में बुलाया उन्होंने। जय हो का गाना जय जय जो क्या करो आजा जय हो करो, तो वो गाना हिट हो गया।
1: बिल्कुल
0: उसके बाद में सूरज बड़जात्या जी की फिल्म आई, शायद आगे पीछे दबंग थ्री सूरज बड़जात्या की फिल्म 2014, उनके साथ काम किया। सूरज जी ने बोला मेरे गाने तो शबीना ही करेगी। फिर सलमान भाई से मुलाकात हुई तो एक
1: जी
0: रैपो बनता था ही मेरा पहले से उनके साथ, तो आसानियां बढ़ गई क्योंकि ही न्यू दैट ओके शबीना इज देयर, चलो करेगी। वो पिक्चर मेरी जो पहली हिट हुई वो भी सलमान खान की फिल्म थी, जो प्रेम रतन धन पायो।
1: जी बिल्कुल
0: उसके पहले आशिक बनाया आपने,
1: जी
0: उसके पहले नाच आई मेरी, काफी फिल्में चली, मुझे कभी किसी के पास जाके काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। माधुरी दीक्षित फिल्म आने के बाद इंडस्ट्री का चलन था, मुझे
1: हाँ,
0: बुलाने
1: डांस बहुत
0: लगे
1: ज्यादा था
0: बहुत ज्यादा,
1: उसमें।
0: रामगोपाल
1: जी
0: वर्मा अपनी सारी फिल्में मुझे दे रहे हैं।
1: जी
0: तो ये चलता रहा चलता रहा, फिर सलमान भाई की फिल्म आई, पहला गाना मेरा हिट हो गया आशिक बनाया। उसके बाद सलमान भाई का गाना जिसने मुझे नाम दिया, जिसे कहते हैं ना कि आप अपनी डीवीडी नहीं भेज रहे हो, पहले डीवीडी भेजते थे प्रोड्यूसर के पास के सर देखिए मैंने ये काम किया है।
1: अब इसके बाद डीवीडी नहीं भेजनी
0: अब
1: पड़ी।
0: मैं प्रेम रतन के बाद डीवीडी नहीं भेजना पड़ा, इंडस्ट्री में सबको पता चल गया शबीना खान कौन है, बिकॉज मेरा वो गाना प्रेम रतन धन पायो हिट हुआ। जबकि वो गाना सोनम कपूर की स्टेप्स थी, लेकिन सलमान खान हर जगह जा रहे थे और वो स्टेप कर रहे थे सोनम के साथ। ये पहली बार हुआ था
1: हाँ
0: कि सलमान भाई बोलते थे अरे लड़की का स्टेप मुझसे करा रहे हर जगह, एंड ही यूज टू डू ऑल्सो बिकॉज ही वॉज डूइंग इट। वो हिट, वो
1: ऑरा क्रिएट हो गया था
0: ऑरा
1: उस
0: क्रिएट
1: चीज
0: हो गया,
1: का।
0: और वो स्टेप आज भी यूट्यूब में वो गाना
1: हाँ,
0: सबसे ज्यादा
1: कई
0: सीन
1: लोग
0: है,
1: रील्स भी उस पे बहुत
0: उसी पे
1: बनाते
0: रील
1: हैं।
0: बनी, डब स्मैशेस
1: हाँ
0: बने, मैं हिट हो गई,
1: जी
0: मेरा करियर चल पड़ा। तो वो सलमान खान थे। फिर दबंग हुड़ हुड़ दबंग जब आया,
1: हाँ
0: उन्होंने जो
1: वो
0: मेरे
1: पैंट की जेब में उंगली डाल के
0: वो तो
1: कमर
0: गणेश
1: हिलाना
0: आचार्य जी
1: ये।
0: ने किया
1: जी
0: था,
1: जी जी
0: दो गाने उन्होंने किए। जब तीसरी दबंग का आया तो उन्होंने
1: अच्छा
0: मुझे दिया ये गाना
1: अच्छा
0: कि शबीना करेगी तुम करो ये गाना।
1: अरे वाह,
0: फिर वो स्लीव्स के साथ में मोमेंट हिट हुआ,
1: अच्छा
0: तो फिर उन्होंने एक चलन हो गया कि वो उन्होंने कभी मुझे फीमेल कोरियोग्राफर की तरह देखा ही नहीं है, उन्होंने हमेशा मुझे एक सेंसिबल कोरियोग्राफर देखा।
1: मतलब मेल फीमेल से परे
0: परे
1: एक कोरियोग्राफर।
0: एक कोरियोग्राफर है जो जज्बात समझती है, जो फैमिली बैकग्राउंड से आती है ये फैमिली समझती है। तो मुझे ट्यूबलाइट का गाना दिया उठा के, कबीर खान को बोला ये गाना तो नाच मेरी जान शबीना करेगी उसको दो। तो वो मुझे हमेशा एक ऐसा गाना अपनी फिल्मों में दे देते हैं बुला के जो उन्हें लगता है शबीना करेगी।
1: तो ये बहुत अच्छी बात है ना, साथ
0: बिल्कुल
1: लेके चल रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: और साथ सिर्फ इसलिए नहीं लेके चल रहे कि करना है, इसलिए चल रहे हैं क्योंकि
0: कि ही नोज
1: कुबत
0: दैट
1: है,
0: यस
1: काबिलियत है।
0: काबिलियत को देख
1: जी
0: के उन्होंने मुझे बुलाया। राधे में उन्होंने गाना दिया,
1: जी जी
0: उसके बाद
1: राधे का कौन सा गाना था आपका?
0: जो परदेसिया सॉन्ग का रिमिक था जैकलीन का और सलमान
1: हाँ
0: खान का,
1: हाँ हाँ हाँ वो बहुत खूबसूरत है
0: वो
1: जी
0: गाना मुझे दिया बुला के। तो एक
1: जी
0: बेस्ट गाना वो मुझे बुला के दे देते हैं, और उन्हीं की वजह से आई थिंक जब एक मेगा स्टार आप पे भरोसा करता है ना तो आपके लिए आसानियां हो जाती है।
1: जी
0: बाकी लोगों को लगता है यार सलमान खान की कोरियोग्राफर, तो वो एक चलन चल गया, मुझे बोलने लगे सलमान खान की कोरियोग्राफर सलमान खान की कोरियोग्राफर सलमान खान
1: हाँ,
0: की कोरियोग्राफर।
1: तो ये गीत जो आपने और सलमान खान ने साथ में किया है, यानी शबीना खान और सलमान खान का साथ का गाना है, वो कोई एक गीत जो आप कहेंगे वो हम हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाना चाहेंगे, आपकी पसंद का, आपकी ख्वाहिश से?
0: सलमान भाई का एक हमारा साथ में किया हुआ गाना जो मुझे बहुत पसंद है, सभी गाने पसंद है मुझे वैसे, नाच मेरी जान एक गाना है, बहुत पैपी नंबर है।
1: जी

0: श्रोता हमारे साथ हैं शबीना खान, जो कि एक बहुत बहुत बहुत बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। और अगर मैं कहूं कि आज तक की जो लिस्ट बनी है, ऐसा कोई अभिनेता या अभिनेत्री या कोई दिग्दर्शक या कोई निर्देशक कोई नहीं बचा है जिसके साथ शबीना खान ने काम नहीं किया है, और जो भी किया है उम्दा किया है, परफेक्ट किया है और अब तक का बेस्ट किया है। हमने जब तक इनके बारे में इनके जाना या इनसे बात की है, जो अब तक उस सब में इतने सारे गाने आए हैं और हर गाना अद्भुत है, ऐसा लगता है कि वो अपने उत्कृष्टतम उत्कृष्ट पर बैठा हुआ है। तो उन्हीं में से एक और फिल्म आई थी जिसने अपना नाम पूरी दुनिया में बना लिया था, और उस फिल्म में हैंडपंप भी उखाड़ा गया, भारत के बारे में भी बात की गई। और ये फिल्म है ना, जो अपना एक कहा जाता ना, एक स्थान बना चुकी है, और कई सालों बाद वापस वो फिल्म आती है। और शायद जब ये फिल्म आई थी तब शबीना खान बहुत छोटी सी रही होंगी, और जब ये दोबारा ये फिल्म आई तब शबीना खान जो है वो कोरियोग्राफर बन चुकी हैं, और ये फिल्म इनके हाथ में आती है। फिल्म का नाम है गदर 2। ये फिल्म कैसे आपके हाथ में आई, और जो गाना अपने आप को पहले ही स्थापित कर चुका है, उस गाने को फिर से नए कलवर के साथ प्रेजेंट करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उस गाने को हमने देखा था एक स्कूल के बड़े से ऑडिटोरियम में मंच पे नाचते हुए। अब उस गाने को आप सड़क पे, यानी एक स्थान पे, एक आंगन में नृत्य करवा रही हैं, तो थोड़ा सा अगर वहां तक हमें ले जाए तो।
1: सो पहले सवाल का जवाब ये है कि गदर,
0: हाँ,
1: जब गदर रिलीज हुई थी 2020-21 में, तब मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी गणेश मास्टर जी के साथ।
0: जी,
1: इस फिल्म को किया था जय बोराडे साहब ने। जय बोराडे हमारे बहुत फेमस कोरियोग्राफर, जो सूरज बढ़ जाती है की सारी फिल्म,
0: बहुत बड़े कोरियोग्राफर,
1: बहुत बड़े कोरियोग्राफर थे।
0: हम साथ साथ हैं भी उनकी,
1: हम साथ साथ हैं, मैंने प्यार किया, उनकी लास्ट फिल्म थी विवाह,
0: हाँ,
1: उसके बाद मैंने ज्वाइन किया सूरज बढ़ जाती
0: है, एक विवाह के पास आया था जी,
1: उसके बाद से मैंने राजश्री प्रोडक्शन को ज्वाइन किया। तो जब गदर 2 कैसे आई, अनिल शर्मा जी जो हमारे बहुत ही दिग्गज, बहुत ही माने हुए डायरेक्टर है, उनके बेटे की एक फिल्म आई थी जीनियस, उसमें उन्होंने मुझे दो गाने दिए थे।
0: अच्छा।
1: जब उन्होंने मेरा काम देखा तो उन्होंने कहा कि बड़ी फिल्म करेंगे साथ में।
0: अच्छा।
1: और जब गदर फिल्म आई तब उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे कहा ये फिल्म तुमने करनी है।
0: अच्छा।
1: तो उन्हें लगा था दो तीन गाने देंगे, मैंने कहा सर मैं पूरी फिल्म करूंगी, अब पूरी फिल्म एक ही फिल्म करूंगी। ऊंचाई की शूटिंग चल रही थी मेरी, आई सेड ऊंचाई पूरी फिल्म मैंने अकेले खुद की है, ये फिल्म भी पूरी करने दो मुझे, और मेरा पूरा वक्त आपका, आप जब बुलाओगे, सुबह शाम 3 बजे रात को 4 बजे सुबह, जब बुलाओगे मैं आपके साथ करूंगी, पूरी फिल्म करूंगी।
0: मतलब उतने दिनों में मैं कुछ और नहीं,
1: कुछ और काम नहीं करूंगी, क्योंकि इस फिल्म की डिमांड होनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट थी, 22 साल बाद रिलीज हो रही है, यू नो। और चैलेंज ये था इस फिल्म के साथ के 22 साल के बाद आज की ऑडियंस सोशल मीडिया को लेकर बहुत अलग है। अगर 40% पुराने लोग ये फिल्म देखेंगे तो 60% आज के लोग देखेंगे, जो उस वक्त पैदा हुए होंगे और आज 22 साल के होंगे, 25 साल के होंगे, या 27, 28 साल के होंगे, तो ये ऑडियंस तो यही मेन है अपनी, 65-70%। तो मैंने काम तो बहुत मेहनत की इस फिल्म पे, एक एक गाने को तराशा, और सवाल ये था कि आज की ऑडियंस को, पिक्चर बनी है हमारी 1970 के ऊपर,
0: बहुत पुराने समय की बात है,
1: 70s के ऊपर फिल्म बनी है, अंदाज 70s का है, कैरेक्टर 70s के, गाने 70s के अंदाज में,
0: खुशबू उसी समय की है,
1: सब कुछ उसी समय का, लेकिन दिखाना आज की ऑडियंस को है, और

0: मैंने उनसे कहा कि सर ये सिग्नेचर मूवमेंट, सबने कहा सिग्नेचर मूवमेंट अलग करते हैं, अलग करते हैं, अलग करते हैं। सर नहीं सर, सिग्नेचर मूवमेंट वो मत करिए, कोई और कोरियोग्राफर बोलता मैं करता हूँ मेरी स्टेप,
1: हाँ
0: यहाँ पे आपकी अना, आपका ईगो नहीं आना चाहिए।
1: हाँ
0: अच्छा जय मास्टर जी को एक मुझे श्रद्धांजलि देनी है,
1: हाँ
0: उन्होंने जो बनाया था स्टेप हाथ का
1: हाँ
0: गड्डी लेके,
1: हाँ हाँ
0: वही स्टेप रखेंगे। उनके बेटे का जो रोल अभिनय निभा रहे थे उत्कर्ष शर्मा, जो अनिल
1: हाँ
0: शर्मा जी के बेटे हैं,
1: जी
0: उनको मैंने अलग स्टेप दिया।
1: हाँ
0: मैंने कहा
1: बिल्कुल
0: कि आप, वो 70s का बच्चा है, तो उनको मैंने स्टेप दिया राजेश खन्ना वाला,
1: हाँ
0: क्योंकि वो बच्चा होता है राजेश खन्ना का और उसका दीवाना।
1: हाँ
0: और फिर वहां जाके ये गाना बना। और अगर आप पूरी फिल्म के गाने देखो, उसमें दो गाने नए एक्ट कलाकारों के साथ निभाए गए थे
1: जी
0: जो सबसे बड़े हिट हुए। एक
1: जी
0: गाना था चलते रे इश्क में,
1: चलते रे इश्क में बहुत
0: जो
1: पसंद किया यूथ ने।
0: उसमें ये दिखाया है कि वो लड़की पाकिस्तान की मुसलमान फैमिली से ताल्लुक रखती है, ये बच्चा हिंदुस्तान से जाता है, उनका अफेयर होता है, और लड़की पाकिस्तान की ईद के दिन डांस कर रही है। तो
1: हाँ
0: हमने चिलमन बनवाई, क्योंकि मुझे पता है
1: बहुत
0: ना
1: खूबसूरत सेट था वो।
0: चिलमन बनवा के, चिलमन के अंदर वो लड़कियों के साथ नाच रही है, चिलमन के बाहर लोग ईद, और पाकिस्तान के अंदर ये गाना हो रहा है ऐसा दिखाया है,
1: हाँ
0: और हिंदुस्तान की ऑडियंस उसको देख रही है। तो वो गाना इतना सुपरहिट हुआ कि लोग आज गदर के बाद फौरन चलते रे इश्क में कहते हैं
1: जी
0: गाना,
1: बिल्कुल
0: इतना खूबसूरत।
1: बिल्कुल
0: और उत्कर्ष शर्मा का एक गाना हिट हुआ था जो झूम झूम गाना था,
1: हाँ
0: तो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, पूरी दुनिया के लोगों ने। तो मैं ये कह रही हूं फिर से कि मेहनत ही मेहनत, कंसिस्टेंसी, लगन, और बार बार एक चीज को सोचना, करते रहना, रातों की नींद गंवाना, बेचैन रहने से ही आप गदर 2 जैसी फिल्म को दर्शा सकते हो।
1: फिर से वही बात, मेहनत तो करनी पड़ेगी,
0: करनी पड़ेगी
1: बिना
0: आपको,
1: मेहनत के।
0: आप हर बार साबित करना पड़ेगा, आप बैठ नहीं सकते पीछे,
1: हाँ,
0: आपको
1: यानी कि
0: साबित करना
1: आपने
0: पड़ेगा।
1: इतनी बड़ी बड़ी सुपर डुपर हिट दे दी, बहुत सारे अवार्ड्स आपने ले लिए, लेकिन जब गदर टू सामने आई, ऊंचाई में इतने सारे बुजुर्ग वय लोगों को भी आपने काम करवा लिए, यानी वो बुजुर्ग वय नहीं बोलना चाहिए, वो दिग्गज बोलना चाहिए,
0: दिग्गज है, लेजेंडरी,
1: भारत के वो सबसे बढ़िया कोहिनूर
0: बिल्कुल
1: हैं, उन
0: कोहिनूर
1: सबको
0: है वो,
1: आपने काम करवा लिया। और
0: बिल्कुल
1: उसके बाद, क्योंकि इन्होंने उस समय जो काम करके दिया है, 70 60 से लेके 80 90 के दशक तक, और उसके बाद भी वो करते ही जा रहे हैं, पर वो जो किया है वो तो खैर बात ही अलग है। और उनसे काम कराने के बाद गदर 2 में भी वही पसीना बहा रहे हो, एसी कमरे में बैठे हो लेकिन पसीना तो आ रहा
0: बिल्कुल
1: है। तो हमें मेहनत करनी चाहिए, ये
0: बिल्कुल
1: बात, ये सीख हमारे छोटे छोटे जो श्रोता हैं
0: बिल्कुल
1: उन तक बात पहुंचनी चाहिए, और पहुंचती है। इतने सारे लोगों के साथ डांस किया, इतने सारे लोगों को काम कराया, राजपाल यादव एक नाम आता है।
0: मेरा पहला हीरो,
1: अच्छा
0: मेरी पहली फिल्म का पहला हीरो, बिल्कुल। मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ,
1: हाँ
0: मैं
1: हाँ
0: हीरो तो राजपाल यादव ही
1: जी
0: थे, तो
1: जी
0: मैं तो उनके जिंदगी भर अभी भी मिलती हूँ तो बोलती हूँ मेरा पहला हीरो।
1: हाँ, तो हमारा प्रश्न यहाँ पे ये आ रहा है कि वो तो कॉमिक साइड में जाते हैं, कॉमिक साइड को डांस में या कोरियोग्राफी में कैसे कन्वर्ट कर पाते हो, क्योंकि कोरियोग्राफी में भी वो जो कॉमिक टाइमिंग है, या वो जो मजाक मस्ती है, या वो जो हल्की सी एक छोटी सी बात ही होती है, राजपाल यादव के साथ जो उनका अभिनय है, वो एक हल्का सा किरदार थोड़ा सा घूमता है, उतने में भी जनता जो है, जो देख रही होती है, वो हंसना शुरू कर देती है।
0: बिल्कुल,
1: तो उनके साथ कैसे आपने काम किया?
0: मैं आपको एक बात बताऊं, बीइंग एन एक्टर माई सेल्फ, मैंने एक्टिंग सीखी है,
1: जी,
0: तो सबसे मुश्किल काम होता है हंसाना लोगों को, हंसाना
1: रुलाना आसान है।
0: बहुत मुश्किल है। और वही काम मैंने कहा ना, जैसे ऊंचाई में केटी को मैं अनुपम खेर के बारे में कह रही थी, मैं वैसे ही राजपाल यादव है, जितना बंदा उछल उछल के हंसाता है वो उतना रुला भी देता है आपको 1 मिनट के अंदर। और जिसके अंदर ये एक रिदम है, जिसके अंदर कॉमिक टाइमिंग होती है उसके अंदर रिदम होता है, तो डांस करना तो बाएं हाथ का खेल है।
1: अच्छा।
0: उसके बाद मैंने उनके 2 3 गाने किए जिनमें उन्हें नचाया है, और वो बराबर टाइमिंग पर डांस करते हैं,
1: क्या बात है,
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसे बढ़िया बेहतरीन अभिनेता अभिनेत्रियां भी हमारे यहाँ पे हैं। आपने कुछ साउथ के डांसर्स के साथ भी काम किया
0: काफी काम किया
1: है
0: साउथ
1: ना,
0: में,
1: साउथ के अभिनेताओं के साथ, अभिनेत्रियों के साथ काम किया, तो क्या अंतर है बॉलीवुड और दक्षिण भारत की काम में?
0: जिस वक्त मैंने काम किया, मैं बात कर रही हूँ 2000 शायद 12 13 की, मैं इतना काम करती थी वहां पर कि मुझे मुंबई आने का वक्त नहीं मिलता था।
1: जी
0: तमन्ना, कार्ति, सूर्या, पवन कल्याण, ऐसे कई नाम हैं जिनके साथ मैंने काम किया। एक चीज जो मैं उस वक्त वहां देखती थी, डिसिप्लिन। अगर वो 7 बजे की शिफ्ट रखते हैं तो 7 बजे पहला शॉट होना चाहिए, मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ।
1: 7 बजे रखते हैं तो 7 बजे शॉर्ट होता है, मतलब

0: उसके पहले लोग आते हैं।
1: पहले 6 बजे सब आके सेटअप करके रेडी होके एक्टर शुड टच द सेट एट
0: मतलब
1: 7.
0: एक्टर 5 बजे आके मेकअप करा के तैयार होकर बैठा होगा।
1: अगर आप वो डिसिप्लिन देखा है कि मैंने डायरेक्टर को पैकअप करते हुए देख लिया कि एक एक्टर सिर्फ 10 मिनट लेट आया तो ही कॉल्ड मी असिस्टेंट के साथ, मैंने एक्टर के साथ रिहर्सल किया, शॉर्ट दिखाया डायरेक्टर को और डीओपी को, शॉर्ट की रिहर्सल हो गई, बस टेक बोलने वाले हैं, हीरोइन ने गाउन उतारा, बोला पैकअप, बड़ी हीरोइन मैं नाम नहीं लूँ, क्यों? ही सेड अम्मा यू एंटर्ड इन द सेट एट 7:10 सो टुमारो वी रोल दिस एट 7.
0: 7 means 7
1: पैकअप. शी स्टार्टेड क्राइंग. ही सेड नो प्रॉब्लम. सो ये एक, इसे आप रूडनेस नहीं बोलते हो, इसको कहते हो कि आपको कभी कभी जब चीजें सीधी करनी होती है तो थोड़ा सा अलग रास्ता अपनाना होता है. वही किया. नेक्स्ट डे 6:30-7 में लड़की बैठी हुई थी वहां पे, जबकि उसकी गलती उस दिन भी नहीं थी, लेकिन ये एक तरीका है उनका काम करने का. लेकिन अब हमारे यहाँ पे भी मैंने ये देखा है कि हम वक्त पे काम शुरू कर देते हैं.
0: अच्छा,
1: तो और कहते हैं ना कुछ एक्टर बहुत लेट आते हैं, बट लोगों को ये नहीं पता कि वो लेट आने के बाद भी 8 घंटे का काम 4 घंटे में खत्म करके देके निकल जाते हैं
0: क्योंकि वो इतना क्विक है.
1: एब्सोल्युटली.
0: हाँ, तो अब जब इतनी अच्छी बात चल रही है तो एक गाना और बनता है, क्योंकि हम तो इंफोटेनमेंट वाले हैं, इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और एंटरटेनमेंट भी करते हैं. तो एंटरटेनमेंट के लिए कौन सा गाना हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे?
1: मेरा बहुत फेवरेट गाना गदर 2 का चल तेरे इश्क में खो जाते हैं.
0: क्या बढ़िया, बहुत खूबसूरत सा गीत है. तो ये गीत हम हमारे श्रोताओं तक पहुंचाते हैं और हम आपके काम के इश्क में खो जाते हैं उतनी देर के लिए. बहुत खूबसूरत काम किया शबीना जी, बहुत बढ़िया. तो चलते हैं इस गीत की तरफ.

0: हालांकि शबीना जी, हमने आपसे बात की लेकिन ऐसा लगता है कि इतनी देर में आपको समेट पाना बहुत कठिन है। फिर भी हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने आपसे बहुत सारी बातें कर लिया, ऐसा हम मान रहे हैं खुद से। हालांकि हम भी जानते हैं कि अभी बहुत सारे गानों की बहुत सारी कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपसे सुनी जा सकती हैं, और रोचक तथ्य और रोचक बातें आपकी सुनने को मिलेंगी, और हम चाहेंगे कि सुने भी एक बात। लेकिन उसके पहले एक बात बनती है कि शबीना खान यानी छोटी सी 7वीं 8वीं की लड़की आई थी इंडस्ट्री में, उसने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करके बहुत बड़ी बन गई। अवार्ड्स भी बहुत सारे मिले, फिल्म फेयर मिला, बहुत सारे अवार्ड्स मिले। तो हम चाहते हैं कि वो अवार्ड्स जब आप ले रहे थे कैसा लग रहा था? कौन था जो आंखों के सामने आया था कि यार थैंक यू, तेरे कारण मुझे ये मिला है?
1: मेरी अम्मी। मुझे पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला
0: जी,
1: तो मैं मुंबई में थी नहीं। प्रेम रतन धन पायो के लिए मुझे इनविटेशन आया, मैं मुंबई में थी नहीं, तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी चल नहीं पाती थी उस वक्त, उनका बैक का ऑपरेशन हुआ था।
0: अच्छा।
1: तो मैंने कहा अम्मी तुमको जाना पड़ेगा, ये तुम्हारा अवार्ड है, क्योंकि जिंदगी भर से मैंने सोच के रखा था कि जब भी अवार्ड मिलेगा मैं अकेले नहीं जाऊंगी स्टेज पर,
0: माँ को साथ लेके
1: अम्मी को ले जाऊंगी, क्योंकि ये उनका अवार्ड है। हर एक कदम चली मैं थी, बट दिल और दिमाग उनका था। मुझे इतनी तरीके से सलीके से पालना, इस तरह बनाना, इतना सोच समझ के चलने वाली लड़की, बचपन में हमें क्या पता होता है? कुछ नहीं पता होता है। हमारी माएं होती है जो हमें,
0: और उस जनरेशन के बच्चों को कुछ नहीं पता होता था।
1: एग्जैक्टली, हमारे पास टीवी नहीं, रेडियो नहीं, ये हम सिर्फ अपनी माँ को सुनते थे, उसको देखते थे, उस जैसे बनना चाहते थे। बाल तुम्हारे लंबे हैं, मुझे भी बाल लंबे चाहिए, तुम ऐसी थी। मेरी माँ मेरी हीरोइन है, मेरा बाप मेरा हीरो है, हम यही थे ना उस जनरेशन।
0: कई बार ऐसा होता था, पूछते थे बड़े होके क्या बनना है, तो मम्मी बनना है,
1: मम्मी बनना है या टीचर बनना है। हमारी टीचरें भी हमारी बहुत बड़ी, आजकल वक्त बदल गया है, लेकिन हमारी टीचरें हमारी पहली बात
0: टीचर
1: रोल मॉडल होती थी हमारी टीचर, हमारे सर, हमारे टीचर, हमारे ट्यूशन टीचर, यही होता था। तो मैंने हमेशा सोचा था अम्मी को ले जाऊंगी और उनके हाथ में अवार्ड दूंगी और फिर उनको बोलूंगी मुझे अवार्ड दे। तो कई बार ऐसा भी हुआ, मैं पहुंची और मुझे अवार्ड नहीं मिला, किसी और को मिल गया, मैं स्पीच करके गई, नॉमिनेशंस में मैं थी, तो जब ये अवार्ड मिला, देखो कुदरत ने भी मेरे मैनिफेस्टेशन को कैसे ओके हाँ किया। कहते ना, हम जो मानते हैं वो ही मिलता है कुदरत से। मैं मुंबई में हूँ नहीं, बैंगलोर में शूट कर रही हूँ, फोन आया आपको अवार्ड मिल रहा है, वो भी ओरिजिनल दादा साहब फाल्के अवार्ड।
0: क्या बात है।
1: या तो अम्मी को फोन, अम्मी बोले बेटा मैं जाने पर नहीं। मैंने अपने भाई को फोन किया, सर बेटा व्हील चेयर पर ले जाना अम्मी को,
0: पर लेके जाना,
1: बट लेकर जाना, मैं चाहती हूँ अम्मी जाए। मेरी अम्मी गई, उन्होंने वो दादा साहब फाल्के अवार्ड लिया और वहां पे उन्होंने बोला मेरी बेटी के लिए मैं ले रही हूँ। वो अवार्ड मेरी माँ को मिला है, कम से मेरा अवार्ड नहीं है वो
0: जी।
1: तो उस अवार्ड को मैं बहुत अलग नजर से देखती हूँ। उसके बाद पटाखा फिल्म के लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन, उसके बाद मराठी फिल्म के लिए जी सिने अवार्ड, मैंने मराठी फिल्में भी की है। उसके बाद बस वहां से सिलसिला शुरू हुआ, कई सारे अवार्ड्स मिले,
0: अब अलमारियां भर चुकी हैं।
1: हाँ, काफी कुछ काफी कुछ। अब तो खैर बहुत सारे अवार्ड्स हो चुके हैं
0: जी,
1: बहुत सारे अवार्ड्स हैं जिनके अभी भी फोन आते हैं और हम कभी जा पाते हैं कभी नहीं जा पाते, लेकिन जिसको मैं सराहती हूँ बहुत ज्यादा, फिल्म फेयर और दादा साहब फाल्के अवार्ड, अजीज सिने अवार्ड, और गदर भी, सारे गदर के गाने भी अवार्ड्स में थे
0: जी।
1: फिर एक नेशनल अवार्ड के लिए मैं 3 बार नॉमिनेशन में आई हूँ।
0: क्या बात,
1: देखो आपके सारे श्रोता मेरे लिए दुआ करें और मुझे नेशनल अवार्ड इस साल।
0: हम सबकी प्रार्थना है कि आपके हाथ में नेशनल अवार्ड आना चाहिए, जिसने इतनी मेहनत की है, अपना पूरा जीवन दिया है और किरदारों को खुद के नजरिए से हम तक पहुंचाया है।
1: बिल्कुल,
0: या कहें कि किरदारों के रूप में खुद हमारे सामने आई है, तो उसको मिलना तो चाहिए। तो हम सबकी दुआएं, हम सबकी प्रार्थनाएं आपके लिए रहेंगी। तो कोई एक गाना जिसने आपको बड़ी खुशी दी हो, ऐसा मन किया हो कि हम खड़े हैं तो 3 फीट ऊपर उछल जाएं और थोड़ा नाच लें और थोड़ा नाच लें, ऐसा कोई गाना जिसको करने के बाद बड़ा मजा आया हो या करवाने के बाद?
1: ऐसा एक गाना है तो जरूर, हमारे लेजेंडरी

0: मेगा स्टार सलमान खान का गाना है। उस गाने की हर लम्हा उसका मेरे लिए कीमती था, क्योंकि एक फीमेल कोरियोग्राफर को हुड़ हुड़ दबंग गाना देना
1: जी
0: पहली
1: सही
0: बार
1: बात है
0: अपने आप में बहुत।
1: जी।
0: वो गाना जब हम कोरियोग्राफी कर रहे थे तो मेरा जो मेल असिस्टेंट है, मेरा भाई शर्जिल, वो मेरा राइट हैंड है हमेशा से। जब हम
1: आपने
0: दोनों
1: बताया
0: नाचते हैं तो ऐसा लगता है कि जमाना कैरेक्टर को
1: अलग
0: देख रहा है, एक
1: जी
0: लेवल अलग है। वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मर है।
1: जी
0: उसके बैक में प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि
1: अच्छा
0: उससे एक गाने पहले वो इंजर्ड हो गया था।
1: ओ
0: अब वो डांस कर नहीं पा रहा है। इस फिल्म के डायरेक्टर है प्रभु देवा, जो मेरे गुरु रह चुके हैं।
1: जी
0: सलमान खान साहब ने इतना बड़ा गाना दिया है, तो मैं थोड़ी सी ऐसी हो गई कि मैं फीमेल हूँ, हुरूर दबंग मुझे करना है, और मैं चाहती थी कि शर्जील के ऊपर किया जाए और वो इंजर्ड है, तो मैं क्या करूं। तो मैं जब रिहर्सल हॉल पे जाऊं तो अपने 20 लड़के जिनके साथ मैं कंपोज कर रही थी, मेरे अपने डांसर, उनमें से चुनती रहूं, ढूंढती रहूं कि कोई है जो ऐसा परफॉर्म कर
1: किससे
0: सके।
1: करवा दें।
0: क्योंकि वो गाना जब मैं कंपोज कर रही थी उसमें एक दबंग वाला एक वो था ऑरा, और वो गाना जो था इस बार वाला, वो उस पावर से कनेक्टेड हमें करना था जो ऊपर से आता है,
1: जी
0: वैसा पावर चाहिए था।
1: हाँ
0: मुझे मिले ही ना, मिले ही ना। और मैं गाना कंपोज करती जा रही हूँ, डांसर लड़कों को सिखाती जा रही हूँ, और ढूंढ रही हूँ कोई एक लड़का मिल जाए। और फिर तीसरे दिन मुझे सारे डांसर और मेरे अपने भाई ने बैठ के बोला कि यू परफॉर्म,
1: ओ
0: यू शो इट टू प्रभु देवा, यू
1: ओके
0: शो इट टू एवरीबडी।
1: ओके
0: लड़कों ने बोला, मैम देर इज नो अदर डांसर हु कैन डांस लाइक यू द वे यू आर डूइंग दैट सॉन्ग। तब प्रभु सर जब आए, और मैंने सोचा यार सच में,
1: प्रभु देवा के सामने
0: अच्छा
1: डांस
0: प्रभु
1: कर
0: देवा
1: रहे
0: के साथ सामने
1: हो
0: जब वो आए, बोले यू विल डू इट, वाई
1: हाँ
0: वाई वाई यू, सर एक बार देख लीजिए। फिर उसके बाद जब मैंने करके दिखाया, वो भूल गए कि मैं लड़की हूँ। प्रभु सर वो बस मुझसे डिस्कस करते रहे। फिर हम सेट पे पहुंचे, सलमान भाई वैसे ही रिहर्सल नहीं करते, सेट पे पहुंचे, हम कर रहे थे ये गाना शूट, हम इंदौर में कर रहे थे गाना। तो जैसे हमेशा की तरह सलमान भाई ने सोचा नहीं कि मैं लड़की हूँ, लड़का हूँ, कौन हूँ, मैं कोरियोग्राफर हूँ। मुझे बोले चलो पूरा गाना करके दिखाओ। अब पूरा गांव वहां पे खड़ा है सेट पे, सलमान भाई आए तो पूरा गांव खड़ा
1: हाँ
0: हुआ
1: वो तो
0: है,
1: आ गई
0: और मैं भी भूल गई कि मैं लड़की हूँ भाई, मैं तो कोरियोग्राफर हूँ। हमेशा की तरह दबंग अंदाज में मैंने वो गाना गांव के सामने किया,
1: हाँ
0: पूरा गांव शूट कर रहा था, एंड दे ऑल क्लैप्ड। एंड सलमान भाई बोले करवा लेना मुझसे तुम ऐसे बस। वो जो शूट होके आया और लोगों ने पोस्ट करना शुरू किया, मैं अपने आप में हैरान थी। मेरे सारे लड़कों ने मुझे ऊपर उठा लिया कि मैम व्हाट वाइब्स यू गेव। तो उस वक्त मैं तो कोरियोग्राफर थी ना, मैं लड़की थी नहीं। अच्छा अब शूटिंग शुरू होती है और मैं हर शॉट मैं करके दिखा रही हूँ, बिकॉज माई असिस्टेंट शर्जिल वॉज ऑन सेट बट ही कुडंट डू इट। नाउ मुझे ही करना है, शॉट लगाऊं करके भी मैं दिखाऊं, भाई को भी सिखा रही हूँ, कर भी रही। अब ये पूरा जो गाँव के लोग है वो खड़े रह के देख रहे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन,
1: वो समझ रहे उस
0: वो
1: चीज को।
0: देख रहे हैं मुझे, देख रहे हैं। अब मैं रोजों में थी, उस वक्त रमजान चल रहा था, मेरे रोजे भी चल रहे थे। अब ये गाना खत्म हुआ, जैसे ही सब हो गया, लास्ट शॉट एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड टू लीव, और मैं अपने होटल की तरफ ऊपर जा रही हूँ, एक मजमा सा मेरी तरफ भागता हुआ आया। और मुझे लगा ये लोग आके मुझे बोलना चाहते होंगे सलमान खान से फोटो दिलवा दो, ऐसे कुछ होगा। और मैं बोली अरे अरे अरे रुको रुको, मुझे जाने दो फिर चले जाओ मुझे जा। सर नहीं मैम, वी वॉन्ट टू, दे आर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स एंड गांव के आसपास के लोग, एंड दे सेड कि आपके साथ फोटो उतारना है।
1: क्या बात है।
0: एंड देन वो फोटो उतारे, फोटो उतारे, ऑटोग्राफ ले, मैं एकदम हैरान थी। उसमें से पूरे ग्रुप ने लास्ट में मुझे बोला, मैम वी वॉन्ट टू गिव यू वन नेम टूडे, और लड़कियां थी उसमें 50 के करीब, आज के बाद हम जब भी आपका नाम ले, आपका नाम दबंगिनी होगा, असली दबंग आप हो हमारे लिए। अगर
1: शबीना
0: सर,
1: बन गई दबंगनी
0: तो उन्होंने मुझे ये खिताब दिया कि आप हमारी दबंगिनी हो।
1: जी
0: तो आज भी वो सारे लोग जो खड़े थे वो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे है,
1: हाँ
0: मेरी पोस्ट देखते और मुझे पोस्ट बताते हैं कि आप दबंगिनी शबीना खान, दबंगिनी। तो वो एक सिलसिला सोशल मीडिया पे उस वक्त शुरू हुआ था।
1: जी
0: तो ये इस तरह की अचीवमेंट्स भी होती है आपकी जिंदगी में कभी कभी,
1: जी
0: कि आपको नहीं पता, जाने अनजाने में आप किसी के हीरो बन जाते हो।
1: ये अचीवमेंट शायद आपके सच्चे मन, बच्चे जैसा दिल
0: बिल्कुल
1: और अच्छा काम,
0: बिल्कुल,
1: इसके कारण आपको ये
0: बहुत
1: सब
0: जरूरी
1: मिली
0: है।
1: है। जी
0: रोटी की भूख खत्म ना हो पेट में और
1: जी
0: नींद ना आए, बेचैनी से आप अपना काम करते रहो।
1: जी बड़ी खूबसूरत सी बातें आपके साथ चल रही हैं। तो दबंगनी शबीना खान हमारे बीच में है, तो दबंगनी शबीना खान को एक गीत तो सुनवाना बनता है, वो गीत हम आपको सुनवा देते हैं। और गीत के परे हम आपसे, हमारे उन्हीं बच्चों से कुछ कहलवाना चाहेंगे।

0: तो शबीना बोलूं या दबंगनी बोलूं? तो शबीना खान जी, आपका फिर से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में
1: सुरीली धड़कन।
0: बहुत प्यार से स्वागत है। और अब जो है हम चल रहे हैं हमारे, हालांकि बातें तो दो महिलाएं बैठी हैं तो खत्म नहीं हो सकती हैं, और उसके बाद बात यह है कि आपके पास तो कितना सारा, कितना कुछ है आपके पास जिसे हम अगर चाहें तो शायद एक बार में खत्म नहीं होगा। तो विविध भारती आपसे चाहता है कि एक बार और आना, एक बार और कह के जाना अपने जो मन का है जितना है, लेकिन अभी जो है वो हम कहलवाना चाहते हैं आपसे कि जो जीवन जिया है ऐसा तो नहीं है कि हमेशा बड़ी, जो आप कह रही हैं इतनी देर से कि नदी बह रही है उसके साथ हम बहते जा रहे हैं, तो जब नदी के साथ बहते हैं तो बीच में चट्टाने, पत्थर, कांटे, बहुत कुछ आता है। ऐसा सबके जीवन में आता है, तो आपके जीवन में भी आया होगा। तो हम चाहते हैं आप हमारे श्रोताओं में उन बच्चों को बताएं जो कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, जो डांसर बनना चाहते हैं, जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, या जो कुछ भी बनना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ संदेश।
1: बिना तकलीफ के तो राहत कभी नहीं आती। तकलीफ है तभी हमें राहत का मजा पता चलता है। तो तकलीफें बहुत आई, अभी तो हमने सिर्फ सक्सेस की बातें की हैं।
0: जी
1: ऐसे कई लम्हात, कई दिन, कई महीने, कई साल गुजरे जब काम भी नहीं होता है आपके पास।
0: अच्छा
1: ऐसा भी होता है, क्योंकि जब आपका नाम होता है ना, वो अपने साथ एक बहुत बड़ी चीज लेकर आता है कि अरे सलमान खान की कोरियोग्राफर है, महंगी होगी,
0: हाँ
1: तो आपके पास लोग नहीं आते। फिर आपको पता चलता है कि अच्छा मैं तो महंगी नहीं हूं, तो आओ तो सही, पता चलेगा क्या
0: पूछो
1: हो।
0: तो।
1: ये एक चीज है। दूसरी चीज, एक लड़की होना, एक लड़की होना, एक लड़की जो बचपन से आप कहें अल्हड़ उम्र के अंदर भी मैंने कदम यहीं पे रखा। मैं 15 साल की थी तो मैं 20 साल की भी यहीं हुई, 20 की हुई तो 22 की भी यहीं हुई, 25 की भी हुई है। तो ये जो एक दौर होता है जब आपको लोग अलग नजरिए से देखते हैं,
0: कैशव और पूरा जवानी सब यही निकली।
1: यहीं पे गुजरा है, तो मैंने वो भी देखा। और एक वक्त था जब कुछ लोगों के साथ मैंने जुड़ना नहीं चाहा, तो मैं घर बैठ गई। एक वक्त था जब मुझे घर बिठाया गया, ये नहीं करोगी तो ये होगा, मैं बैठ गई घर। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ लड़कियों से कि सब्र का दामन थामे रखो, हमेशा पेशेंस जिसे कहते हैं, सब्र रखो।

0: ऊपर वाले ने जो आपको दो ताकतें मिली है, एक ये कि ऊपर वाले ने आपकी कुंडली लिख दी है, दूसरा ये कि आपकी अच्छी आदतें, आपकी अच्छी नीयत, सिर्फ वही चीज ऊपर वाले की लिखे को बदल सकती है। ये सारे चीजें यही कहती है कि आपका कर्म आपके आने वाले कदमों को अच्छा या बुरा बना सकता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ लड़कियों से कि हड़बड़ाहट में, पानी की लालसा में, चाहत में अगले ही कदम गलत कर दोगे तो भी आपको थपेड़े तो मिलेगी ही मिलेगी। तो क्यों ना हम सब्र कर लें, थोड़ा बैठ लें, थोड़ा इंतजार कर लें, थोड़ा दुआओं की ताकत को आजमाएं,
1: थोड़ी एहतियात बरते,
0: थोड़ा मंदिरों में जाके बैठ जाए, सुकून ले ले, और उसको बोले कि मैं तो मेहनत करने तैयार हूँ, बट रास्ते तू देख ले। लेकिन वो सब आप तब कर पाओगे जब आपके अंदर सबर होगा, संयम होगा। संयम रखो, भाग भाग के तकदीरों को खराब मत करो, संयम से काम लो, और मेहनत और चाहत ऊंचे की। यू नो आई ऑलवेज से चिन अप प्रिंसेस, कीप योर चिन अप। तो आपकी डिग्निटी आपके सिवा कोई अपने ऊपर नहीं रख सकता। आपकी डिग्निटी आपको अपने हाथ में रखनी है, आपके माँ बाप की मर्यादा आपको अपने हाथ में रखनी है। और मर्यादा जब मैं कहती हूँ उसका मतलब ये है कि सबर तभी रख पाओगे जब आपके अंदर संयम हो, सबर हो। वो रखो और अपनी बनने की चाहत को, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कभी खत्म मत करो। आज आप कुछ नहीं हो, लोग आपकी बात को बोलेंगे अरे क्या बोल रही है, हट, कहीं सुन लिया होगा। लेकिन यही बातें आपको अपने अंदर का कॉन्फिडेंस ही आगे बढ़ के सहारा देगा। अपने पे भरोसा करना कभी मत छोड़ो।
1: आपने शॉर्टकट पकड़ा होता तो शायद आपको, आप आज यहाँ बैठ के बात नहीं कर रही होती, और आपने धीरता रखी, गंभीरता रखी, तो आज आप यहाँ बैठी हैं, और इतनी यहाँ नहीं बैठी हैं, आप कई सारे दिलों पे राज कर रही हैं, कई सारे गीतों के माध्यम से राज कर रही हैं। बहुत बड़ी बात है शमीरा जी। तो आपसे जब बात की तो बहुत सारी शिक्षाएं निकली, छोटी छोटी बातें शिक्षाओं के रूप में निकली, और सबसे बड़ी शिक्षा निकली मर्यादा। और आपने एक शब्द बोले, अपने माता पिता के जो संस्कार हैं उनको ऊपर रखो और उनको बचा के रखो,
0: बहुत जरूरी।
1: ये बहुत बड़ी बात आज के समय में, आज के काल में आपने बच्चों को बताई है, उसके लिए हम सभी बहुत धन्यवाद देते हैं। और विविध भारती परिवार, जिसमें हमारे श्रोता, हम सब और इसके पीछे काम करने वाले ढेर सारे लोग सब आते हैं, और सब आज आपको यहाँ वाकई बहुत खुश हैं यहाँ तक आ पाई, आपने इतनी सारी बातें की। और ये बात हम जानते हैं कि बहुत सारी बातें हैं जो रह भी गई हैं, शायद आपको भी याद नहीं है, और यहाँ से निकलने के बाद लगेगा अरे ये बात और बता देनी थी। तो वो जो बातें रह जाएंगी वो हम चाहेंगे कि कभी और किसी और रोज हम साथ में बैठें और हमारे श्रोताओं तक पहुँचाएं। लेकिन शबीना जी, यहाँ तक आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विविध भारती परिवार का एक नया हिस्सा बनने के लिए बहुत धन्यवाद।
0: मैं लास्ट में सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का शुक्रिया कि विविध भारती को आपने अब तक उस शिखर पे रखा हुआ है। यहाँ पे आना, यहाँ के एहसास को जीना, यहाँ की सच्चाई जो मैंने आज फील की है, आई होप ये सच्चाई और ज्यादा से ज्यादा लोग जिए इसको। विविध भारती का शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बी हियर।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच।
1: आपका बहुत धन्यवाद। प्रणाम। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर

0: or salt, avoid.
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: विविधा विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज का विविधा कार्यक्रम बहुरंगी है। एक तरफ इस कार्यक्रम पर जहां राष्ट्रीयता का रंग चढ़ा है, फिल्मों का रंग चढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ शायरी का और बेहतरीन गीतों का रंग भी है। आज के विविधा कार्यक्रम का आगाज हम करेंगे राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के अगस्त महीने के अंक से, और उसके बाद गुलजार साहब पर विशेष सामग्री, क्योंकि इस हफ्ते 18 अगस्त को आ रहा है गुलजार का जन्मदिन। गुलजार लिखते हैं, नाम सोचा ही न था है कि नहीं, अमा कह के बुला लिया एक ने, एजी कह के बुलाया दूजे ने, अबे ओ यार लोग कहते हैं, तुमने एक मोड़ पर अचानक जब मुझको गुलजार कह के दी आवाज, एक सीप से खुल गया मोती, मुझको एक मानी मिल गए हूं जैसे। गुलजार के गाने हमारे दिलों की धड़कन है, उन पर विशेष सामग्री का इंतजार कीजिए। फिलहाल सुनते हैं राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का अगस्त महीने का अंक। ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साइंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा,

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के अगस्त महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय हिंदी फिल्मों में आजादी की गूंज, लघु रूपक फिल्म दीवार के 51 बरस।
1: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में गीतकार गुलशन बावरा की एक अनमोल रिकॉर्डिंग।
2: लोग मुझे गीतकार समझ ही नहीं रहे थे, कुछ कॉमेडियन टाइप का समझते थे।
0: और स्मृति शेष में नमन गायिका एस जानकी और अभिनेता प्रदीप रावत को। सबसे पहले संपादकीय हिंदी फिल्मों में आजादी की गूंज। सिनेमा अपने समय और समाज की परछाई होता है। जो कुछ दुनिया में घट रहा होता है उसका सिनेमा पर गहरा असर पड़ता है। हिंदी सिनेमा के साथ भी यही स्थिति है। जब भारत की आजादी का आंदोलन चल रहा था तो सिनेमा भी जनता को आजादी की प्रेरणा दे रहा था। कमाल की बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने बहुत साहसी तरीके से अपनी बात कही। चित्र भारती के संपादकीय में आज हम केवल उन फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने आजादी से पहले देश को जागृत किया, अंग्रेजों से देश को आजाद करवाने की प्रेरणा दी। सन 1943 की बात है। बॉम्बे टॉकीज ने एक फिल्म बनाई किस्मत। ज्ञान मुखर्जी के निर्देशन वाली इस फिल्म में अशोक कुमार और मुमताज शांति ने काम किया था। इस फिल्म में कवि प्रदीप ने ये गीत लिखा था।
3: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश सरकार पहले ही मुसीबत में थी। मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान कर दिया था। सारा देश आजादी के लिए कुर्बानी देने को तैयार था। ऐसे में ये गाना हर गली कूचे में गूंजने लगा। नौजवान टॉकी

0: जो में फिल्म रुकवा कर इस गाने को दोबारा प्ले करने को कहते। मजेदार बात यह है कि फिल्म किस्मत किसी भी तरह देशभक्ति पर आधारित फिल्म नहीं थी, इसके बावजूद इस गाने ने लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों को छुआ और जनता को प्रेरित किया, इतना कि अंग्रेज सरकार डर गई। पर यह कोई पहली घटना नहीं थी, हिंदी सिनेमा इससे पहले भी समय समय पर आजादी की बात करता रहा है। सन 1921 में कांजीभाई राठौड़ ने एक फिल्म बनाई थी भक्त विदुर। इस फिल्म पर इसलिए प्रतिबंध लगा दिया गया था क्योंकि इसमें विदुर का किरदार महात्मा गांधी की तरह दिखता था। कुछ दृश्यों में उसे महात्मा गांधी जैसी टोपी पहने भी दिखाया गया था। सन 1931 में वी शांताराम की फिल्म आई स्वराज्याचे तोरण। इस फिल्म के पोस्टर पर छत्रपति शिवाजी झंडा फहराते हुए दिखाए गए थे। अंग्रेज सरकार इससे डर गई और इस फिल्म पर बैन का खतरा मंडराने लगा, इसलिए इस फिल्म का नाम बदलकर उदय काल रखना पड़ा। वी शांताराम के साथ ऐसा एक बार फिर हुआ सन 1935 में, जब वो संत एकनाथ के जीवन पर एक फिल्म बना रहे थे महात्मा। लेकिन अंग्रेज सरकार को ये बर्दाश्त न हुआ क्योंकि ये नाम महात्मा गांधी से जुड़ रहा था। दबाव डाला गया कि फिल्म का नाम बदला जाएगा तभी इसे रिलीज करने दिया जाएगा, और तब जाकर यह फिल्म धर्मात्मा के नाम से रिलीज हुई। सन 1936 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आई जन्मभूमि, ये भी आजादी की बात करती थी। सन 1938 में महबूब खान ने फिल्म बनाई वतन, इस फिल्म में भी संकेतों में आजादी की बात कही गई थी। सन 1940 में आई फिल्म बंधन, इस फिल्म में ये गाना आजादी की अलख जगा रहा था।
1: चल चल रे नौजवान,
2: चलो संग चले हम।
1: चल चल रे नौजवान,
2: चलो संग चले हम।
0: ये गाना बड़ा ही लोकप्रिय हुआ था। सन 1941 में सोहराब मोदी ने बनाई फिल्म सिकंदर, जिसमें ये देशभक्ति गीत था।

यहाँ मोहम्मद रफी पहली बार नौशाद के लिए गा रहे थे। यहाँ आपको बता दें कि सन 1944 में गुलाम हैदर ने फिल्म भाई में ये गाना बनाया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में हैं भाई भाई। इसे नसीम अख्तर और जीनत बेगम ने गाया था। बोल शातिर गजल।

सन 1946 में आई फिल्म हमजोली। इस फिल्म में नूरजहां ने गाना गाया ये देश हमारा प्यारा प्यारा। ये गाना अंजुम पीलीभीती ने लिखा था और संगीतकार थे हफीज खान।

ये साफ है कि सिर्फ हिंदी फिल्में ही नहीं बल्कि उनके गाने भी आजादी की बात कर रहे थे, देशभक्ति का जज्बा जगा रहे थे, देश के प्रति गौरव का एहसास करवा रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही दुर्लभ गाने की। सन 1946 में एक फिल्म आई थी सोना चांदी। इस फिल्म में एक गाना था प्यारे बापूजी तिरंगे की।

लो कसम, इसे लता मंगेशकर ने गाया था। ध्यान रहे, ये वो जमाना था जब लता मंगेशकर फिल्म संसार में पैर जमाने की कोशिश कर रही थी।

आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि न्यू थिएटर्स की बिमल रॉय निर्देशित फिल्म हमराही में तो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर लिखित जन गण मन को शामिल किया गया था, जो आगे चलकर भारत का राष्ट्रगान बना। सन 1947 में आई फिल्म एक कदम में तो पोस्टर पर ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिखाया गया था। ऐसी फिल्मों की लंबी सूची है जो 1947 से पहले भारत में आजादी की अलख जगा रही थीं। ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म धरती के लाल सन 1946 में 30 अगस्त को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में संगीत पंडित रविशंकर का था। बंगाल के अकाल पर बनी इस फिल्म में कुछ गाने ऐसे थे जो देशभक्ति की लौ जगा रहे थे, जैसे ये गाना भूखा है बंगाल।

इसी दौर में आई देव आनंद की पहली फिल्म हम एक हैं, जिसके निर्देशक थे पी एल संतोषी। इस फिल्म में एक जोशीला गाना था, हम जाग उठे हैं सोकर। इसे पी एल संतोषी ने खुद लिखा था। संगीत हुस्न लाल भगत राम का था।

सन 1948 में आई रमेश सहगल के निर्देशन वाली फिल्म शहीद। इस फिल्म में गुलाम हैदर का संगीत था। जरा सोचिए कि गुलाम भारत में कितना महत्वपूर्ण और साहस का काम था, आजादी पर फिल्म बनाना। इस गाने के गीतकार थे राजा मेहदी अली खां। याद रहे, ये गाना आजादी से पहले रिलीज हुआ था।

हमने अब तक जिन फिल्मों का ब्यौरा आपको दिया ये तो सिर्फ एक झलक है। आजादी से पहले हिंदी या यूं कहें कि भारतीय सिनेमा विभिन्न भाषाओं में देश को जगाने और आजादी के आंदोलन में सहयोग करने का काम जोर शोर से कर रहा था। कुछ साहसी फिल्मकार ऐसे थे जिन्होंने बिना डरे ऐसी कहानियां पेश की। आजादी के बाद से अब तक तो ऐसी अनगिनत फिल्में बनी हैं जिनमें स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं की कहानियां कही गई हैं, पर संपादकीय में हमारा फोकस उन फिल्मों पर था जिन्होंने 1947 से पहले हिंदी सिनेमा में आजादी की अलख जगाई। ये था संपादकीय और अब एक लघु फीचर फिल्म दीवार के 51 बरस। दीवार हिंदी सिनेमा के इतिहास की एक कल्ट फिल्म मानी जाती है। ये फिल्म 24 जनवरी 1975 को रिलीज हुई थी। इस तरह इसकी

0: यात्रा के 51 बरस पूरे हुए। दीवार के प्रोड्यूसर थे गुलशन राय और इसे निर्देशित किया था यश चोपड़ा ने। यह फिल्म तूफानी लेखक जोड़ी सलीम जावेद की लेखनी का कमाल थी। ये देखना दिलचस्प है कि दीवार से पहले यश चोपड़ा ने सन 1973 में फिल्म दाग के जरिए अपना बैनर शुरू किया था, यशराज फिल्म्स। 1973 में ही प्रोड्यूसर गुलशन राय के लिए उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की जोशीला, जिसमें देव आनंद ने काम किया था।
1: किसका रास्ता देखे।
0: गुलशन राय इससे पहले जोशीला और जॉनी मेरा नाम जैसी बेमिसाल फिल्में प्रोड्यूस कर चुके थे।
2: पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले।
0: अमिताभ बच्चन की फिल्म यात्रा में ये फिल्म और भी मजेदार जगह खड़ी है। सन 1973 में आई प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर से अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन कहलाए, पर इसके बाद उनकी कुछ फिल्में आईं जैसे अभिमान, सौदागर, नमक हराम वगैरह। जंजीर के बाद दीवार ही वो फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन वाला रूप दोबारा नजर आता है। व्यवस्था के प्रति आक्रोश, एंटी हीरो वाला रास्ता, कड़क आवाज वाले संवाद, फ्लैट चेहरा, किरदार में छिपा गुस्सा, कुछ कर गुजरने की तमन्ना, विजय हिंदी सिनेमा का एक बेमिसाल किरदार बन गया।
3: डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे।
4: हाँ, क्यों?
3: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के छोटे भाई रवि की भूमिका में शशि कपूर थे। कैसे? अरे भाई, शशि कपूर तो अमिताभ बच्चन से बड़े थे और सीनियर भी। ये यश चोपड़ा का कन्विक्शन था कि शशि कपूर छोटे भाई की भूमिका में जमेंगे और यही हुआ।
4: इसमें लिखा है कि तुम पुलिस को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो, अपने जुर्म, अपने काले पैसे, अपने साथियों के नाम। मुझे इस पर तुम्हारे साइन चाहिए।
0: दीवार में मां की भूमिका में नजर आई निरूपा राय। अमिताभ बच्चन की मां के रूप में उन्होंने आगे कई फिल्में की और फिल्म इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया। वैसे फिल्म इतिहास में तो दीवार ने अपना नाम इसलिए भी दर्ज किया क्योंकि इसे एक दो नहीं बल्कि 7 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर शशि कपूर, बेस्ट स्टोरी सलीम जावेद, बेस्ट स्क्रीन प्ले सलीम जावेद, बेस्ट डायलॉग सलीम जावेद और बेस्ट साउंड रिकॉर्डिस्ट M.A. शेख।
5: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
4: उसके बाद मेरे भाई तुम जिस कागज पे कहोगे मैं उस पर साइन कर दूंगा।
0: इस फिल्म के गाने साहिर लुधियानवी के थे और संगीत राहुल देव बर्मन का था। इस फिल्म का एक अंग्रेजी गाना खुद पंचम यानी R.D. बर्मन ने लिखा था और इसे उर्सुला वाज ने गाया था। दीवार में एक गाना ऐसा भी था जिसे फिल्म से हटा दिया गया था। मन्ना डे की आवाज वाला वो गाना था ये।

0: 51 साल बाद भी दीवार ऐसी फिल्म है जिसे आप कई बार देखने के बावजूद एक बार और देख सकते हैं। कल्ट फिल्में ऐसी ही होती हैं।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है।
0: ये था लघु रूपक फिल्म दीवार के 51 बरस। रुपहला पर्दा, रुपहली बातें, इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीतकार गुलशन बावरा की एक रिकॉर्डिंग। गुलशन बावरा हिंदी सिनेमा के एक गुणी गीतकार, उनका पूरा नाम था गुलशन कुमार मेहता। वो बावरा कैसे बने इसकी भी एक कहानी है जो आज हम आपको सुनवाएंगे। गुलशन बावरा 1955 में मुंबई आए और कल्याण जी वीरजी शाह ने उन्हें सन 1959 में फिल्म चंद्रसेना में पहला मौका दिया। आगे चलकर उनकी सबसे शानदार जोड़ी बनी पंचम यानी आरडी बर्मन के साथ। रुपहला पर्दा, रुपहली बातें, इस श्रृंखला में पेश है गीतकार गुलशन बावरा की एक अनमोल रिकॉर्डिंग।
3: मैं गुलशन बावरा हूं, लेकिन बावरा मैं भी 3-4 फिल्मों

Ишиш. स्मृति शेष में आज सबसे पहले हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका एस जानकी को। 11 जुलाई को वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हिंदी फिल्मों के कदरदान एस जानकी को कुछ गिने चुने गानों से ही जानते थे। सन 1985 में आई थी अनिल कपूर और अमृता सिंह के अभिनय वाली फिल्म साहेब, जिसमें एस जानकी और बप्पी लहरी ने एक

बस यही गाना हिंदी जगत में ज्यादातर एस जानकी की पहचान था। हालांकि उन्होंने इसी बरस यानी सन 1985 में फिल्म सुरसंगम में ये भजन गाया था।

0: एस जानकी ने फिल्म मर्द के लिए ये गाना गाया।
1: तू मेरा टांगे भाला, मैं तेरी टांगे हौली, तू मेरा टांगे भाला।
0: एस जानकी को उनके केवल हिंदी गानों से आंकना ठीक नहीं होगा, उन्हें दक्षिण की स्वर कोकिला कहा जाता था। एस जानकी का पूरा नाम था सिस्तला जानकी। उनका जन्म 23 अप्रैल 1938

को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के पल्ला पाटला में हुआ था। बचपन से ही जानकी को रेडियो सुनने का शौक लग गया था। वो लता मंगेशकर के गाने बड़े चाव से सुनती थी। लता मंगेशकर उनकी प्रेरणा, उनकी आदर्श और गुरु रहीं। इसके बावजूद इस जानकी के गाने की शैली लता से एकदम अलग थी। जानकी का बचपन सिरसिला में बीता, जहां उनके एक रिश्तेदार थिएटर किया करते थे। इंटरवल में वो जानकी को लता मंगेशकर के गाने गाकर जनता को जोड़े रखने को कहते थे। ऐसे ही एक शो में तमिल फिल्मकार बी आर पंथलू और संगीतकार टी जी लिंगप्पा ने उन्हें सुना और चेन्नई आने को कहा। इस तरह सन 1957 में तमिल फिल्म विधियन विलायत्तू में उनका पहला गाना आया। पहले ही साल एस जानकी ने 6 भाषाओं में गाने गाए। इलैया राजा की पहली फिल्म अन्ना किली के लिए जानकी ने 3 गाने गाए थे। ये इतने लोकप्रिय हुए कि उन्होंने जानकी को दक्षिण भारत की छोटी की गायिका बना दिया।

एस जानकी ने तकरीबन 6 दशक तक फिल्मों में गाने गाए और संगीतकारों की कई पीढ़ियों के साथ काम किया, जैसे टी चलपति राव, एम डी पार्थसारथी, जी रामानाथन, एम बी श्रीनिवासन, के वी महादेवन और एम एस विश्वनाथन वगैरह। उनकी मातृभाषा भले ही तेलुगु थी, लेकिन उन्होंने तकरीबन 20 भाषाओं में गीत गाए। इनमें कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, कोंकणी, उड़िया, तुड़ू, उर्दू, पंजाबी और बांग्ला गीत शामिल हैं। के विश्वनाथ की फिल्मों में इलैया राजा के संगीत निर्देशन में उनके गाए गाने आज भी दक्षिण भारतीय दर्शकों के दिलों की धड़कन हैं।

0: हिंदी में एस जानकी के कुछ गाने बड़े ही लोकप्रिय हुए हैं, जैसे सत्यमेव जयते फिल्म का ये गाना। फिल्म आखिरी रास्ता का ये गाना।
1: नक नक गो।

एस जानकी को 4 बार सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। पूरी दुनिया में उनके प्रशंसक मौजूद हैं जो उन्हें जानकी अम्मा के नाम से पुकारते हैं। विनम्र श्रद्धांजलि।

5 अगस्त को हिंदी और दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने माने अभिनेता प्रदीप रावत का निधन हो गया। वो 74 बरस के थे। प्रदीप रावत ने मुख्य रूप से तेलुगु, हिंदी और तमिल फिल्मों में काम किया और वो खलनायक की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते थे। प्रदीप रावत ने सबसे पहले सन 1988 में बी.आर. चोपड़ा के मशहूर धारावाहिक महाभारत में काम किया था। यहां उन्होंने अश्वत्थामा का किरदार निभाया था। आपको बता दें कि प्रदीप रावत का जन्म 21 जनवरी 1952 को जबलपुर में हुआ था। उन्होंने सिनेमा की दुनिया में सबसे पहले तेलुगु फिल्म सई के जरिए कदम रखा था। तमिल सिनेमा में उनका सफर फिल्म गजनी से शुरू हुआ और इस फिल्म में उन्होंने एक नेगेटिव रोल किया, वो डबल रोल था। जब गजनी का हिंदी रीमेक बना तो उन्होंने वही भूमिका निभाई, गजनी धर्मात्मा की खूंखार भूमिका। कन्नड़ में उन्होंने पैरोडी फिल्म में काम किया, मलयालम में चाइना टाउन, बांग्ला में हीरो 420 और भोजपुरी में क्रैक फाइटर। प्रदीप रावत की एक और महत्वपूर्ण फिल्म थी आमिर खान अभिनीत सरफरोश, जिसमें वो सुल्तान की भूमिका में थे। इसके अलावा ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म लगान में उन्होंने तेज गेंदबाज देवा सिंह सोधी का शानदार किरदार निभाया था। विनम्र नमन। स्मृति शेष। ये थी

राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती, शोध आलेख स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के

0: ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का अगस्त महीने का अंक। आप जानते हैं कि हर महीने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती को हम विविधा के अंतर्गत आपको जरूर सुनाते हैं, और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए लेकर आए हैं गुलजार साहब पर विशेष सामग्री, क्योंकि इस महीने 18 को गुलजार साहब का जन्मदिन होता है। अगस्त की 18वीं गुलजार साहब का जन्मदिन। गुलजार साहब अपने एक्सप्रेशंस की वजह से, अपने प्रतीकों की वजह से बड़े विशिष्ट हैं। एक तरफ उन्हें एक बेहतरीन लेखक के तौर पर जाना जाना जरूरी है, जहां आती हैं उनकी कहानियां। दूसरी तरफ जहां आती हैं उनकी कहानियां, रावी पार जैसी बेमिसाल कहानी को हम भला कैसे भूल सकते हैं। दूसरी तरफ हैं शायर गुलजार, जिन्होंने बेमिसाल नज़में लिखी और कुछ यादगार त्रिवेणियां भी लिखी। आप जानते होंगे कि त्रिवेणियां गुलजार की ऐसी कविताएं हैं जिनमें केवल 3 लाइनें होती हैं। उन्होंने त्रिवेणियों की जो प्रेरणा ली वो जापान के हाइकू से ली है, लेकिन त्रिवेणी की जो आखिरी लाइन होती है वो हमेशा ही हैरत में डालती है। त्रिवेणी के बारे में गुलजार साहब कहते हैं कि शुरू शुरू में तो जब ये फॉर्म बनाई थी तो पता नहीं था कि ये किस संगम तक पहुंचेगी। त्रिवेणी नाम इसलिए दिया था कि पहले 2 मिसरे गंगा जमुना की तरह मिलते हैं और एक ख्याल एक शेर को मुकम्मल करते हैं, लेकिन इन दोनों धाराओं के नीचे एक और नदी है सरस्वती, जो गुप्त है, नजर नहीं आती। त्रिवेणी का काम सरस्वती को दिखाना है। तीसरा मिसरा कहीं पहले 2 मिसरों में गुमा हुआ है, छिपा हुआ है, गुप्त है। तो गुलजार की कुछ त्रिवेणियां, एक त्रिवेणी में गुलजार लिखते हैं, सब पे आती है सबकी बारी से, सब पे आती है सबकी बारी से, मौत मुनसिफ है कमोबेश नहीं, जिंदगी सब पे क्यों नहीं आती। एक और त्रिवेणी, गोले बारूद आग बम नारे, गोले बारूद आग बम नारे, बाजी आतिश की शहर में गर्म है, बंद खोलो कि आज सब बंद है। एक और त्रिवेणी, रात के पेड़ पे कल ही तो उसे देखा था, रात के पेड़ पर कल ही तो उसे देखा था, चांद बस गिरने ही वाला था फलक से पककर, सूरज आया था जरा उसकी तलाशी लेना। गुलजार साहब विविध भारती के स्टूडियो में कई बार आए हैं और उन्होंने अपनी बातें कही हैं। एक बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रम उन्होंने पेश किया था बरसों पहले मास्टर राजू के साथ। जरा अपने खजाने की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हमारे हाथ लगती है क्या। ये रही, तो चलिए इसे प्ले करते हैं।
1: फौजी भाइयों नमस्ते, बड़ी खुशी हुई आपसे दोबारा मिलकर। पहली बार अकेले मिला था, इस बार मेरे साथ एक बड़ा खूबसूरत होनहार बच्चा है जिसका नाम है मास्टर राजू। बहुत सी फिल्मों में उसे देखा होगा आपने, बहुत सी फिल्मों में उससे मिले होंगे, लेकिन आज ये फखर मुझे हासिल है कि मैं इस बच्चे का आपसे परिचय करा रहा हूँ।
2: लेकिन अंकल, हमारी पहली फिल्म का भी तो नाम परिचय था।
1: जी हाँ, आपको याद है?
2: हाँ, मुझे उसका एक सीन और एक गाना याद है।
1: अच्छा, सीन कौन सा याद है आपको?
2: वो जब जितेंद्र अंकल नहा रहे होते हैं तो मैं उनके कमरे में लंगड़ा भूत बनकर जाता हूँ और कहता हूँ, अंदर कौन है, मैं लंगड़ा भूनू, मैं लंगड़ा खा जाऊंगा।
1: अच्छा, आपको अभी तक याद है। हाँ। और गाना कौन सा?
2: वो जो हम सब लोग गाते हैं सारे के सारे।
1: हाँ, तो वो गाना आपने पहली बार स्क्रीन पर गाना गाया था ना?
2: जी हाँ।
1: तो वो गाना हम फौजी भाइयों को सुनाएं?
2: जी हाँ।
1: चलिए वो गाना सुनाते हैं।

ए संजू, ए बिज्जू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मेरे।

0: मुझे बेटा एक बात बताइए, हमें आप ये जो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं ये आपने सीखी कहाँ से?
1: ये एक्टिंग तो मैंने बड़ों से भी बच्चों से भी सीखी, लेकिन अंकल एक 5 मिनट,
0: 5 मिनट?
1: मेरा मतलब 2 मिनट।
0: 2 मिनट में क्या करेंगे आप?
1: मैंने गलती हो गई मुझसे,
0: क्या?
1: मैंने फौजी भाइयों को नमस्ते करना भूल गया।
0: अरे रे रे रे, तो आप नमस्ते कर लीजिए। चलिए
1: फौजी भाइयों, मैं माफी चाहता हूँ कि मैं आपको पहले नमस्ते करना भूल गया, इसलिए मैं आपको अभी नमस्ते कहता हूँ।
0: वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, तो आपने कहाँ से सीखी आप बता रहे थे हमें?
1: हाँ, ये एक्टिंग तो मैंने बड़ों से भी सीखी, बच्चों से भी सीखी।
0: बच्चों से? कौन से?
1: बच्चों में मुझे एक फिल्म अच्छी लगी, वो आशीर्वाद।
0: अच्छा, उसमें तो बहुत से बच्चों के गाने भी थे।
1: जी हाँ।
0: कोई गाना आपको याद है?
1: हाँ, वो दादा मुनि का जो गाना था।
0: दादा मुनि, फौजी भाई जानते होंगे, हम अशोक कुमार जी को फिल्म इंडस्ट्री में दादा मुनि कह के बुलाते हैं। तो दादा मुनि का कौन सा गाना आपको पसंद था?
1: वो जो तालेगांव मालेगांव वाला जो गाना था।
0: हाँ, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी।
1: हाँ।
0: तो चलिए रेलगाड़ी पे चढ़े।
1: हाँ,
0: चलिए आइए।
2: आओ बच्चों, खेल दिखाए, छुक छुक करती रेल चलाए, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाए। सुनो रे बच्चों, टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी।

0: भप भप।
1: आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम्हारा इंजन, डब्बू तुम्हारा कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर सब पैसेंजर। रेडी।

0: रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक लोहे की सड़क यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ
1: बस बस बस
2: अंकल स्टेशन आ गया
1: चलिए उतरिए
2: हाँ चलिए
1: हाँ उतरिए आइए चलिए अब कौन से गाने पे उतरेंगे
2: अब
1: गाना तो सुनाना पड़ेगा आपको हाँ कौन सा सुनाएंगे आप अच्छा ऐसी पिक्चर का गाना सुनाइए जिसमें आपने काम किया हो
2: अच्छा वो गाना मैंने नहीं गाया तो चलेगा
1: हाँ चलेगा लेकिन किसने गाया बता दीजिए
2: वो असरानी अंकल जो गाते बावर्ची में
1: वो कौन सा गाना है
2: वो नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी
1: अच्छा चलिए अच्छा ये तो आप अपने नमस्ते के साथ सुनाते तो बहुत अच्छा होता ना चलिए सुनाते

0: गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग
1: बेटा।
2: यस पापा।
1: बरखोरदार।
0: यस डैडी।
1: अपनी भाषा में बोलो।
0: अरे हाँ हाँ।

0: नमस्ते है सबको, नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
1: अंकल आपको मैथमेटिक्स आता है?
2: मैथमेटिक्स क्यों? एक मिनट जरा, मैं कुछ कुछ फौजी भाइयों को कुछ बताना, मैं भूल गया।
1: आप भी भूल करने लगे ना,
2: मेरे भूल हो गई, आपके बारे में कुछ बताना भूल गया।
1: हाँ, फिर चलेगा।
2: फौजी भाइयों को मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि राजू वो आर्टिस्ट है जिसे इस साल हिंदुस्तान में नेशनल अवार्ड मिला है, बस ये बात बताना भूल गया था। आप क्या पूछ रहे थे?
1: मैं पूछ रहा था आपको मैथमेटिक्स आता है?
2: मैथमेटिक्स क्यों?
1: मेरे पास एक सवाल है, आप उसे सॉल्व कर सकेंगे?
2: क्या?
1: देखिए, एक बट्टा दो, एक बट्टा दो, दो बट्टे चार, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार।
2: ठीक है ठीक है, मैं समझता हूँ आपको बहुत पसंद है वो गाना, आप वो गाना सुनाना चाहते हैं हमें है?
1: जी हाँ,
2: तो चलिए सुनाइए।
1: आप बहुत जल्दी सुना।

0: लगता है मैथमेटिक्स आपका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है ना?
1: नहीं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो हिस्ट्री है। आप तो स्कूल में हिस्ट्री पढ़े होगे।
0: नहीं मेरे, हम स्कूल ही नहीं गए, हिस्ट्री कहाँ से पढ़ोगे?
1: आपको हिस्ट्री पढ़ना है?
0: हाँ मुझे पढ़नी है। आप पढ़ाएंगे?
1: हाँ,
0: कैसे?
1: हम जागृति है ना, जो फिल्म थी उसका हम एक गाने की उंगली पकड़ लेते हैं और बस आप उससे ही हिस्ट्री समझ जाएंगे।
0: अच्छा, उससे आप हमें हिंदुस्तान की हिस्ट्री पढ़ाएंगे?
1: हाँ
0: चलिए पढ़ाइए, आप शुरू कीजिए।

0: राजेश, जरा आप अपनी एक्टिंग का नमूना तो दिखाइए फौजी भाइयों को।
1: लेकिन अंकल ये तो रेडियो है।
0: हाँ तो क्या है, रेडियो पे आप अपनी एक्टिंग नहीं दिखा सकते? अरे आवाज टेस्ट से तो आप अपनी एक्टिंग दिखा सकते हैं, जैसे हमें सेट पे
1: लेकिन
0: दिखाया करते हैं, वो जो जोक सुनाया करते हैं
1: अच्छा कौन सा,
0: आप कोई भी जोक जो आपको पसंद हो।
1: अच्छा मैं आपका फेवरेट जोक कहूँ?
0: हाँ, वही
1: हैं
0: सुनाइए।
1: देखिए
0: इस जोक में हम पहले बता दें फौजी भाइयों को कि पहला रोल लसरानी, दूसरा अशिदा अशित सेन और तीसरा।
1: किशोर मुखर्जी,
0: हाँ सुनाइए।
1: तो ये तीनों अंकल बैठे रहते हैं, तीनों जन अपना अपना बोलते कि मैं होशियार हूँ मैं होशियार हूँ। तो असरानी अंकल पहले कहते हैं कि मैं जंगल में गया, वो जंगल के अंदर एक ही झाड़ था, सिर्फ, हाँ सिर्फ सिर्फ एक ही। उस झाड़ के नीचे दो शेर बैठे हुए थे, हाँ सिर्फ दो शेर, और मेरी बंदूक के अंदर सिर्फ एक ही गोली थी, सिर्फ एक ही गोली।
0: फिर मारा कैसे?
1: उसके अंदर से उन्होंने कहा, मैंने एक को बुलेट मारी, एक को गोली मारी और एक को आंख मारी, दोनों मर गए।
0: अच्छा, दूसरे।
1: फिर टर्न आई अशित सेन अंकल की, अंकल ने कहा, अरे अरे अरे तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, मेरा सुनो, मैं जंगल में गया गया तो वो जंगल के अंदर एक ही झाड़ था, वो झाड़ के नीचे एक ही शेर बैठा था। और क्या हुआ कि मैं जब घर से निकला था तो मैं बहुत जल्दी में निकला और मैं अपनी बंदूक लेने भूल गया। अब मेरे सामने शेर खड़ा है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? तो उन्होंने देखा उनके पीछे की जेब में उनका लाइसेंस था, तो उन्होंने लाइसेंस दिखाया।
0: बंदूक का लाइसेंस।
1: जी हाँ, बंदूक का लाइसेंस दिखाया। तो उस शेर को दिखाते ही शेर मर गया।
0: अच्छा, इन्होंने तो लाइसेंस से ही
1: तो
0: मार दिया।
1: जी हाँ, अब किस्टो अंकल की टर्न आई, उन्होंने कहा, अरे धीरा घुस भी नहीं है, घुस भी नहीं है, मेरा सुन, वो जंगल में गया, भागा भागा भागा, मैं जंगल के आगे जंगल मेरे पीछे, भागा भागा भागा, मैं जंगल के आगे जंगल मेरे पीछे, सेम, भागा
0: हाँ जी,
1: भागा भागा, जंगल मेरे आगे मैं जंगल के पीछे, वो जंगल के अंदर हेगी हेगी हेगी जाता, वो झाड़ के नीचे एक शेर बैठा था, शेर, वो शेर को मैंने बोला, हे शेर तू जंगल का राजा है, राजा है? तो बोला हाँ हूँ, तेरी सब लोग सेवा करते हैं, तेरी सब लोग सेवा करते हैं। तो बोला हाँ करते हैं, तो तू झेडी झेडी गाय को नहीं पहनता है, तू शर्म के मारे मर गया मर गया।
0: तीसरे को आपने शर्म से मार दिया।
1: जी हाँ
0: सुनिए, आप, मुझे मालूम है कि पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार हैं, उतने ही होशियार हैं जितने आप एक्टिंग में होशियार हैं। और आप सेट पे जो कुछ किया करते हैं, एक तो जोक सुनाते हैं,
1: जी
0: उसके अलावा आप पहेलियां पूछा करते हैं हमसे।
1: जी हाँ
0: अगर हमसे आप कुछ पहेलियां पूछें तो
1: जी
0: पूछेंगे
1: पूछो,
0: या मैं पूछूं आपसे?
1: जो भी कहें आप
0: चलिए, हम कुछ पहेलियां आपको सुनाते हैं,
1: पूछिए।
0: अगर अच्छे लगे तो उनके जवाब बताइएगा।
1: चलिए
0: हाँ जी, चलिए।
2: मैं लाल लाल गुजकू, तू हाथ डाले मुझको, मैं काट खाऊं तुझको, तू खाए जाए मुझको, बताओ तो मैं कौन

0: बताओ, नारियल।
1: अच्छा एक बात बताइए राजू बेटा, आपने सबसे पहली फिल्म कौन सी देखी थी?
2: मैं जब छोटा था तो बहुत सारी फिल्में देखता था।
1: मतलब अब आप बड़े हो गए?
2: नहीं, मैं उस उम्र की बात करता हूँ, इस उम्र से भी छोटा था जब।
1: अच्छा।
2: तो मैं जब छोटा था तो बहुत सी फिल्म देखता था, लेकिन उसमें से मुझे एक फिल्म बहुत ही अच्छी लगी, वो ब्रह्मचारी।
1: ठीक है, मुझे याद है।
2: उसके अंदर से मुझे एक गाना बहुत ही अच्छा लगा। अगर वो गाना कभी रेडियो पर आता था ना, भले मैं खेलता था, लेसन करता, कुछ भी करता था ना, और अगर वो गाना रेडियो पर आया, बस मैं नाचने लग जाता था।
1: अच्छा, शमी अंकल की तरह। अच्छा, अगर वो गाना मैं अब भी लगाऊं तो आप नाचेंगे?
2: हाँ, नाचूंगा तो सही, लेकिन फायदा नहीं है।
1: क्यों?
2: कोई देखने वाला तो नहीं।
1: अरे फौजी भाई भी देखना, खुशी से नाचने लगेंगे। मैं लगाता हूँ गाना। चलिए।

0: ಲಂಬಿಸಿ ದಾಡಿ.
1: राजबेटा एक बात जो हम भूल गए.
2: देखिए अंकल, आप फिर से भूल करने लगे.
1: नहीं नहीं, भूले मतलब उस तरह की भूल नहीं है, भूल ना जाए. इसलिए जो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस पिक्चर में आपको नेशनल अवार्ड मिला है उस पिक्चर का कोई गाना तो सुनाइए.
2: अरे हाँ,
1: आपको याद है कोई गाना उस पिक्चर का?
2: हाँ, उसमें से एक गाना मुझे अच्छा लगा, वो आज से पहले आज से ज्यादा.
1: आपको याद है गाना? याद है.
2: हाँ,
1: तर्ज भी याद है.
2: हाँ, और वैसे मैं आज खुश भी हूँ.
1: अच्छा, तो चलिए सुनाइए मैं कैसे गाना.
2: आज से पहले आज से ज्यादा, आज से पहले आज से

0: राज बेटे अब आगे चले यहाँ से।
1: लेकिन अंकल
0: जी
1: आपने एक भूल की।
0: फिर मैंने की आपने की?
1: नहीं की आपने, कह मैं रहा हूँ कि जिस फिल्म में मुझे नेशनल अवार्ड मिला है उस फिल्म का नाम तो आपने बताना ही भूल गया।
0: ओह आई एम सॉरी यार।
1: खैर मैं बता देता हूँ, उस फिल्म का नाम है चितचोर।
0: अच्छा उसके बाद एक और भूल से आप बच के रहिए कि वक्त हो रहा है हमें चलना है और फौजी भाइयों को नमस्ते कह के उनसे इजाजत लेनी।
1: नहीं अंकल एक गाना।
0: और गाना कौन सा?
1: वो मैं बताऊंगा नहीं, आप सुनिए।
0: नहीं पर बता तो दीजिए।
1: नहीं सस्पेंस।
0: अच्छा गाना भी सस्पेंस वाला।
1: चलिए
0: चलिए सुनाइए।

0: ये थी मास्टर राजू और गुलजार साहब की एक संयुक्त प्रस्तुति, जो बरसों पहले विविध भारती पर हुई और अपने संग्रहालय से हमने निकाल कर इसे आपके लिए पेश किया। विविधा कार्यक्रम में आज हमने दो विशेष प्रस्तुतियां आपकी नजर की, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का अगस्त महीने का अंक और इसके साथ ही गुलजार साहब पर विशेष सामग्री, क्योंकि अगस्त की 18वीं गुलजार साहब का जन्मदिन होता है। आज का विविधा कार्यक्रम इतना ही। इस कार्यक्रम के लिए संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। अब यूनुस खान को दें इजाजत। नमस्कार, अगले हफ्ते फिर सुनिए विविधा।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: ये विविध भारती है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा।

0: भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का एक मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले चार क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो वित्त अधिनियम 2026 योजना के अध्याय 4 में शामिल है। ये योजना करदाता को तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। 15 सितंबर तक ये खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, झारखंड, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, यादों की महफिल। इस कार्यक्रम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में इसे गाया हेमलता ने। गीत रचना रविंद्र जैन की थी और ये गीत था फिल्म सुनैना से।

0: नदिया के पार फिल्म में आपने सुना ये आवाजें जसपाल सिंह और हेमलता और साथियों की थी। गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के।
1: बैठ जा, खड़ी हो जा।
2: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
3: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदार राजाध्यक्ष आ रही हैं।
3: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
2: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सेहतनामा।
5: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं। 3
6: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
5: सखी सहेली?
6: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
5: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
7: सखी सहेली।
0: सिने जगत की जानी मानी गायिका हेमलता के गीत आज हैं श्रोताओं यादों की महफिल कार्यक्रम में।

0: जख्मों के निशान इस फिल्म का गीत था हिमलता की आवाज में, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।
1: सुन, कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, तोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सीआईडी, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
2: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
1: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली।

लता के गाए गीत आज आप सुन रहे हैं यादों की महफिल में।

0: ये चौपाइयाँ आप सुन रहे थे, फिल्म थी दुल्हन वही, जो पिया मन भाई हेमलता और साथियों की आवाजें थी, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आंखियों के झरोके से। इस फिल्म का गीत आपने सुना हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में, गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। श्रोताओं, आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाए हेमलता के गाए चंद नगमे। आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
4: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
5: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
4: सेहत नामक कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
5: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
4: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहत नामा।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे।

0: करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो वित्त अधिनियम 2026 के अध्याय 4 में शामिल है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून की यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रत्येक उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा है कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त ही है। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ये 15 सितंबर तक खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। रखरखाव के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील स्थित प्राचीन बाबा बुद्धा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुद्धा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। यात्रा इस महीने की 28 तारीख तक चलेगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु अपना पहला मैच कल खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। आयुष शेट्टी पहले दौर में मौजूदा चैंपियन चीन के शी युकी से मुकाबला खेलेंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The National Testing Agency, NTA, has released the provisional answer keys for 84 subjects of the UGC NET June 2026 examination. The NTA has also opened the challenge window, which will remain open till the 18th of August. Candidates can challenge the answer keys online through the official UGC NET portal. It added that candidates must support e-challenge with documentary evidence. The agency also noted challenges submitted through any other mode

0: समर्थन देने के नाम पर कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का लगाया आरोप। भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की रामगढ़ में चल रही बैठक। धनबाद में आज कांग्रेस की लोकसभा स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश प्रभारी के राजू होंगे शामिल। पलामू में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार की दिशा में बड़ी पहल। शेर घाटी कजरी रेल लाइन को मंजूरी। आर्थिक और सामाजिक विकास को मिलेगी नई गति। और घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई केवाईसी कराने का आज अंतिम दिन। नहीं कराने पर चुकाने पड़ सकते हैं अधिक दाम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि एसआईआर के तहत 24 अगस्त से नो मैपिंग और तार्किक विसंगति वाले मतदाताओं की सुनवाई शुरू होगी, ताकि त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाई जा सके। नोटिस मिलने पर मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने के लिए 7 दिन का समय मिलेगा और दावा आपत्ति 15 सितंबर तक ली जाएगी, जिसका निस्तारण 14 अक्टूबर तक होगा। उन्होंने सभी पात्र नागरिकों से असहयोग की अपील करते हुए कहा कि विदेशी या अपात्र के नाम मिलने पर फॉर्म 7 से आपत्ति दर्ज कराने और जानकारी के लिए 1950 हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने आंदोलन को समर्थन देने के नाम पर कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया।
1: आंदोलन के 23वें दिन भी छात्र जब यहाँ अडटे हुए हैं, तो ये बात साफ है कि छात्र बिना अपनी मांगे मनवाए यहाँ से जाने वाले नहीं।
2: तमाम छात्र नौजवान जो है सो अपने हक और अधिकार की लड़ाई को और भी धार देने के लिए मजबूती से आज पुतला दहन कर रहे हैं। और ये पुतला दहन सिर्फ हेमंत सोरेन जी के तक ही सीमित नहीं है, ये पुतला दहन जो है सो हम लोग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी का कर रहे हैं।
0: जेपीएससी जेएसएससी उम्मीदवारों के विरोध प्रदर्शन पर भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रों को गुमराह कर रही कांग्रेस पार्टी को केवल सत्ता में बने रहने की चिंता है।
3: लगातार 22 दिन से संघर्ष कर रहे छात्र आज लाचार और विवश होकर मुख्यमंत्री के आवास का घेराव का 20 तारीख का घोषणा किए और आज 2400 जिला में पुतला दहन का घोषणा किए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा, सबसे पहले आपको झारखंड में छात्रों को उंगली पकड़ के मुख्यमंत्री आवास ले जाना चाहिए और जो उनकी मांग है उस पर सरकार की सहमति बनवानी चाहिए। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपके समर्थन से चलने वाली जेएमएम सरकार का समर्थन तो आप वापस ले सकते हैं।
0: भाजपा जिला कार्यालय रामगढ़ में आज प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक हो रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा इसमें उपस्थित हैं। इस बैठक में पार्टी की रणनीति और राज्य की वर्तमान हालात पर चर्चा होगी। सांसद मनीष जायसवाल ने बताया कि पहली बार रांची में बाहर से ये बैठक हो रही है।
4: रामगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि पहली बार रांची से बाहर हो रहा है और रामगढ़ को इसको होस्ट करने का सौभाग्य मिल रहा है। यहाँ पर एक सुसज्जित सुव्यवस्थित पार्टी का कार्यालय भी है, रांची से इसकी दूरी भी कम है और प्रदेश नेतृत्व के नजर में रामगढ़ के लिए उनकी जो भावना है वो अधिक है, इसको लेकर के ही ये जो है मीटिंग यहाँ पर आज ऑर्गेनाइज हो रहा है।
0: धनबाद सर्किट हाउस में आज कांग्रेस की लोकसभा स्तरीय समीक्षा बैठक होगी, जिसमें झारखंड प्रदेश प्रभारी के राजू शामिल होंगे। इसमें एआईसीसी सचिव सह प्रभारी भूपेंद्र मरावी, झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और धनबाद लोकसभा प्रभारी कुमार जय मंगल सिंह मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। झारखंड विधानसभा परिसर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, रांची की महापौर रोशनी खलको समेत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड निर्माण में

0: अटल जी के योगदान को याद किया।
1: कि अटल जी देश के एक अजात शत्रु जिसको कह सकते हैं, कि कोई शत्रु ही नहीं, क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, सब लोग उनकी भोरी भोरी प्रशंसा कर रहे हैं। और आज झारखंड राज्य का जो निर्माण हुआ, इसका अगर किसी एक व्यक्ति को श्रेय दिया जा सकता है तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी, उनके प्रति पूरे झारखंड वासी ऋणी।
0: पलामू संसदीय क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए बड़ी पहल हुई है। रेलवे बोर्ड ने गयाजी जिले के शेर घाटी से पलामू के कजरी तक 107 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉडगेज रेल लाइन के निर्माण के लिए 2627 करोड़ 29 लाख रुपए के विस्तृत प्राकलन को मंजूरी दे दी है। परियोजना से पलामू और आसपास के क्षेत्रों में व्यापार, उद्योग, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पलामू सांसद वीडी राम ने कहा कि यह रेल परियोजना क्षेत्र के विकास और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देवघर श्रावणी मेला के तीसरे सोमवार को बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने वाली है, जिसे लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवनिया ने एसपी प्रवीण कुमार और नगर आयुक्त सुलोचना मीणा सहित अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रशासन का दावा है कि तीसरे सोमवार को श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। रक्षाबंधन के मौके पर जमशेदपुर में डाक विभाग की पहल पर बच्चों को देशभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ने के लिए विशेष राखी मेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शारदामणि बालिका उच्च विद्यालय में छात्राओं ने सीमा पर तैनात जवानों के लिए अपने हाथों से आकर्षक और इको फ्रेंडली राखियां तैयार की। प्राचार्य परमिता चक्रवर्ती ने कहा कि डाक विभाग की यह पहल बच्चों को जवानों के त्याग और सेवा से जोड़ने का बेहतर माध्यम है।
2: ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया डाक विभाग की तरफ से, क्योंकि ये पहले भी जो बच्चा हम लोग भूल जाने वाले हैं, जो राखी का त्योहार है क्या, बहुत जन हम लोग जानते भी नहीं। एक तो हम लोग न्यूक्लियर फैमिली हो गया, बहुत जन के पास भाई है ही नहीं, और जिसके पास है वो भी इतना दूर में है, जो हम लोग इस त्योहार को भूल गए। कोई कोई सिर्फ एक हॉलीडे के हिसाब से ही हम लोग सेलिब्रेट कर लेते।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,42,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,55,000 रुपए प्रति किलो है। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई केवाईसी कराने का आज अंतिम दिन है, यानी आज रात 12 बजे तक ई केवाईसी नहीं कराने वाले ग्राहकों को सिलेंडर के लिए ज्यादा दाम चुकाने पड़ सकते हैं। ई केवाईसी ऑनलाइन माध्यम से या संबंधित एलपीजी वितरक के पास जाकर कराई जा सकती है। झारखंड में मॉनसून सक्रिय मोड़ में है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन राज्य के लगभग सभी जिलों में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान जताया है, इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा, एसआईआर के तहत 24 अगस्त से नो मैपिंग और तार्किक विसंगति वाले मतदाताओं की शुरू होगी सुनवाई। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने आंदोलन को और तेज करने का किया ऐलान। समर्थन देने के नाम पर कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का लगाया आरोप। भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की रामगढ़ में चल रही बैठक। धनबाद में आज कांग्रेस की लोकसभा स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश प्रभारी के राजू होंगे शामिल। पलामू में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार की दिशा में बड़ी पहल। शेर घाटी कजरी रेल लाइन को मंजूरी। आर्थिक और सामाजिक विकास को मिलेगी नई गति। और घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई केवाईसी कराने का आज अंतिम दिन। नहीं कराने पर चुकाने पड़ सकते हैं अधिक दाम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

बरसात की रात फिल्म का ये गीत था और ये दो अनजाने कौन थे जिनकी मुलाकात बरसात की रात में हुई। और ये गीत जो एक्ट्रेस हैं या जो अभिनेत्री हैं वो कहाँ सुन रही हैं जब ये सिर्फ हीरो गाते हैं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज थी। बाकी डिटेल आपको बतानी है। घर घर की कहानी फिल्म में जलाल आगा पर फिल्माया गया गीत था और अनजाना में बबीता और राजेंद्र कुमार थे। हमारी एक श्रोता ने लिखा है, हमने तो कई बार छोड़ा है एक बड़ी

उम्र की महिला को मंदिर तक उसी की छतरी में बस पकड़ा हमने। खुद थोड़ा भीग गए पर उन्हें भीगने से बचाया और कई बार अपने फूलों के ऊपर भी छतरी को रखा ताकि उनमें ज्यादा पानी ना आ जाए। जी हाँ, एक और श्रोता लिखती हैं कि नरगिस का फूल मुख्य रूप से पीले और सफेद रंग का होता है, लेकिन इसकी किस्मों में नारंगी, क्रीम, गुलाबी और हल्के लाल रंग भी पाए जाते हैं। इसे अंग्रेजी में डेफोडिल कहा जाता है। एक और श्रोता लिखते हैं, एक सुहानी शाम और बाहर रिमझिम सावन बरस रहा था। वो ठीक वैसी ही एक बारिश की रात थी जब जिंदगी की अनजान राह पर चलते हुए दो अजनबी अचानक एक दूसरे के करीब आ गए। और उसके बाद की बात इन्होंने लिखी है अपने शब्दों में। एक और श्रोता लिखती हैं कि मैं छत पर आई कपड़े सुखाने, फिर कुमुदनी खिली देखी, फिर मोबाइल ले आई, उसकी तस्वीर खींची, बाद में बाकी बेलें हमें भूल गई तो वीडियो करने लगी, बाद में कमल रूठा उसको सहलाते समझाने लगी, उसके भी फोटो निकाले। चलो अब नीचे जाती हूँ और रेडियो शुरू करती हूँ। बप्पा, इन्होंने बप्पा को भी याद किया है, यानी गणपति बप्पा। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि जी हाँ, मुझे तो याद है वो बरसात की रात, देशभक्ति गीतों की एक शाम का प्रोग्राम चल रहा था, बाहर बारिश तेज थी, थोड़ा इंतजार करने के बाद भी बारिश नहीं रुकी। मैंने रेनकोट पहना और स्कूटर से घर आने के लिए, रास्ते में इतना बड़ा पानी से भरा गड्ढा था कि मेरा स्कूटर उसमें फंस गया और मेरा स्कूटर बंद हो गया। मुझे पैदल ही स्कूटर को घसीट कर घर आना पड़ा। मुझे याद है कल की बरसात की रात शायद जिंदगी भर नहीं भूलेगी। तो ऐसा हमारे और भी साथियों ने लिखा है। और एक हमारे श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम का अंदाज जो है वो लाजवाब होता है इस कार्यक्रम का। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी दुनिया के सारे खूबसूरत गाने सिर्फ और सिर्फ विविध भारती के खजाने में ही रिकॉर्ड करके महफूज किए गए हैं। आपके पास हर मूड के, हर दौर के बेहतरीन संगीत मौजूद है। जी हाँ, विविध भारती की लाइब्रेरी तो ऐसी ही है। और कई बार आपने फेसबुक पर इसे देखा भी होगा। ये खूबसूरत हसीना कौन है?

वैसे बारिश अगर तेज हो तो छतरियों पर कितना भरोसा किया जा सकता है श्रोताओं, ये आपको बताना है। और बारिश में आप कहाँ जाना पसंद करते हैं, या किसी जगह आप गए जहाँ की रात जो थी वो आपको याद रह गई, और वो सफर आपका कैसा रहा, ये आपको बताना है। वैसे बारिश के मौसम में साइकिलें भी खूब चलाई जाती हैं, और सोचा ये जाता है छोड़ो छतरी कौन ले, ऐसा कभी आपके साथ हुआ तो ये आप हमसे बता सकते हैं। और एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि इनके कमेंट्स जो हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये लिखती हैं कि बारिश में प्रकृति अपने खुमार से जो है वो खुमार होता है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, धरती भी झूमती है, गाती है बरखा रानी जरा जम के बरसो। और एक कार्यक्रम में हमने आपको ये गीत सुनवाया भी था। एक और श्रोता ने लिखा है कि छतरी की बात पर याद आया, एक बार मेरी एक कलीग जिसे ऑफिस में काम को लेकर थोड़ा मतभेद था, लेकिन शाम को जब हम नरीमन पॉइंट से बाहर निकले तो मैं बरसात बहुत थी और मेरे पास छतरी नहीं थी, वो पीछे से आई और झटपट मेरे सिर पर छतरी उड़ा दी और हम दोनों साथ साथ चलते हुए चर्च गेट तक आ गए। जी हाँ, ऐसा होता है कि कभी कभी नाराजगी भी होती है, पर कुछ ऐसे मौके आते हैं जब फिर से हम साथ साथ हो जाते हैं और छतरी उनमें जो है कह सकते हैं कि अहम रोल निभाती है। तो ऐसी ही बातें आज आपको साझा करनी है। वैसे जो सावन की रातें होती हैं उनमें न सिर्फ लोग या हम सफर साथ होते हैं, बल्कि कोई कोई गीत ऐसा होता है, कोई गजल ऐसी होती है जो आपको अच्छा एहसास दिलाती है। तो ऐसी अगर कोई बात है तो आप लिखें। एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन और किशोरावस्था में हम झूला देखने सावन की बरसात के बीच जाते थे, खूब जलेबी खाते और गुब्बारे लेते थे, मंदिरों में झूला उत्सव में गायन और नृत्य भी बहुत भाता था। बरसात की रात तो बहुत रोमांटिक होती है। वैसे इस साल अलनीनो ने बरसात को बहुत प्रभावित किया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज बारिश का मौसम सब जगह छाया है, सब जगह बारिश है, पर हमारे शहर में बादल हैं। पर बारिश के नहीं, आज के गीतों का आनंद ले रहे हैं, यानी बारिश नहीं है, धूप भी नहीं आती और बारिश भी नहीं। तो आप इंतजार करें, बारिश तो आएगी।

अभिनेत्री साधना और धर्मेंद्र पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। संगीतकार आपको बताने हैं इश्क पर जोर नहीं, ये फिल्म का नाम था। श्रोताओ, न सिर्फ हम सफर यानी कि जो साथ चले कुछ समय और याद रहे या फिर जीवन भर के लिए साथ हो गए, ऐसी यादें आप हमसे ताजा कर सकते हैं। और कभी कभी किताबें भी हमारी हम सफर होती हैं इस रात की। कभी कोई गीत, कभी कोई गजल आपको ऐसी रातों में, शांत रातों में, बारिश की रातों में सुनना पसंद हो तो आप बता सकते हैं। और कौन हम सफर है, वो कौन सा हम सफर है श्रोताओ, जिसकी याद बीती रात आपको सोने से, जिसकी याद ने बीती रात आपको नींद से जगाया, तो ये अगर आप बताना चाहें तो जरूर बताएं। बीती रात यानी कल जो गई, उस रात की हम बात कर रहे हैं। एक हमारे श्रोता ने बड़ी मजेदार बात लिखी है, और वैसे हमारे श्रोताओं से ये आग्रह है कि जल्दी जल्दी कमेंट्स भेजें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो स्क्रॉल होते हैं तो वो एक साथ आ जाते हैं। हाँ, एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश के मौसम में जब छतरी लेकर गाड़ी के पीछे बैठो, छतरिया उड़ने का डर लगता है और सामने गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति, उसके मुंह पर पानी भी टपक जाता है कभी कभी, तो कभी अच्छा भी लगता है। भाई ये तो एक शरारत वाली बात हो गई। एक हमारे श्रोता और लिखते हैं कि सावन का महीना आते ही प्रकृति एक अलग बदलाव ले लेती है, चारों तरफ हरियाली होती है और छोटी छोटी बूंदें जो हैं वो बरसती, ये कहती हैं कि इन बूंदों की तरह हमेशा खुश रहना चाहिए। जी हाँ, जब बूंदों को वैसे भी हम देखते हैं तो एक अजीब सी खुशी जो होती है मन में होती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि हम एक किसान जोड़ी हैं जो खेत में काम करते करते आपका रेडियो सुनते रहते हैं। आज हमें सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, ये गाना सुनना है, कृपया करके सुना दें तो बहुत उपकार होंगे। हमारे नाम, उन्होंने अपने नाम भी लिखे हैं और अपनी अर्धांगिनी का नाम भी लिखा है, तो हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और इंतजार तो करना पड़ेगा, गीत तो एक से एक आते ही रहते हैं। एक और हमारे श्रोता का कमेंट है, वो इस गीत को सुनवाने के बाद बताते हैं।

ये दो लोग जो हैं वो लिफ्ट में हैं, और कौन सी फिल्म है, कौन से कलाकार हैं, ये आपको बताने हैं। हमारी श्रोता ने लिखा है कि हम एक बार बारिश में छाते से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक लड़की डॉक्टर को दिखाकर लौट रही थी। रास्ते में बारिश हो गई, बोली आंटी मुझे गली तक छोड़ देंगी। उसके घर तक छोड़ती हुई तब मैं अपने घर आई। वो भीग रही थी और बुखार में भी थी। यह हमारी एक श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की बारिश बरसती मौसम में हुई मुलाकात।

की बातों से जुड़े गीतों से बुनी जाने वाली है। तब हम यही कहेंगे रिमझिम की तराने लेकर आई बरसात, और कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सावन के महीने में रिमझिम फुहारों के बीच किसी अजनबी से मिलना अक्सर पहली नजर में ही दिल में उतर जाता है। पहली नजर का प्यार कई बार खामोश इकरार में तब्दील हो जाता है और सावन महीने की हर बूंदें उसकी यादें ताजा करती हैं और भीगे हुए। और इन्होंने अपनी बातें और भी लिखी हैं आगे। एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश और सावन का संगम प्रकृति को सौंदर्य से परिपूर्ण कर देता है। उड़ते बादल, बरसता पानी, फुहार, सुहाना मौसम जीवन में कई उमंग जो है जागती है और ये एक खूबसूरत एहसास होता है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि लिखते हैं, इन्होंने कुछ एक पैरोडी टाइप की लिखी है, तो ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये गीत आप बताइए कि कलाकार के हाथ में कौन सा वाद्य है और ये कौन सी फिल्म है। और इस गीत के पहले श्रोताओं हमने आपसे पूछा था, वो इश्क पर जोर नहीं फिल्म थी और संगीतकार थे सचिन।

अरुण गोविल और ज़ीना वहाव पर ये फिल्माया गया गीत था। आप सुन रहे थे सावन को आने दो फिल्म से, ये सुदास की आवाज थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की जो इबारत है, क्लासिक हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर और रोमानी नॉस्टैल्जिया का एक बेहद खूबसूरत और काव्यात्मक ताना बना है। बारिश की एक रात में दो अजनबियों के रूहानी जुड़ाव को यहाँ बेहद नफासत से पिरोया गया है। इस रचना की सबसे बड़ी खूबी इसमें शामिल क्लासिक गीतों के संदर्भ में है और अंत में हाथ में छतरी फिर क्यों भीगते रहे पंक्ति उस खूबसूरत विरोधाभास को दर्शाती है जहां इंसान दुनिया की बारिश से बचने का दिखावा तो करता है पर मोहब्बत की बारिश में पूरी तरह भीग जाना चाहता है। कलाकार बताएं श्रोताओं आप।

और देवानंद पर फिल्माया गया तीन देवियां फिल्म का ये गीत था। ये तीन देवियां कौन थे इस फिल्म में? श्रोता, अगर आपने फिल्म देखी है तो आप हमें जरूर बताएं। सचिन देव बर्मन की तर्ज थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पहले बरसात की रात ऐसी भी होती थी जब रात भर बारिश होती थी और लाइट बंद कर दी जाती थी।

चारों तरफ सन्नाटा, काली घटा, कड़कड़ाती बिजली के बीच चौकन्ना रहना पड़ता था और रोशनी के लिए उन दिनों लालटेन के माध्यम रोशनी से पढ़ाई लिखाई और रसोई घर में खाना बनता था और उसी माध्यम रोशनी में बैठकर एक साथ खाना खाया जाता था। कितना सुकून था उन दिनों में भी। एक और श्रोता ने लिखा है कि सुंदर नायाब गीतों का नजराना यानी सुरमई यादों, तरहनों का नया कारवां और नगमों की अनकही राहें जिन पर चलने का आनंद हर कोई चाहे।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि यदि घनघोर हो रही हो बारिश तो छाता भी काम नहीं करता है। एक और श्रोता लिखती हैं कि मैं आजकल बर्लिन में हूं और वहां से प्रोग्राम सुन रही हूं। एक और श्रोता ने लिखा है कि बारिश के मौसम में जब छतरी लेकर गाड़ी पर पीछे बैठो तो भाई

ये दो कलाकार आपको पहचानने हैं श्रोताओ, और जो अभिनेता हैं वो कौन सा वाद्य बजा रहे हैं? वैसे अरुण गोविल के हाथ में रावण हत्था था।

आपको वाद्य बताने हैं और जरूर बताने हैं, जरूर बताइए श्रोताओं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि लिफ्ट पूछो मत, लिफ्ट के बारे में। जगह वृंदावन गए, वहाँ किसी होटल में रुके और लिफ्ट में जा रहे थे, ऊपर अचानक से लाइट गोल, ओके लिफ्ट रुक गई है, बहुत डर गए सब, लेकिन शुक्र है लिफ्ट में नंबर लिखा था तो हमने उसे नंबर पर कॉल करके पूछा तो बोला लाइट गोल है, थोड़ी देर में आ जाएगी, तब टेंशन न करें। श्री 420 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, नरगिस और राज कपूर पर फिल्म आया शंकर जयकिशन की तर्ज थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि बारिश की रिमझिम बरसती रात में प्रेम का सुंदर वितान छुपा है, किसी रहस्य की तरह जहां दो अजनबी मिले थे और फिर पूरा समा रंगीन हो उठा था। बारिश में छन छन कराती फुहारें मन पर नेह का जो पुल बनाती हैं उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। नेह का पुल पर दोनों ओर जमजमाते बादलों से जो रस की वर्षा होती है उसको निहारने से मन में प्रेम के फूल खिलते हैं और दिन सुरीला हो जाता है। प्रेम कोई एक दिन की बात नहीं, ये तो हमेशा हमेशा के लिए हर बार मुट्ठी से फिसलती ये बारिश प्रेम भरी और मन में अटक जाती है। कलाकार आपको बताने हैं और फिल्म

की भीगी रात की तरह सुंदर होता है। श्रोताओं, ये कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुन रहे थे। नींद हमारी ख्वाब, तुम्हारे इस फिल्म का गीत नंदा और शशि कपूर पर फिल्माया गया। आपके सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

0: हैं। एक रिपोर्ट।
1: छात्र आधिकारिक यूजीसी नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं। प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने के लिए 200 रुपए प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। छात्रों को प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 18 तारीख है। एनटीए ने बताया कि शेष 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। एनटीए ने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर इन तीनों विषयों के संबंध में अलग से सार्वजनिक सूचना आज जारी की जाएगी। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित सूचनाओं पर ही भरोसा करें। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। श्री शाह ने ये बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही।
3: 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सब के बीच में से विदा लिए थे। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है।
0: श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना श्री वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुई थी। उनकी पहल के कारण जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई कार्य हुए, जिसे मौजूदा सरकार ने भी आगे बढ़ाया है और कई ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा की गई है। श्री शाह आज अलवर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
4: भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य

0: समूह के लिए प्राथमिकता वाले चार क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के विरोध का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करके कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान तो किया ही, संविधान और देश की जनता का अपमान भी किया।
2: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
1: भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज हरियाणा में करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये अभियान इस महीने की 9 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने रवाना किया। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
3: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: ओणम के औपचारिक समारोह आज अथम के साथ शुरू हो गए हैं और पूरे केरल में मनाए जा रहे हैं। अथम की खास पहचान अथ पुक्कलम है, जिसमें घरों में रंग बिरंगे फूलों से कालीन सजाए जाते हैं। इसमें तिरुवोणम तक हर दिन फूलों की एक नई परत जुड़ी जाती है। मध्य केरल के त्रिपुनितुरा में आयोजित होने वाला भव्य अथाचमयम जुलूस भी ओणम समारोह का प्रमुख आकर्षण है। इसमें पारंपरिक कला रूपों और प्रस्तुतियों के माध्यम से राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलती है। उधर सबरीमाला मंदिर आज मासिक पूजा के लिए खोल दिया गया है। विशेष ओणम पूजा 24 से 28 अगस्त तक होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
1: उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित प्राचीन बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। श्रावण माह में होने वाली यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृहमंत्री ए नमस्सिवयम ने कीझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल से शुरू हुआ पंजीकरण अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की।

0: है।
1: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल उत्तरी ओडिशा तट पर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे राज्य में बाढ़ की समस्या और बढ़ गई है। आईएमडी ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में खासकर कल और परसों बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बूढ़ा बलंग नदियों ने बड़े इलाकों को जलमग्न कर दिया है। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केंवझर और केंद्रापड़ा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 500 से ज्यादा गाँव में लगभग 2,70,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 95,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारी हाई अलर्ट पर है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राजधानी दिल्ली में आज शाम हल्की वर्षा हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में ये चैंपियनशिप भारत में हुई थी। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक मिलने की उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिशा और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो भारत की अगुवाई करेंगे। भारत ने अब तक विश्व चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स में कोई पदक नहीं जीता है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर दूसरी। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा।
0: महान संत श्री राम कृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक और माता काली के परम भक्त श्री राम कृष्ण परमहंस ने भारतीय सनातन परंपरा की गहन शक्ति और आध्यात्मिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में JPSC JSSC परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। BWF विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

किशोर कुमार, लता मंगेशकर के युगल स्वरों में गाइड फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया। शैलेंद्र के बोल थे, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: आरजू फिल्म का गीत था मोहम्मद रफी की आवाज में, शंकर जयकिशन की तर्ज, हसरत जयपुरी के बोल थे।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर। जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
3: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
3: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
2: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे, सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा,
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल से जुड़े कथित नियुक्ति घोटालों की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से युवाओं की मांग सुनने और निष्पक्ष जांच कराने की अपील की। आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए श्री सेठ ने कहा कि युवाओं को आश्वासन नहीं, न्याय चाहिए और इस मामले में पारदर्शिता जरूरी है। राज्य में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के बाद उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार लंबे समय से भूख हड़ताल के कारण उनका ब्लड प्रेशर सामान्य नहीं है। चिकित्सकों ने ओआरएस और जरूरी फ्लूइड देने के साथ उनको लगातार चिकित्सकीय निगरानी की सलाह दी है। टीवी कलाकार और अधिवक्ता कुनिका सदानंद ने झारखंड में आंदोलनरत छात्रों के मुद्दे पर जवाबदेही तय करने की जरूरत बताई है। रांची में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नौकरी के जरूरतमंद छात्रों और अभ्यर्थियों को रोजगार नहीं मिल रहा है तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर भी जोर दिया।
1: मुझे लगता है कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी कैंडिडेट हो जिसे नौकरी की आशा है उसके लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए अगर उनको नहीं मिले। और स्टूडेंट मतलब जो कोई की जो शिक्षा प्रणाली है उसको सुधार करनी बहुत जरूरी पूरे देश सिर्फ झारखंड की। 65% हमारे देश की जो युवा है, अगर हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो इसका मतलब आप देश के बारे में भी।
0: इंफ्रा और ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स को झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से 28 करोड़ 47 लाख रुपए का ठेका मिला है। कंपनी के अनुसार ई टेंडर के जरिए उसे एनएच 31 पर मदनगुंडी शुल्क प्लाजा की उपयोगकर्ता शुल्क एजेंसी के रूप में काम करने का ठेका मिला है। यह ठेका 12 महीने की अवधि के लिए है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।

0: झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल षडंगी ने केंद्र सरकार पर खनिज राजस्व से जुड़े राज्य के अधिकारों को सीमित करने का आरोप लगाया है। षडंगी ने चेतावनी दी कि मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन को जिला प्रखंड और पंचायत स्तर तक ले जाया जाएगा। इधर गिरिडीह में पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 21 अगस्त से संवैधानिक तरीके से राज्य भर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगा।
1: और इस जिले में भी हम लोग इस कानून का विरोध करने के लिए चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। 20 तारीख को केंद्रीय समिति की भी बैठक है। 21 तारीख से गिरिडीह जिले में भी चरणबद्ध आंदोलन इस कानून के खिलाफ हम लोग करेंगे। यह लड़ाई लंबी होगी, हमें पता है। आंदोलन का स्वरूप संवैधानिक तरीके से शुरुआत होगा।
0: पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुवा स्थित खदान में एक अधिकारी की अचानक मौत के बाद मजदूरों ने आश्रित को नौकरी और उचित मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया है। आंदोलन के कारण बीती रात से खदान क्षेत्र की बस सेवा बाधित है और लौह अयस्क का उत्पादन प्रभावित हुआ है। कंपनी प्रबंधन के अनुसार ड्यूटी के दौरान सीने में दर्द के बाद अस्पताल ले जाने पर अधिकारी की मौत हुई। पुलिस की निगरानी में शव पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा भेजा गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। NTA ने उम्मीदवारों से केवल अपनी आधिकारिक वेबसाइट और सत्यापित सोशल मीडिया हैंडल पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल से शुरू हुआ पंजीकरण अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। विजेता टीम को साइबर केसरी 2026 की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा और उन्हें पारंपरिक गदा भेंट की जाएंगी। उप विजेताओं को रुस्तम और पहलवान की उपाधि से नवाजा जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

पेशे खिदमत है मन चाहे गीत। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बूंदों के रथ पर चांदी सी चमक लिए आपके पसंदीदा गीत आपके शहर से हमारे पास तक आ चुके हैं। साथियों, ये पत्र बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं। थकान तो इनमें कहीं दिखती नहीं, ताजगी गीतों की आप भी महसूस करेंगे। बस सुनते रहिए मन चाहे गीत। तो सुनिए जरा ये गीत, इसमें आपके

पत्थर की सनम फिल्म का दो गाना आपने सुना। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद, अभयानंद और परमानंद आर्या ने हमें पत्र लिखे। पुलगांव जिला वर्धा से अब्दुल कलाम का पत्र आया। गंगाशहर

का नहीं कि हमारे श्रोता हैं कैलाश सोनी गोविंदा सोनी उत्तम सोनी और मिलावदास जयदास देवेश दास की फरमाइश आई है धनवंतन बाई मोतिन बाई मानिकपुरी का भी नाम इसमें है गणेश धाम परसूली बालोद के हमारे श्रोता हैं और ये पत्र आया है शीशगढ़ बरेली का इलियास नईम और नदीम इदरीसी इसी गीत को सुनना चाहते थे।

साजिद फिल्म में आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन थी, आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना। कर्नाटका के ये हमारे श्रोता हैं, तिरुपंजी से इन्होंने पत्र लिखा है। प्रकाश, श्यामला, अश्विन और आनंद मनवित दाम भी है इस गीत के लिए। एक और श्रोता है शारदा, जिला नंदुरबार महाराष्ट्र के का ये पत्र है। प्रकाश शील के, तुषार, किशांग और प्रियांगी ने इस गीत को सुनना चाहा। और ये हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ के शिखा, प्रीति, संध्या, शालू ठाकुर। और ये पत्र आया है जुनताद अकोले से, राजेश, प्रिया और रोहन नेहा वाघमारे का ये पत्र है। और महेंद्र जैन, नागेश जैन, पारस, जयेश, ऋषभ और संयम के साथ सिद्धांत जैन का भी नाम है। ये पेठ अकोला के हमारे श्रोता हैं।

0: जी के बोल थे, आप सुन रहे थे किस्मत फिल्म का गीत पोहरा अहिवारा। जिला छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता पत्र लिखते हैं, पोषण बंदौर और चंद्रकिरण प्रीति और छाया बंदौर की ये फरमाइश है। और मीना तलरेजा जी का भी पत्र मेरे हाथ में है श्रोताओं, इन्होंने कहाँ से लिखा है जगह का नाम नहीं लिखा, हमारे यहाँ का तो पता ठीक है। दत्तारेंगी भाड़ा पारा के हमारे श्रोता हैं हीरामन वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद्र और नोखेलाल वर्मा ने इस गीत की फरमाइश भेजी। गेंदलाल श्रीवास और गेंदू भाई का पत्र आया है दुर्गा चौक रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। देवली कांशिवनी तालुका जिला अकोले से हमारे श्रोता हैं सचिन नीलखन, आयुष पीयूष आराध्या सारिका मधुकर राउत, ये हमारे रंगनाथ देउल गांव के श्रोता हैं मधुकर, जया राउत, ओम कीर्ति राउत और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: अब अगर हम

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग
1: आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है नाटक पुराना मर्ज नया इलाज। मूल लेखक मॉलियर, रूपांतरण एवं निर्देशन विनोद रस्तोगी।
2: अरे भाई कृपण साहब, अरे भाई मैंने कहा क्या जनान खाने में ही घुसे रहोगे यार?
3: आ रहा हूँ भाई साहब।
2: अरे जल्दी आओ ना।
3: कहो भाई आज कैसे रास्ता भूल पड़े?
2: अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
3: नहीं आज मैं बहुत दुखी हूँ।
2: क्यों?
3: तुम तो जानते हो भाई मेरी इकलौती पत्नी सर फिनार गई।
2: अरे भाई वो तो मालूम है, लेकिन आज महीनों के बाद तुम्हें
3: आज फिर उसकी याद आ रही है। दिल करता है टूट फूट कर रहा हूँ।
2: अरे तो फिर रोते क्यों नहीं? देखो आंसू बहाने में कंजूसी ठीक नहीं होती।
3: मजाक करते हो दोस्ता, प्यारी पत्नी की याद में कलेजा मुंह खुला रहा है। आ, आ, आ, आ, आ, आ, कितना चाहती थी मुझे।
2: अरे भाई मैं ये कह रहा था कि बीवी को भूल भाल कर अब तुम बेटी की तरफ ध्यान दो। अगर तुम इस तरह दुखी रहोगे तो तुम्हारी रूपा बेटी भी।
3: रूपा के कारण तो और भी परेशान हूँ भाई।
2: क्यों क्यों क्या हुआ उसे?
3: अरे न जाने क्या हुआ, हर दम उदास रहती है। कोई कोई सी चांद सा गोरा चेहरा पीला पड़ गया है, समझ में नहीं आता क्या करूं भाई।
2: तो तुमने उदासी का कारण जानना चाहा?
3: अरे यही तो नहीं मालूम, पूछता हूँ तो कुछ जवाब ही नहीं देती। भाई उतार चल।
2: हाँ
3: उतार चल।
2: हाँ कृपा
3: भाई तुम मेरे दोस्त ही नहीं, सगे भाई की

0: अरे वाह सो तो
1: बोले वो ना।
0: हाँ
1: तुम ऐसा करो, तुम ही कोई तरकीब बताओ, रूपा बेटी को कैसे खुश करूं।
0: देखो भाई कृपणचंद, मैं तो स्त्रियों को प्रसन्न करने का बस एक ही नुस्खा जानता हूँ।
1: बताओ बताओ जल्दी बताओ जल्दी
0: बताओ
1: बताओ
0: बताओ।

0: महंगा नुस्खा है,
1: महंगा।
0: मेरा तो दिवाली निकल जाएगा। उदासन भाई उदासन, कोई सस्ती तरकीब सोचो।
1: ओ, ओ, तुम रहे कृपण के कृपण ही। अरे भाई, तुम अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकते?
0: नहीं भाई, जिसने भी अपनी गाड़ी कमाई,
1: हाँ,
0: सारी जेवर पर कमाई,
1: हाँ,
0: समझो उसकी आफत आई।
1: हाँ, तो फिर खोजो जमाई और कर दो सगाई।
0: क्या मतलब?
1: अरे भाई, जमाई का मतलब भी नहीं समझते? तुम्हारी बेटी सयानी हो गई,
0: हाँ, तो
1: उसकी शादी कर दो और छुट्टी पा जाओ।
0: शादी? नहीं नहीं नहीं, शादी के बाद बेटी खुश रहेगी, इसकी क्या गारंटी है? है? बोलो भाई, है तो गारंटी नहीं? अरे भाई, तुम जानते नहीं हो, अक्सर शादी लाती है बर्बादी।
1: अच्छा जी, अब जरा ये भी बता दो कि फिर तुमने क्यों की थी शादी?
0: एक ही बार तो की थी।
1: हाँ, एक ही बार की थी। अरे, तुम्हारी बहानेबाजी मैं समझता हूँ, तुम पक्के कंजूस हो कंजूस। बेटी की शादी में खर्च हो जाएगा ना, इसीलिए बातें बना रहे हो।
0: नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, क्या तुम भी बात करते हो। उदासन,
1: हाँ,
0: कोई और नुस्खा
1: सोचो। नहीं नहीं भाई, मैं कुछ नहीं जानता। बेटी तुम्हारी है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं चला, दुकान खोलने का वक्त हो रहा है।
0: मैंने कहा कि अपनी दुलारी बेटी को भेजते जाना है।
1: अच्छा?
0: वो रूपा की सहेली है।
1: हाँ?
0: शायद कोई रास्ता निकाल ले।
1: ठीक है, मैं दुलारी को भेजवा देता
0: हूँ। हाँ, तुझे को भेजना जरूर।
1: हाँ, भेज दूंगा।
0: चला गया, लगता है उधार चंद की बुद्धि भी उधार की है, तभी तो दिमाग नहीं चलता। साड़ी, जेवर, शादी, आय आय आय आय आय आय, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता, न जाने क्या हो गया मेरी बेटी को। आय आय
2: चाचा जी।
0: हाँ दादी, तुम आ गई।
2: क्या बात है, मुझे बताइए। चाचा जी, मुझे मालूम हो गया है, रूपा का मर्ज है प्यार और उसका इलाज है शादी।
0: अरे बाबा, शादी नहीं बर्बादी। मैं कहता हूँ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता।
2: लेकिन चाचा जी, चाचा जी, रूपा किसी को चाहती
0: है? किसी का नाम है जी?
2: उसे पति चाहिए।
0: मैं कुछ नहीं जानता।
2: पति चाहिए चाचा जी, रूपा को पति चाहिए, उसकी शादी कर दीजिए। रूपा, देखा दुलारी, चिंता की कोई बात नहीं। रूपा, तुम तो कहती थी कि कहने भर की देर है, पिताजी हंसते हंसते प्रेम के साथ शादी कर देंगे। मैं चाचा जी को ऐसा नहीं समझती थी। अब क्या होगा दुलारी, पिताजी शादी करेंगे नहीं और मैं प्रेम के बगैर जिंदा रह नहीं सकती। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारी शादी प्रेम बाबू से ही होगी, विश्वास रखो। लेकिन पिताजी की जिद क्या गई, तू क्या कर पाएगी? कहा ना, तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। अरे चाचा जी आ रहे हैं, चलो अंदर चलें।
0: प्यार हो गया है, शादी करेंगे। दिन रात एक एक करके मैंने धन कमाया है, क्या इसीलिए कि लड़की की दहेज में स्वाहा था तू? कृपण चंद ऐसा मूर्ख नहीं है। मैं अपनी संपत्ति घर में ही रखूंगा और बेटी को भी घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा।
2: चाचा जी, चाचा जी, गजब हो गया। रूपा,
0: क्या हुआ मेरी बेटी को?
2: बदकिस्मती।
0: अरे तुम्हारी बोलो तो
2: दुर्भाग्य।
0: अरे बता दे तुम्हें क्या हुआ।
2: रूपा बहन।
0: हाँ, क्या हुआ उसे?
2: आपकी बातों से हताश होकर रूपा अपने कमरे में गई।
0: अच्छा,
2: पीछे वाली खिड़की खोली और आसमान की तरफ आंखें उठाकर कहा, पिता का स्नेह खोकर मैं जीवित नहीं रह सकती।
0: अरे,
2: मेरे लिए एक ही रास्ता है।
0: क्या? क्या?
2: मौत।
0: और वो नीचे कूद गई।
2: नहीं चाचा जी, मैंने पकड़ लिया।
0: क्यों?
2: क्यों? चाचा जी, अब वो बिस्तर पर पड़ी है। पहले रोती रही, फिर अचानक चेहरा पीला पड़ गया और वो मूर्छित हो
0: गई। मूर्छित हो गई। मैं अभी डॉक्टर बुलाता हूँ।
2: जल्दी जाइए,
0: तब तक रूपा को देख लेना। मैं
2: रूपा, लाइन क्लियर है, आ जा। क्या कहा पिताजी ने? घबरा कर डॉक्टर बुलाने गए हैं।
3: डॉक्टर?
2: हाँ,
3: अब क्या होगा, डॉक्टर के सामने पोल खुल जाएगी।
2: चिंता न करो, चाचा जी हैं पक्के कंजूस, अच्छे डॉक्टर को लाने से रहे, फटीचर डॉक्टर आएगा, उसे धोखे में रखना मुश्किल नहीं होगा। अरे चाचा जी तो तीन तीन डॉक्टर ला रहे हैं। चाचा, तू जल्दी से अंदर जाकर मूर्छित हो जा।

0: चाचा जी आप तीन तीन डॉक्टर ले आए?
1: हाँ बेटी, एक डॉक्टर है और दूसरा वैद्य और तीसरा हकीम। हाँ बेटी क्या बात है?
0: चाचा जी रूपा पर ये तीनों मिलकर भी शायद बेचारी रूपा को ठीक कर पाए।
1: नहीं ऐसी बात नहीं है।
2: मैं डॉक्टर बोगसचंद।
1: हाँ बोगसचंद, बिल्कुल बोगस।
2: मैं मर्ज के साथ मरीज को भी साफ कर देता हूँ।
3: और मैं हूँ कविराज
0: मूढ़ानंद।
3: नाड़ी देखकर पूर्व जन्म तक का रोग बता सकता हूँ। मेरा चेहरा देखकर ही रोग पलायन कर जाता है।
4: मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। हकीम अहमद सोठवी का नाम बच्चा बच्चा जानता है। चाहूँ तो मुर्दे में जान डाल लूँ और चाहूँ तो जिंदा को।
1: अरे भाई मैंने कहा अपने मुंह में चुप, बाद में बनिएगा। आप लोग पहले मेरी बेटी को देख लें।
2: क्या तकलीफ है आपको?
3: मुझे अपनी नाड़ी दिखाई है।
4: अरे नहीं, मैं तो चेहरा देखकर ही बता सकता हूँ कि इसे कम समय।
1: सावधान के मेरी बेटी नहीं उसकी सहेली है।
2: आपने पहले क्यों नहीं बताया?
3: नॉनसेंस, हमें धोखे में रखा। खैर कोई बात नहीं, हम सहेली की नाड़ी देखकर ही आपके बेटी का रोग बता।
4: तो मरीजा मरीजा आखिर है कहाँ भाई? मरीजा कहाँ है?
1: आप मरीजा पूछ रहे हैं जी? वो अंदर कमरे में है। इन लोगों को अंदर ले
0: जाइए।
1: वो आ गया है। क्या हाल है मेरी बेटी का?
2: हमने अच्छी तरह एग्जामिन कर लिया।
1: गुड गुड।
2: बॉडी में काफी फॉरेन मैटर है।
1: क्या वक्त हो जी? पापा मेरी बेटी एकदम देसी है। देसी
3: वायु के साथ साथ पित्त प्रकोप भी।
4: इससे पहले कि हम कोई दवा तजवीज करें, हम आपस में कुछ मशविरा करना चाहते हैं। क्यों डॉक्टर बोगसचंद?
2: आपने सेंट पर्सन सही बात कही है हकीम सोठवी साहब।
3: मैं भी आप दोनों से शत प्रतिशत सहमत हूँ।
1: अच्छा,
3: परामर्श के पश्चात ही निदान और उपचार हो सके।
1: ठीक है, ऐसा करिए आप लोग सलाह कर ले। बेटी को देख लो।
2: आजकल मौसम बहुत खराब है कविराज मूढ़ानंद जी।
3: ऐसे ही मौसम में पित्त प्रकोप और वायु विकार होता है।
4: हमारे यहाँ फिर भी तो मरीज नहीं आते।
2: अरे आपके यहाँ नहीं आते होंगे, मेरी डिस्पेंसरी तो खचाखच भरी रहती है।
3: अरे क्यों मिथ्या खत्म करते हो, जैसे मुझे ज्ञाते ही नहीं। हमारा औषधालय भी तो वही है, दिन रात बैठे बैठे मक्खियाँ मारा करते हैं।
2: और आप कौन सा तीर मारा करते हैं? छठे छमाए कोई दवा लेने आ जाता है।
3: देखिए डॉक्टर साहब, मेरा मुंह मत खुलवाइए।
4: अरे भाई,
3: हमारे यहाँ तो छठे छमाए कोई आ भी जाता है, आपके यहाँ तो कोई खटकता भी नहीं।
4: आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है भाईजान। हाथ में शफा होनी चाहिए, शफा मरीजों की कमी नहीं रहती। हाँ एक बार का जिक्र है कि एक धोबी को बुखार आ गया, मैं देखने गया। आप यकीन मानिए साहिबान, मैंने गलती से दवा उसके गधे को खिला दी।
3: अच्छा,
4: अब धोबी चंगा हो गया।
2: तो ये क्यों नहीं कहते अहमद साहब कि आप जानवरों के हकीम हैं?
4: जानवरों के डॉक्टर होंगे आप? मैं तो जनाब खानदानी
2: गधों का इलाज करता हूँ।
3: दीजिए, आप लोग फिर लड़ने लगे।
1: आप लोगों ने क्या किया?
3: देखिए रक्त दोष के साथ साथ वायु विकार और पित्त प्रकोप है, किंतु चिंता की कोई बात नहीं। असाध से असाध रोग भी कविराज मूढ़ानंद के चंगुल से बचकर नहीं जा सकता।
1: तो जल्दी कोई इलाज बताइए।
3: मतलब आप निश्चिंत रहें, मैं रोगिणी का कायाकल्प कर दूंगा।
2: और आपकी जेब का भी कायाकल्प हो जाएगा सर जी। कविराज मूढ़ानंद ठगानंद के नाम से मशहूर है।
3: और अपनी भी तो कहो सेठ जी, डॉक्टर बोगसचंद के चक्कर में फंसकर आज तक कोई रोगी जीवित नहीं बचा।
4: हाँ सेठ जी, हम डॉक्टर साहब और कविराज दोनों वजह फरमाते हैं। दोनों ही जहीर और ठग हैं।
3: हाँ बिल्कुल ठीक।
4: अरे खानदानी हकीम का जनाब सिर्फ मैं हूँ, खानदानी हकीम जी। हाँ ये देखिए।

0: ये लीजिए एक पुड़िया सोंट की, फौरन गर्म पानी के साथ खा लीजिए, पलक झपकते ही मर्द काफूर हो जाएगा।
1: मगर अकील साहब,
0: हाँ जी
1: मरीज मैं नहीं, मेरी बेटी है।
2: तो क्या हुआ, एक बार हकीम साहब ने गधे को दवा खिलाकर धोबी का मर्ज दूर कर दिया,
3: और धोबी ने प्रसन्न होकर वो गधा इन्हें पुरस्कार में दे दिया,
2: और उसी पर सवार होकर आजकल हकीम साहब दूर दूर तक मरीजों को
3: देखने जाते हैं।
1: सुनिए तो मेरी बात, आप लोगों की नोक झोंक मेरे लिए बहुत महंगी साबित हो रही है, मेहरबानी करके ये लीजिए अपनी फीस, और आप भी लीजिए अपनी फीस,
2: और
1: तशरीफ ले जाइए
4: के लिए दवा,
1: से पाला पड़ा।
5: चाचा जी क्या बताया उन लोगों ने?
1: अरे वे लोग गधे थे दुलारी,
5: मैं तो पहले कह रही थी
1: लगता है मेरी रूपा को मर्द कोई दूर कर नहीं पाएगा।
5: चाचा जी आप कहें तो मैं एक डॉक्टर को ले आऊं।
1: बेटी तू भी चलाएगी,
5: एक नया डॉक्टर आया है, उसके हाथ में बहुत यश है, भगवान ने चाहा तो उसका हाथ लगते ही रूपा ठीक हो जाएगी।
1: अरे तो जाना, जब मेरा मुख पास नहीं है जाकर जल्दी से बुला ला, और देख बेटी फीस पहले से तय कर लेना, नहीं तो बाद में
5: मैं सब पक्का कर
1: लूंगा।
5: अभी गई और अभी आई,
1: अच्छा जल्दी जल्दी जल्दी रूपा को भी इसी वक्त बीमार होना था। अरे भगवान सैकड़ों रुपया पर पानी फिर जाएगा, न जाने कौन से जन्म का बैर निकाल रही है।
4: डॉक्टर बोगस सर ने बताया कि तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है।
1: हाँ भाई बेहोश पड़ी है।
4: अरे भाई डॉक्टरों के चक्कर में पड़कर क्यों रुपए बर्बाद कर रहे हो, मेरी बात मानो, पल भर में रूपा को होश आ जाएगा।
1: क्या करूं बताओ बताओ तुम्हें बताओ ना।
4: उसके कान में धीरे से कहो, बेटी देख तेरे लिए सुंदर सुंदर साड़ियां और जेवर लाया हूँ, बस वो आंखें खोल देगी, क्योंकि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है।
1: अपनी बकवास बंद करो उदास चंद्रा, मैं जानता हूँ तुम क्यों बार बार साड़ियों और जेवरों का जिक्र कर रहे हो।
4: अरे भाई मेरा भला क्या स्वार्थ हो सकता है इसमें, मैं तो
1: तुम साड़ियों और जेवरों का धंधा करते हो नहीं, बोलो करते हो नहीं,
4: तो हूँ
1: तो अपनी दुकान का रहतिया माल मुझे बनाना चाहते हो, मगर कान खोल कर सुन लो उधार चंद।
4: हाँ, बोलो।
1: मेरा नाम भी कृपण चंद है। हाँ, मैं तुम्हारी बात में फंसने वाला नहीं हूँ।
4: लेकिन मेरी बात तो सुनो।
1: कुछ नहीं सुनूंगा, तुम दोस्त नहीं दुश्मन हो, तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बेटी है जो बिना स्वार्थ के दौड़ धूप कर रही है, चले जाओ यहाँ जाओ।
4: ठीक है अब मुझे क्या रहा?
1: हाँ हाँ जाओ जाओ दूर कहीं का, मुझे उल्लू बनाने आया था। अरे बाप रे आया आया आया आया, अभी तक दुलारी नहीं आई, देखो देखो देखो रूपा का क्या हाल है, देखो
5: चले आइए प्रेम बाबू, चाचा जी अंदर हैं।
6: मैं एकदम डॉक्टर लग रहा हूँ ना,
5: मगर जरा सोच समझ कर बात करिएगा, चाचा जी बड़े काइयां हैं, कहीं पोल खुल गई तो आपका पत्ता तो गोल होगा ही, मेरी भी खैर नहीं रहेगी।
6: मेरी एक्टिंग देखकर तुम तंग रह जाओगी, लेकिन अगर रूपा ने गड़बड़ी कर दी तो।
5: रूपा को मैंने सब कुछ समझा दिया है, बस आप चाचा जी को किसी तरह की शक न होने दें, बस
6: फिक्र ना करो तुम, मैं बेटी के साथ साथ बाप का भी इलाज करती हूं।
1: अरे अरे बेटी दुलारी दुलारी रूपा की हालत
5: अब ठीक हो जाएगी चाचा जी, डॉक्टर साहब आ गए हैं।
1: अरे ये डॉक्टर है
5: क्यों?
1: एकदम छोकरा
2: श्रीमान जी।
1: ये क्या इलाज करेगा?
2: आप मुझे मामूली डॉक्टर ना समझें।
1: अच्छा?
2: मैं मनोचिकित्सक हूँ।
1: ये क्या बला है जी?
2: ना मैं सुई लगाता हूँ और ना मिक्सचर देता हूँ, ना नब्ज देखता हूँ और ना आला लगाता
1: हूँ। कैसे इलाज करते हो जी तुम?
2: जी चेहरा देखकर। श्रीमान जी मैं आपका चेहरा देखकर आपकी बेटी का मर्ज बता सकता हूँ।
1: अच्छा
2: जी हाँ।
1: चौबे की दुलारी ये चाचा?
5: हाँ चाचा जी, इन्होंने मेरी मौसी की ननद की सास की छोटी लड़की का इलाज इसी तरह किया था। अरे चाचा जी इनके हाथ में जादू है जादू।
1: तब तो मेरी बेटी जरूर ठीक हो जाएगी। चल कर उसे देख ली जाएगी।
2: मैं मरीज के पास नहीं जाता श्रीमान जी।
5: मगर वो तो बेहोश है।
2: जी हाँ है नहीं थी। मैं पिता का चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि पुत्री को होश आ गया है, जाकर मरीजा को ले आओ।
5: अभी लाई अभी लाई।

0: कमाल है, वाह वाह वाह वाह, आप तो डॉक्टर नहीं जादूगर है।
1: जी नहीं, भगवान का दास हूँ, उसी की कृपा से कुछ सिद्धियां मिल गई हैं। देखिए आपकी बेटी आ रही है।
0: मगर डॉक्टर साहब
1: जी,
0: चेहरा अभी भी पीला है। आया आया, कितनी दुर्बल हो गई है, देखिए ऐसे बिल्कुल ठीक से चल नहीं पाती।
1: सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप मुझ पर विश्वास रखिए।
2: लीजिए, मरीज आ गई।
1: ठीक है, मुझे इनसे बातें करने दीजिए। अब आप लोग
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, मेरे सामने ही बातें करो।
2: मगर चाचा जी, ये ठीक नहीं है, आपके सामने रूपा खुलकर बातें नहीं कर पाएगी।
0: लेकिन मैं अपनी बेटी को जवान डॉक्टर के पास अकेले नहीं छोड़ सकता।
1: डॉक्टर पर अविश्वास नहीं करना चाहिए श्रीमान जी।
0: श्रीमान जी, विश्वास तो मैंने कभी अपने बाप पर भी नहीं किया।
2: आइए हम लोग उस कोने में चलें, रूपा आपकी आंखों के सामने रहेगी।
0: आइए, ठीक है, जाओ डॉक्टर जाओ। देखो
1: मैं आ गया।
0: दुलारी,
2: मेरी आंखें
0: डॉक्टर क्या रहा है।
2: अरे चाचा जी, रूपा से मर्ज की बातें पूछ रहे हैं।
0: अरे मगर वो तो एकदम सच कर खड़ा है।
2: तो क्या हुआ चाचा जी, रूपा की आंखें देख रहे हैं, जुबान देख रहे हैं, डॉक्टर को सब कुछ देखना पड़ता है ना।
0: डॉक्टर साहब
1: जी,
0: डॉक्टर साहब कुछ पता चला?
1: मैंने इलाज शुरू कर दिया है।
0: अच्छा अच्छा,
1: आपको फर्क नहीं नजर आ रहा?
0: जी हाँ, पहले से तो ठीक लग रही है, चेहरे पर मुस्कान और ताजगी भी आ गई है। दुलारी बेटी, रूपा फोन कर ले जा, जाने ले जा।
1: देखिए, दिमाग का असर जिस्म पर पड़ता है।
0: अच्छा
1: जी हाँ
0: जी,
1: अगर मन प्रसन्न है तो तन चंगा है, और मन में चिंता हुई कि शरीर को घुन लग जाता है। इसलिए मैं शरीर के रोग का निदान मानसिक स्थिति के आधार पर करता हूँ।
0: तो क्या मेरी बेटी का दिमाग खराब है?
1: जी हाँ
0: जी,
1: मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इनके दिमाग में शादी करने का
0: भूत है। शादी?
1: मैं गलत कह रहा हूँ?
2: जी नहीं प्रेम बाबू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर चाचा जी शादी के खिलाफ हैं।
0: बिल्कुल
1: होना ही चाहिए, शादी बर्बादी का मूल है।
0: क्या बात है, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी।
1: देखिए ना
0: जी,
1: मैं इसीलिए अब तक कुआ रहा हूँ।
0: क्यों नहीं?
2: तब फिर इसका इलाज क्या है, क्या रूपा ठीक नहीं होगी?
0: डॉक्टर, क्या मेरी बेटी हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी?
1: जी नहीं
0: जी,
1: इसका भी अचूक इलाज है।
0: जल्दी बताइए, जल्दी बताइए।
1: इनके दिमाग में जो गांठ लग गई है उसे खोलना पड़ेगा।
0: अरे अच्छा,
1: रोगी को प्रसन्न करने के लिए ये जरूरी है कि उसकी इच्छा पूरी कर दे।
0: क्या मतलब कि इसकी हम शादी कर दें?
1: जी नहीं जी नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे, शादी करने की जरूरत नहीं है।
0: फिर क्या करें बताइए।
1: देखिए, शादी करने का नाटक तो करना ही पड़ेगा।
0: नाटक?
1: जी हाँ, मेरा मतलब है रोग को जड़ से उखाड़ने के लिए ये जरूरी है कि मरीजा को ये यकीन हो जाए कि उसकी शादी की जा रही है।
0: आपका मतलब है कि?
1: हाँ हाँ, नकली शादी कीजिए, शादी का ढोंग रचाइए।
0: मगर डॉक्टर, ये कैसे मुमकिन है?
2: इसमें कठिनाई क्या है चाचा जी, नाटक ही तो करना है।
0: अरे बेटी, मगर नाटक के लिए नायक भी तो चाहिए। दूल्हा कौन बनेगा? बोलो, दूल्हा कौन बनेगा?
1: हाँ, ये समस्या।
0: वही वही ना बात।
2: डॉक्टर साहब
1: जी,
2: आप चाहें तो समस्या हल हो सकती है।
1: वो कैसे?
2: आप ही दूल्हा बन जाइए। बोलिए चाचा जी, क्या राय है आपकी?
0: हो तो सकता है, लेकिन
2: लेकिन लेकिन छोड़िए चाचा जी, जो करना है जल्दी कीजिए, रूपा अंदर पहुँच कर फिर शिथिल पड़ गई है।
1: देखिए, इलाज फौरन होना चाहिए, नहीं तो मरीजा हमेशा के लिए पागल हो जाएगी, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे ठीक नहीं कर सकती।
2: डॉक्टर साहब, आप कृपा करके हमारी विनती मान ले, दूल्हा बनकर शादी का नाटक रचा दे, मैं भी रूपा को लाती
0: हूँ। बचाइए डॉक्टर, मेरी बेटी को बचाइए डॉक्टर, जैसे भी हो बचा लीजिए। डॉक्टर, आप चाहेंगे तो दूल्हा बनने की फीस अलग से दे दूंगा।
1: ठीक है, इंसानियत के नाते मैं अपना कर्तव्य पूरा करूं।
0: गुड गुड,
1: रोगी का उपचार करना डॉक्टर का परम पुनीत कर्तव्य।
0: सही सही, बिल्कुल सही।
1: नाटक सुखांत हो, मैं यही कोशिश करूंगा।
2: रूपा आ गई चाचा जी।
0: बहुत अच्छी बेटी, इतना जवान पसंद है, मैंने तुम्हारी शादी इसके साथ करने को।
2: क्या सच है पिताजी?
0: हाँ हाँ, पसंद है।

0: तो आप शादी के लिए सहमति दे रहे हैं?
1: सच्चे दिल से बेटी, बेटी की खुशी में तो बाप की खुशी है।
0: मैं भी पंडित जी को बुलाकर लाती हूँ।
1: अरे सुन तो, अरे सुन तो दुलारी, अरे पंडित जी की क्या जरूरत है, ये तो नाटक है नाटक।
0: मगर नाटक भी सही ढंग से होना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब के कंपाउंडर को पंडित बनाकर ले आती हूँ।
1: अच्छा ठीक है जाओ, जाओ। बेटी बेटी अब तो तुम अपने पिता से नाराज नहीं होना।
0: नहीं लेकिन
1: बेटी ला तो अपना हाथ। ऐसे हाँ, और भाई तुम भी हाथ।
2: लेकिन वो
1: नाटक अच्छा जा रहा है, शर्माती क्यों? ला बेटी हाथ। हाँ ए चिनो, अपने हाथ से मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया।
0: हाथ छोड़ना मत, इसी तरह पकड़े रहो, पंडित जी भी आ गए हैं।
3: वाह जजमान वाह, अरे बिना पंडित लठानंद के ब्याह कैसे हो सकता है?
1: ये तो ठीक है
3: जजमान, तो मैं कराऊंगा ब्याह।
1: लेकिन पंडित जी, अरे ये तो नाटक है।
3: अरे नाटक तो सारी सृष्टि में हो रहा है जो है जजमान है। कहाँ है ये संसार जो है, ये रंगशाला है जिसमें हम आप सब अभिनेता हैं। तो जजमान वर वधु का हाथ आपने ही मिलवाया था ना?
1: जी हाँ बिल्कुल।
3: तब ठीक है, तब ठीक है। तो बच्चा लोग अब तुम जरा इसके आसपास फेरे लगा लो जो है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजम, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनो हरी। समझ लो यजमान, भावरे भी पड़ गई है। सदाशिव भाग्यवती रहो, सदाशिव भाग्यवती रहो। हाँ यजमान अब सुनिए यजमान, अब आप कन्या और वर को आशीर्वाद दे दें जो है, और कहें कि ये जोड़ी जुग जुग बनी रहे।
1: पंडित जी मेरी बात तो।
0: चाचा जी आशीर्वाद में कंजूसी कैसी, दीजिए ना, नाटक पक्का होना चाहिए।
1: पक्का होना चाहिए बिल्कुल, मैं आशीर्वाद देता हूँ। बोली ये जोड़ी
4: चल भाई वाह, यानी कि चट मंगनी और पट ब्याह भी कर दिया तुमने। अरे और हमें खबर भी नहीं भेजी, मैं अभी जाकर साड़ियाँ और जेवर।
1: अरे उसकी जरूरत नहीं है भैया, बैठो तुम बैठो।
3: अच्छा अच्छा जी भैया बोले तो अब हमारी रक्षणा तो मेरे जाए जो बैठो।
1: कैसी रक्षणा, ये शादी तो
0: दे दीजिए दक्षिणा चाचा जी, पंडित जी ने कैसे ढंग से ब्याह कराया है।
1: लीजिए और यहाँ तो खिला दिया, चलिए
3: जजमान की। आए ये क्या, केवल बीस आने पैसे जो। अरे राम राम जब जजमान, एकदम पक्की शादी कराई है, कम से कम सवा पांच रुपए तो दीजिए।
1: मैं अब एक कानी कौड़ी नहीं दूंगा, ये समझ लीजिए, और लेना हो तो लो, नहीं तो उसे भी लौटा।
3: अरे अरे तुम नाराज क्या होते हैं जजमान, मैं जाता हूँ।
1: श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे हरे।
5: अब हमें भी आज्ञा दीजिए, चलो रुको।
1: अरे तुम लोग कहाँ जाओगे भाई? पापा पापा पापा।
0: शादी के बाद लड़की ससुराल जाती है पिताजी, वहीं जा रहे हैं।
1: ये क्या मजाक है? भाई उधर जा, देखा तुमने, देखा कल की छोकरी हमें बना रही है।
4: अरे इसमें बनाने की क्या बात है? अरे भाई जब शादी तुमने कर ही दी है किरमन चंद, तो उसे विदा भी कर दो।
1: कैसी शादी, कैसी विदा? अरे उधर चंद उधर चंद, तुम नहीं समझते भाई, तुम नहीं समझते। अरे ये शादी तो सिर्फ मेरा मतलब है कि वो इलाज के लिए शादी का नाटक किया गया था। देखते नहीं, देखो देखो मेरी बेटी की तबीयत एकदम ठीक हो गई।
4: इलाज नाटक भाई, ये सब क्या चक्कर है? यानी कि
5: अब हमें क्या मालूम, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम दोनों वर्षों से एक दूसरे को प्यार करते हैं। आज पहली बार मैं इनसे मिला और मैंने रूपा से शादी करने की इच्छा व्यक्त की। इन्होंने कृपा करके अपनी सहमति दे दी और हमारा ब्याह हो गया। चलो रूपा।
1: अरे अरे अरे रुको, अरे रुको।

0: हाँ भैया कृपण चंद गए तो जाने तो क्या हुआ
1: उदार चंद के पकवा ये बिल्कुल पकवा थे उदार चंद ये डॉक्टर था डॉक्टर मेरी लड़की को ले भागा मेरी लड़की को ले भागा उदार चंद मुझसे कहने लगा कि नए ढंग से इलाज करूंगा तुम्हारी से पूछ
0: लू तुम्हारी क्या बात है
2: कुछ नहीं पिताजी रूपा प्रेम बाबू को चाहती है
0: ठीक है
2: मगर चाचा जी शादी करने को तैयार नहीं
1: बिल्कुल
2: इसीलिए हमें बीमारी और इलाज का नाटक करना
0: नाटक
3: भाई कृपण चंद आज बच्चा तुम अपने ही जाल में फंस गए
0: भगवान अरे ये क्या हो गया मैं तो समझता था शादी का ढोंग पुराने मर्ज का नया इलाज है मेरी बेटी के साथ साथ मेरी दौलत पर भी प्रेम का अधिकार होगा अरे अरे भाई उधार चल
3: हाँ कृपण चल
0: अरे तुम आ लो
3: हो गया
0: अरे चक्कर हाँ
3: चक्कर चक्कर
0: अरे नहीं अरे चक्कर अरे चक्कर
4: पुराना मर्ज नया इलाज ये नाटक अभी आप सुन रहे थे मूल लेखक मोलियर रूपांतरण एवं निर्देशन विनोद रस्तोगी ये आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: ये है
1: के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों से बातचीत कर उनकी मांगे मानने की अपील की है। आज एक प्रेस वार्ता में छात्रों ने कहा कि वे पुतला दहन या मुख्यमंत्री आवास का घेराव नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि छात्र अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से जल्द बातचीत चाहते हैं। छात्रों ने कहा कि मांगे मान लिए जाने पर छात्र आंदोलन समाप्त कर पढ़ाई पर लौटना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ जिले की इलामी पंचायत में डीएमएफटी मद से बनी पीसीसी सड़क और गार्डवाल निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। श्री मरांडी ने जांच में दोषी पाए जाने वाले संवेदक और कार्यकारी एजेंसी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल षडंगी ने केंद्र सरकार पर खनिज राजस्व से जुड़े राज्य के अधिकारों को सीमित करने का आरोप लगाया है। षडंगी ने चेतावनी दी कि मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन को जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर तक ले जाया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुआ स्थित खदान में एक अधिकारी की अचानक मौत के बाद मजदूरों ने आश्रित को नौकरी और उचित मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया है। आंदोलन के कारण बीती रात से खदान क्षेत्र की बस सेवा बाधित है और लौह अयस्क का उत्पादन प्रभावित हुआ है। 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 में हॉकी झारखंड ने शानदार शुरुआत करते हुए अपने पहले मैच में हॉकी चंडीगढ़ को 6-0 से हराया। पुणे में खेले गए इस मुकाबले में झारखंड की ओर से पुष्पा डांग ने 2 गोल किए, जबकि एस्थेर होरो, सरोज मुंडरी, जमुना कुमारी और संगीता कुमारी ने 1-1 गोल दागा और कप्तान रजनी केरकट्टा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: नाटक के अलावा कभी कभी बीच में सिनेमा एक माध्यम था, नाटक एक था और दूरदर्शन की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब से आकाशवाणी में आना जाना रहा है और वही एक जो संस्कार है, चाहे वो छोटे छोटे जो

0: कार्यक्रम हुआ करते थे, सुबह की धुन से उठना होता था और वो अभी भी कान में गूंजती हैं। तो आकाशवाणी का जो रिश्ता है वो मुझे लगता है कि बड़ा नॉस्टैल्जिक रिश्ता है। तो यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद कुछ बिना कैमरा
1: जी जी जी
0: कुछ रिकॉर्डिंग करेंगे, कुछ बातचीत होगी, इसलिए बड़ा आनंद आ रहा है।
1: जी, आप एक ऐसे गांव से आते हैं, वहाँ आपके बचपन में तब क्या रेडियो था?
0: रेडियो था, मैं जब छोटा था तब रेडियो था, पर ऐसा था कि गांव में सिग्नल्स नहीं आते थे। पर जैसे चौथी क्लास के बाद में, पांचवी क्लास में, थोड़ा सा गांव छोड़ के, बिल्कुल छोटा सा जो देहात है उसको छोड़ के एक जिला परिषद के स्कूल में आया। उस गांव का नाम था नेकनूर।
1: जी, सुंदर नाम है।
0: हाँ, तो तब वो कहीं ना कहीं एक रेडियो भी बजता है पानपट्टी पे खासकर।
1: अच्छा, हाँ, क्या बात है, क्या बात है।
0: और बहुत मशहूर प्रोग्राम तो था बीना का गीतमाला, तो वो तो बिल्कुल दिल हाथ में पकड़कर सुनते थे।
1: वाह।
0: और वो एक रेडियो होता था और उसके इर्द गिर्द 200-300 लोग बैठ के सुनते थे। तो ये सारी जो स्मृतियां हैं अभी भी आकाशवाणी की। और ऐसा लगा था कि ये माध्यम खत्म होगा टेलीविजन के आने की वजह से, इतने चैनल खुलने की वजह से, पर क्योंकि ये भी एक माध्यम है, एक शक्ति है, व्यक्त होने की शैली है, तो ये तो मालूम था कि खत्म नहीं होगा। फिर वो सारे रेडियो मिर्ची और सारे जितने भी चैनल वापस आ गए। और जब आप कैमरे के सामने नहीं होते हो, आप जर्नी में हो, कहीं टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हो, कार में जा रहे हो, घर में हो, तो वो फिर दोबारा उसकी शक्ति जो है लोगों को पता चली, जिसको हम वाचिक अभिनय की शक्ति कहते हैं।
1: वाह।
0: तो मूल गांव में जहां मैं रहता हूं या मेरी फैमिली रहती है, वो वैसा ही है, पतरे के घर है, मिट्टी की दीवारें हैं, पहले तो झोपड़ियां होती थी, उसी में रहता था, मेरा बचपन तो उसी में गया।
1: तो पिता काश्तकार थे?
0: पिता मेरे, हाँ, किसान थे, तो इसीलिए वो जो संस्कार है वो किसानी के या खेती के हैं या उस माहौल के हैं। तो ऐसा ही गांव है अभी भी, मुझे लगता है कि एक 8-10 साल पहले एक सड़क जैसे तैसे गांव तक पहुंची है।
1: जी जी।
0: तो इसीलिए वो अभी भी घर तक बहुत सीधे तरीके से हम पहुंच नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो काली मिट्टी वाला एरिया है।
1: जी जी।
0: मतलब आप खोदते जाओ जमीन में तो 8-10 फीट कोई पत्थर नहीं दिखता, मिट्टी ही मिट्टी है।
1: जी जी।
0: तो इसलिए बरसात में बहुत ज्यादा तकलीफ वाला है कि पैर फंसते रहते, आप एक पैर फंसाओ और दूसरा निकाल के आगे डालो, फिर पहला निकालो फिर दूसरा, इस तरीके से। वो जब हम स्कूल में भी जाते थे बगल वाले गांव में, मेरे गांव में एक शिक्षक की स्कूल था।
1: जी।
0: उस स्कूल को कोई बिल्डिंग भी नहीं थी।
1: मैंने सुना है पेड़ के नीचे पढ़ते थे।
0: यस। तो जो हनुमान का एक मंदिर था और वो बहुत पुराना पत्थर वाला, वो पत्थर भी वो क्या कहते हैं, बहुत तराशे हुए पत्थर नहीं होते थे, ऐसे ही हनुमान मंदिर के दीवार को लगाए और उसके सामने एक चबूतरा बनाया था ताकि लोग आके बैठे, और बहुत बड़ा इमली के पेड़ था उसके ऊपर, मतलब कई सैकड़ों साल पुराना। तो उसके नीचे उस चबूतरे पे हमारी स्कूल शुरू होती थी, और जब बारिश आती थी तो बगल में एक चावड़ी बोलते हैं मराठी में,
1: जी जी,
0: एक धर्मशाला टाइप थोड़ा सा एक पाइस पतरे की शेड था।
1: हाँ।
0: तो उसको दरवाजे नहीं होते थे, तो जो गांव की गायें हैं, भैंसे हैं, बकरियां हैं, वो घुस जाते थे रात भर वहां, और फिर हमको सबको उसको हकाल के बाहर निकालते, सुबह 8-9 बजे स्कूल जब जाते थे तो वो सारा गोबर ये सब
1: साफ कर रहे,
0: साफ करके उसके बाद बरसात पतरे के नीचे भरती थी। तो ऐसा था हमारा स्कूलिंग।
1: जी।
0: जिसको
1: तो यहाँ शिक्षा की असली ताकत समझ में
0: आती, मेरे समझ में आता है कि हम अब आज की तारीख में इतना स्कूल के बारे में सजग है, अवेयर है, पर पढ़ना हो तो आदमी कहीं भी पढ़ सकता है। मैं अपने अनुभव से तो कह ही सकता हूँ कि जिला परिषद का स्कूल है, एक शिक्षक आता था, वो बीच में एक नदी थी, बाढ़ आ गई तो शिक्षक उधर है, हम नदी के इस किनारे, शिक्षक उस किनारे, तो कुछ कम्युनिकेशन नहीं होता था, तो स्कूल नहीं होता था। पर बहुत अच्छे शिक्षक, एक जो शिक्षक आके गांव में रहे, उन्होंने शिक्षण का वातावरण बनाया। अब उनका मुझे नाम भी और सरनेम भी याद नहीं है, इतना पुरानी बातें हैं, पर एक शिक्षक जब आपके जीवन में आता है तो इंस्पायर करता है। कहीं भी पढ़िए, मुझे लगता है बिल्डिंग से शिक्षण नहीं होता है, पढ़ाने वाले से शिक्षण होता है और पढ़ने वाले से शिक्षण होता है। इसलिए ऐसे छोटे से गांव में जहां कोई खेल का माहौल नहीं है, जहां कुछ नहीं है, पर एक बहुत अच्छी चीज थी कि किसान के घर में पैदा होने की वजह, एक तो खेती की वजह से एग्रीकल्चरल बेस है मेरे जीवन का, तो इसीलिए कौन से पौधे को क्या कहते हैं, कौन से पौधे

0: देखो क्या फल आते हैं, ये सारा का सारा जो ज्ञान है उस समय हुआ। फिर जानवर पंछी ये सारा का सारा माहौल हो मेरे संस्कार का एक्सपोजर का हिस्सा है। दूसरी सबसे बढ़िया बात ये हुई कि जो हमारा फोक कल्चर है, लोक कलाएं जो हैं, वो किसान के घर के सामने जाए बिना, आंगन में जाए बिना उनकी रोजी रोटी नहीं चलती है
1: जी।
0: वो सुबह 4 बजे आने वाला जो कुड़मुड़िया बोलते हैं, 4 बजे आता है, 6 बजे वासुदेव आता है, फिर गोसावी आते हैं, डवरी आते हैं, गोंधली आते हैं, ये आता है, वो आता है। तो ऐसे सारे जितने भी कल्चर को कैरी करने वाले मुसाफिर है या थे, वो किसान के आंगन में आके वो नाच गाना जो भी है उसका भिक्षा मांग कर वो अपना चरितार्थ चलाते हैं। तो हमारा सारा कल्चर जो है भारतीय वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है,
1: बिल्कुल
0: वर्तूर से चलता है। किस समय दिवाली आएगी, किस समय पंचमी आएगी, कब होली आएगी, कब फलाना आएगा, ये एग्रीकल्चर में जब किसान को कब फुर्सत होती है उससे वो कैलेंडर बंधा हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: तो उसका फायदा ये हुआ कि वहाँ कीर्तन है, भजन है, भारूड है। एक मेरे घर में ही था
1: जी,
0: मेरे एक चाचा तो कीर्तनकार थे और पिताजी को भजन और भारूड बहुत अच्छा लगता था। उनका मेन व्यवसाय तो ये था,
1: खेती
0: था, पर वो अपने आनंद के लिए ये सारा करते थे। कभी भजन गाते थे एकादशी के दिन, कभी कहीं बगल के गांव में भंडारा लगा तो वहां बुलाते थे इन गांव वालों को, वहां जाके वो भारूड इनेक्ट करते थे, संतों की कविताएं। तो गाते भी थे, नाचते भी थे और इनेक्टमेंट भी था। तो ये टोटल मुझे लगा कि मेरे गांव में पैदा होने का जो बड़ा मेरे जीवन में है, मेरे सोच में है, वो इसीलिए कि ये सारा मुझे मुफ्त में मिला। ये संस्कार, लोक कलाएं, लोक संगीत है, लोक नृत्य है, चाहे तमाशा है, चाहे कीर्तन, जो भी है, मतलब ये मनोरंजन से प्रबोधन तक की जितनी भी लोक कलाएं हैं वो मुझे घर में बैठे बैठे देखने को मिली, उसकी अनुभूति मिली, उनका संस्कार मिला। तो ये छोटा गांव जो है वो मेरे जीवन का अहम हिस्सा है और इसीलिए मुझे मालूम है उस गांव का योगदान मेरे अपब्रिंगिंग में, मेरे करियर में क्या है। इसलिए मैं अभी भी गांव से जुड़ा हुआ हूं। मेरी माताजी गांव में रहती हैं, मेरे भाई, मेरे चाचा जी सारे गांव में रहते हैं। यहां कुछ लोग हैं, कहीं और जगह पे बिखरी हुई फैमिली है, लेकिन उस गांव से मेरा रिश्ता अभी भी कायम है।
1: क्या बात है, गांव और पढ़ाई लिखाई और ये सारी बातें हो रही है तो यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं। मुझे लगता है यहाँ ये गाना ठीक रहेगा, लिखोगे पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। ये गाना सुनते हैं।
0: यस।

0: बाज से क्या होता है?
1: बंदर।
2: बादुर।
0: बनने के बाद

0: होता है?
1: पीटर
0: जगदीश,

0: वामन केंद्र जी, सुंदर बात आपने कही कि एक पूरी लोक कलाएं किसान के घर उसके द्वार तक आती हैं और जो खेती का एक पूरा चक्र है उसके आधार पर हमारे त्योहार बंधे हुए हैं, कैलेंडर बंधा हुआ है और उस तरह से जीवन चलता है, उस तरह से पर्व और उत्सव चलते हैं और वो हमारे जीवन का हिस्सा है और कलाएं उसमें अंतर्निहित है। भारूड़ आपके बचपन और आपके संस्कारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। आपने बताया पिताजी को भी बहुत ज्यादा वो लुभाता था, उससे जुड़ी यादें बांटिए।
1: नहीं, मुझे लग रहा है कि भारूड़ एक ऐसी कला है जो संतों ने जो कविताएं लिखी है, जो कविताएं ऐसी कविताएं जिनका इनैक्टमेंट भी हो सकता है, ऐसी कविताओं को भारूड़ कहते हैं। बहुरूढ़
0: जी,
1: जो लोगों में रूढ़ है, प्रसिद्ध है, ऐसी कविताओं का उसमें गाना भी है
0: जी,
1: नृत्य भी है और उसके बाद इनएक्टमेंट भी है। तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि उसको एक आधे आधे घंटे का एक भारूढ़ के ऊपर इनएक्टमेंट, आधा घंटा पौना घंटा जितनी कैपेसिटी है, क्योंकि होता तो सारा इम्प्रोवाइजेशन है वहां। हाँ, कोई स्क्रिप्ट तो लिखा होता नहीं है। स्क्रिप्ट तो जो है वो संत एकनाथ ने लिखे भारूढ़ है, जनाबाई ने लिखे भारूढ़ है, तुकाराम जी ने लिखे भारूढ़ है, ज्ञानेश्वर ने लिखे कुछ भारूढ़ है। तो ऐसे जितने भी ये संत परंपरा है महाराष्ट्र की, मुझे लगता है उनकी कविताओं का एक तरीके से स अभिनय सादरीकरण है ये
0: जी।
1: तो वो और बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होता है, उसमें ह्यूमर भी है, उसमें मस्ती भी है, नाचने नचवाने वाला रिदम भी है, ताल भी है, लय भी है, सामाजिक जागृति भी है और प्रबोधन भी है। तो इसीलिए वो फॉर्म बहुत, और वो कंटेम्प्रेरी है, उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है। मतलब इतना लचीला भी है वो, क्योंकि वो जो किसान है या मजदूर है या जो भी इनैक्ट कर रहा है वही, और उसमें इनफॉर्मेलिटी बहुत है, मतलब कोई औपचारिकता नहीं है। मतलब एक बड़ी बड़ी मूंछ वाला आदमी औरत का काम कर रहा है,
0: okay.
1: मान लीजिए, और चारों तरफ ऑडियंस बैठी हुई है, हस्बैंड और वाइफ के बीच का झगड़ा हो रहा है यहाँ पर, जो गीत से भी हो रहा है और गीत के बाद एक्चुअल संवाद में भी आ रहा है। तो औरत बनने के लिए क्या आवश्यक है, तो एक पल्लू चाहिए, तो किसी के किसी ने ओढ़ी हुई शॉल है उसको खींच लिया, कमर में जो धोती पहना हुआ है उसने अपने कमर में एक उसका सिरा जो है खोच लिया और ऊपर से पल्लू, सर के ऊपर से पल्लू लगा लिया और एक बिंदी लगा ली या कुमकुम लगाते थे, हो गया वो औरत।
0: वाह,
1: बड़ी बड़ी मूछ है, इतनी लंबी दाढ़ी है, फिर भी उसको औरत मानते थे लोग।
0: यस,
1: और जो दूल्हा है वो गांव का है तो वो कोई लकड़ी ले ली है, लाठी ले ली है और कोई एक पगड़ी बांध ली कि हो गया वो दूल्हा। तो और वो दोनों के बीच में कभी गाते हैं, कभी संवाद प्रस्थापित हो रहा है, ह्यूमर हो रहा है, हजारों की तादाद में लोग आ गए, वो लोटपोट हो रहे हैं और उसमें से प्रबोधन तक पहुंच रही है बातें।
0: क्या बात,
1: मनोरंजन के द्वारा प्रबोधन तक पहुंचाना, जीवन के किसी एक वृत्ति प्रवृत्ति के सामने उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना और हंसाते गुदगुदाते हुए ये सब करने वाला फॉर्म है, इसलिए कोई भी आदमी उसकी तरफ आकर्षित होगा। मेरे पिताजी को कई सैकड़ों भारूड याद थे और वो परफॉर्म भी करते थे, वो कोई उनका व्यवसाय नहीं, अपने आनंद के लिए परफॉर्म करते थे। जो मेरा गांव है दरडवाड़ी, वहां की भारूड मंडली बहुत फेमस थी, तो वो पंचक्रोशी जो है वहां 150 गांवों में कहीं भी ये भंडारा होता था तो भारूड मंडलियों को हर गांव के बुलाया जाता था, न्योता दिया जाता था। तो वो न्योते में ये जब जाते थे तो पूरा हंगामा करके आते थे। वहां एक तरीके का आपने एक भारूड गाया, सवाल जवाब जैसे होते हैं कुछ। हाँ, मनोरंजन की लोक कलाओं में ऐसे भारूड के द्वारा एक दूसरे को तू हारेगा क्या मैं जीतूंगा, या मैं जीतूंगा कि आप हारोगे,
0: कव्वालियों के
1: जैसे कव्वालियों के

0: मुकाबले में भी होता है, तो ये सुबह जब सूरज उदय होता था तब तक चलता था।
1: ओहो हो, पूरी रात?
0: पूरी रात, और पूरा एक उस गांव के जो भंडारे में 4-5 हजार तो लोग आते ही आते थे। तो ये मुझे लग रहा कि इस फॉर्म ने मुझे बहुत आकर्षित किया और वो आज भी मेरे आकर्षण का केंद्र वैसे ही है।
1: बचपन में याद हो गए थे भारूड?
0: बहुत सारी भारूड मैंने प्रस्तुतियां कभी नहीं की। आई वॉज साइलेंट एडमायरर और साइलेंट ऑडियंस।
1: अरे वाह,
0: तब मुझे नहीं मालूम था कि मैं इस क्षेत्र में आऊंगा और कुछ हो जाएगा। ये तो मेरे ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगा कि अब उधर जाना चाहिए। जो मेरे अंदर का संस्कारित कलाकार है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, वो कहीं ना कहीं उछल मार रहा था या वो कुछ उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था। तो वो बारूद वाले तो बहुत सारी चीजें हैं।
1: बिल्कुल, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: लेकिन कठिन थी पढ़ाई, आपने जैसा कि बताया अपने गांव से दूर जाके
1: माहौल नहीं था, पढ़ने का माहौल नहीं था जो मेरे साथी थे। जैसे अब नेकनूर से सातवीं तक पढ़ लिया मैंने
0: जी,
1: और फिर आठवीं से आगे मेरे चाचा के साथ मैं रहता था, एक रूम किराया करके नेकनूर गांव में, एक रूम में तीन चार बच्चे अपना उसको किराए से लेते थे, उसी में

0: चूल्हा, उसी में ईंधन लाना, लकड़ियां लाना, उसी में चूल्हा जला के खाना बनाना, अपने कपड़े खुद धोना। तो इसलिए स्वावलंबन भी उस सारी जीवन शैली का एक हिस्सा हो गया। पानी भी लाना, सब कुछ आपको अपना अपना करना पड़ता था। तो खाना भी जब बनाते तो इकट्ठा, कोई सब्जी काट रहा है तो कोई रोटियां बेल रहा है, तो कोई तवे पे सेक रहा है, तो कोई सब्जी बगल वाले चूल्हे पे चढ़ा रहा है। तो इस तरीके का वो माहौल था। तो मेरे चाचा जी मेरे साथ थे, तो उनका वहां एसएससी खत्म हो गया। अब उनको आगे कॉलेज में जाना था, तो बीड़ जो जिला है हमारा, वहां पर उनको जाना पड़ा, क्योंकि उनके पास यहाँ पढ़ने के खत्म हो गई कक्षा। तो फिर ऑब्वियसली मैं उनके साथ चला गया, क्योंकि चाचा साथ में है तो थोड़ा सा ये भी सुकून भी था घर वालों को भी। तो आठवीं से फिर मैं बीड़ जिले पे आ गया, और जिले पे आने का मतलब ये है कि थोड़ा सा माहौल भी बड़ा बन गया, जिले का स्तर है तो एजुकेशन भी थोड़ा अलग किस्म का था, थोड़ा बड़प्पन या एक दृष्टि का विस्तार होने की जो संभावनाएं बनती है छोटे गांव से थोड़ा अर्बन एक टाउन में जाओ, टाउन से थोड़े बड़े टाउन में जाओ। तो फिर बीड़ में मैंने आठवीं से लेके ग्रेजुएशन तक मैं बीड़ में ही पढ़ता रहा।
1: जी, एक नई दुनिया खुली,
0: एक नई दुनिया खुली। एक क्या होता था कि यहाँ साइकिल ही बहुत ज्यादा एक ग्लैमरस चीज होती, किसी के पास साइकिल है तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो साइकिल से अब रिक्शा तक आ गए हम लोग। अरे रिक्शा भी होती है, कार भी होती है, पूरे जिले के गांव में तीन चार कार होती थी, वो बड़े अमीर लोगों के पास होती थी। पर दूर दराज की गाड़ियों का आना जाना, लोगों से मिलना मिलाना, फिर एक क्या कहते हैं एक्टिविटी में हिस्सा लेना, तो जहां पर आप 200-400-500 बच्चों के साथ पढ़ते थे, अब अचानक मेरे कॉलेज में उस समय 4,500-5,000 स्टूडेंट थे।
1: ओहो हो।
0: दूसरा कॉलेज था एक हमारे ही बीड़ शहर में, बलबीम कॉलेज, मैं पढ़ा हूँ नवगण महाविद्यालय में, वहाँ एक 4,000-5,000 थे। तीसरा एक बंकट स्वामी महाविद्यालय था, उसमें 2,000-3,000 गांव गांव से आए और शहर के लोग पढ़ते थे, विद्यार्थी पढ़ते थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है जिला स्तर पर आप जब आते हैं। तो मेरा हमेशा विजन जो बढ़ता रहा, छोटे 30-35 मकान के गांव से फिर 2,000-3,000 वाले मकान के शहर में, छोटे से तालुका प्लेस भी नहीं था, अभी भी वो तालुका नहीं हुआ है, पर उस वाले शहर पे, वहां से फिर डिस्ट्रिक्ट। तो आपका जितना शहर का आकार बढ़ता है उतनी आपकी सोच का भी आकार बढ़ता है।
1: बहुत सही बात है।
0: उसके बाद फिर औरंगाबाद, संभाजीनगर चला गया यूनिवर्सिटी के लिए, फिर वो और भी बड़ा है। पांचों जिलों का, जो पांच जिले थे मराठवाड़ा में, तो वो कमिश्नर ऑफिस था वो,
1: जी।
0: तो वो और भी बढ़ गया। वहाँ यूनिवर्सिटी भी थी, तो यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी बात होती है। 300-400 एकड़ में आप इतनी सारी बिल्डिंगें, इतने सारे डिपार्टमेंट, और पढ़ने पढ़ाने का बहुत बड़ा माहौल बन जाता है।
1: जी,
0: कई सारे कॉलेजेस थे वहाँ। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि जो आपके पढ़ने का भी विस्तार होता है, सोचने का भी विस्तार होता है, और जीवन को आप जो सामना कर रहे हैं उस सामना का भी विस्तार होता है, तो जीवन अनुभव का भी तो विस्तार होता है।
1: एकदम।
0: तो ये ऐसा वो माहौल था।
1: जी, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: जब आप बीड शहर में आ गए अपने चाचा के साथ, चाचा की अपनी पढ़ाई, आपकी अपनी पढ़ाई, वहाँ सिनेमा और रंगमंच की दुनिया से किस तरह का संपर्क बना देखने सुनने और समझने का?
1: नहीं, क्योंकि बीड नेकनूर में तो ये सारा कुछ नहीं था, जो गैदरिंग में एक आध छोटा मोटा नाटक होता था वही उसी में हिस्सा लेता था मैं। पर बीड में आने के बाद, बीड एक शहर बड़ा है तो 2-3 सिनेमा हॉल थे, तो सिनेमा देखने की शुरुआत हो गई। कोई एक रिश्तेदार आते थे और वो जब भी 2-3 महीने के बाद आते थे, हम सारे बच्चों को वो 5 आने का सिनेमा का टिकट निकाल के हम सब सिनेमा देखते थे।
0: वाह वाह, कुछ फिल्में याद है?
1: बहुत शुरुआती तौर पर याद है, इतनी सारी फिल्में याद है, जितने भी हमारे हीरो हैं उस समय के पॉपुलर हीरोइंस हैं, हेमा मालिनी के सिनेमे देखे हैं, शर्मिला टैगोर के देखे हैं, रेखा जी के देखे हैं, कई मतलब सिनेमा के नाम, जंजीर देखा हुआ है, शोले देखा हुआ है, उसके पहले जितेंद्र जी के सिनेमा देखे हुए हैं अपने, ये जो पहलवान
0: दारा सिंह
1: के सिनेमे बहुत देखे हुए हैं। तो ये मतलब ऐसा होता था कि साल में 5-6 सिनेमा तो देख ही लेते थे।
0: कितना रोमांचक था ये?
1: बहुत रोमांचक। वो सिनेमा का टिकट निकालना अपने आप में एक जो कल्पना से परे शर्त होती थी, वो टिकट पाना,
0: वाह वाह,
1: वो झुंड जो पड़ता था उस छोटी सी खिड़की में, अरे बाप रे बाप, कोई किसी के ऊपर कंधे चढ़ रहा है, कोई जूते से सर पे खड़ा है, कोई उल्टा खड़ा होके, कोई बहुत स्किलफुल लोग होते थे वो टिकट निकलने वाले। तो ये सारा जो माहौल है वो देखा है। उसके बाद जो गैदरिंग में नाटक होते थे, खासकर कॉलेज में, मेरे स्कूल में कोई नाटक नहीं होता था
0: जी,
1: तो वो एक बहुत ज्यादा गंभीर पढ़ाई वाला था, पर वहां पर दूसरा माहौल था। वो एक जो माहौल में एक किस्म की जो मूवमेंट चली थी उस समय, विद्यार्थियों की समस्याओं के आंदोलन हुए, किसानों की समस्याओं के आंदोलन हो गए, वो मुझे लगा कि वो सारे आंदोलन का हिस्सा मुझे बनाया गया
0: जी जी,
1: क्योंकि मेरी तरफ देखने के बाद चुलबुला था, थोड़ा भाषण वाषण करता था, जो नेकनूर में ही स्कूल में पढ़ता था तभी से वो शुरुआत हुआ था।
0: तब तो आपने एक्टिंग भी की थी?
1: तब भी एक बार एक एक्टिंग की थी मैंने, जहां एक ही बार नाटक हुआ था तो उसमें एक्टिंग भी की थी।
0: लड़की बने थे?
1: लड़की बना था मैं, और अब वो नाटक का नाम तो याद नहीं, एक छोटा एकांकी नाटक था, पर उसमें लड़की बना था और मेरे से मोटी लड़की का फ्रॉक मैंने लाया था और सेफ्टी पिन लगाया था, तो सेफ्टी पिन डायलॉग बोलते बोलते खिसक गया।
0: ओ,
1: तो पूरा नाटक जो है वो कहीं और चला गया
0: जी।
1: तो ऐसा भी एक वो अनुभव था। बीड में आने के बाद मुझे लगा कि वो जो माहौल मुझे दूसरा मिला, सोशल जागरूकता का माहौल मिला।
0: बड़ी आसानी से आप राजनीति में जा सकते थे?
1: हाँ, जा सकता था मैं, और वो भी एक ऑप्शन मेरे सामने था राजनीति में जाने का। पर वो कॉलेज में आते आते ऐसा लगा कि जो राजनीति हमारी मोड ले रही है उस समय की, जो अंगड़ाई ले रही है, वो मूल्याधिष्ठित राजनीति नहीं रहेगी। बहुत अनुभव किया उसका और ऐसा लगा कि ये कुछ सही नहीं।

है, वो मैंने इसलिए जानबूझ के छोड़ा कि अब यहाँ जाना सही इंसान का काम नहीं है, पर जाना जरूर चाहिए। वहां की राजनीति में ऐसा लगा कि सही इंसानों का होना बहुत जरूरी है, सेंसिटिव लोगों का होना जरूरी है। वहां नहीं है, ऐसा नहीं है, जो जाते हैं उसके बावजूद

0: जो इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट हजारों भाषणों से ज्यादा होता है
1: जी।
0: सिनेमा का इम्पैक्ट है वो कई कई गुना ज्यादा होता है, नाटक से भी कई गुना ज्यादा होता है। पर नाटक जो बहुत अच्छा नाटक अगर आप करते हो तो उसका परिणाम इतना प्रभावी होता है कि देखने वाला अंतर्मुख हुए बिना घर नहीं जा सकता। तो इसीलिए मैंने चुना कि नहीं, जो करियर करना है, जब कॉलेज में आया 2-3 साल गैदरिंग में काम किया और सेकंड ईयर में आया तो मैंने फुल लेंथ प्ले में लीड रोल किया, मुझे दिया गया। तो मैं तो इतना छोटा सा था और 2.5 अखर प्रेम का वो नाटक हो रहा था गैदरिंग के लिए और उसमें मेन रोल था प्रोफेसर बल्लाड़ का। अब वो रोल निभाने के बाद ऐसा लगा कि यार ये कुछ जादू है इस सारी प्रोसेस में, तो तय किया कि नहीं नाटक में जाऊंगा तो मैं एक तो सेंसिटिव रह पाऊंगा, मैं अपनी हिसाब से जिंदगी जी पाऊंगा, अपनी सोच के नाटक करूंगा, जिनकी मैं आवाज बनना चाहता हूं, चाहे वो वंचित है, चाहे वो गरीब है, जो समाज के सीढ़ी के आखिरी सीढ़ी पे भी जिनको जगह नहीं है, ऐसे लोगों की आवाज बनने की संभावना इसमें ज्यादा है। तो इसलिए मैंने ये जानबूझकर ये चुनाव जो किया मैंने माध्यम का वो सोच समझ के किया, और इसीलिए फिर वहां जाना ही है नाटक में तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे
1: जी जी।
0: तो इसीलिए फिर औरंगाबाद शिफ्ट हो गया और वहां 1 साल ड्रामा डिपार्टमेंट में दाखिला लिया, वो इसीलिए कि मुझे अंतिम में जाना तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही था, तैयारी करके जाना है मुझे, कोई इंटरव्यू में जाऊंगा तो वापसी का टिकट के पैसे लेके नहीं जाऊंगा।
1: वाह,
0: ये मन में तय किया था। और वाकई जब पहली बार इंटरव्यू दिया तो उसी इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया और वो भी टॉप 4 में सेलेक्ट हो गया। वो टॉप 4 में इसलिए मुझे पता चला कि मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिली
1: जी।
0: अगर वो नेशनल स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो सेलेक्ट होने के बाद भी मैं एनएसडी नहीं जा पाता, क्योंकि मेरी जो आर्थिक परिस्थिति तब भी थी वो इतनी ही क्या कहती थी कि बहुत गरीब किसान का बेटा था, तो इसीलिए वो संभव नहीं था वहां जाकर वो सारा खर्चा करना। पर वो स्कॉलरशिप मिली इसीलिए आज मैं आपके सामने बैठ के बातें कर रहा हूं।
1: क्या बात है, बहुत लंबी यात्रा हमने आपकी देखी यहां तक कि यहां एक गाने की जगह बनाते हैं। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब आप सिनेमा से परिचित हो रहे
0: जी,
1: थे
0: जी, जी,
1: आपने
0: जी,
1: बताया कि इतने तरह की फिल्में देखी।
0: मुगले आजम देखी।
1: वाह, मुगले आजम का गाना।
0: मुगले आजम का गाना सुनते हैं।
1: जब प्यार किया तो डरना
0: क्या, क्या बात है।

0: मुगले आजम का ये गाना प्यार की बात करता है और कॉलेज के जमाने में लड़कों को किसी न किसी तरह से प्रेम तो हो ही जाता है। आपके साथ क्या मामला था?
1: बहुत हुआ, उसमें क्या है, शर्माने की क्या बात है। पर मैं फोकस्ड बहुत था
0: जी,
1: क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी जिम्मेदारियां क्या है और मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि मैं तो लीडर था
0: जी,
1: तो हमेशा 10-20 लोगों के बीच में रहने की आदत थी। तो इसीलिए वो वाला जो सिलसिला था, बहुत सारी लड़कियों से बातें होती थी, पर एक पर्टिकुलर फोकस हो के किसी के प्यार में पड़ो, वो वाला माहौल लगा कि ये ठीक नहीं है। इसके लिए और बहुत सारी जिंदगी पड़ी है वो करने के लिए। तो मुझे जाना तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था। आकर्षण का केंद्र तो आप वैसे भी होते हो, अच्छा बोलते हो, मंचों से अच्छा बोलते हो, आपको मॉब मैनेज करने आता है, आपको ह्यूमन मैनेजमेंट पता है, तो आप लीड में हो तो अपने आप में लोगों के आकर्षण का केंद्र तो आप बन जाते हो। पर आपके आकर्षण का केंद्र कोई इंडिविजुअल बनने की वो क्या कहते हैं वो समय नहीं था, इसलिए मैं वो सारा पार करके फिर सीधा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंच गया।
0: क्या बात है। लेकिन इस दौरान आपने जो बुनियादी नाटकों की दिशा में जो काम किया, जो बीड में या औरंगाबाद में जाके किया, उसके बारे में बताइए।
1: नहीं, बीड में क्या था कि हम ये नाटक करते थे, कौन सा, गैदरिंग के नाटक
0: जी जी जी, गैदरिंग का मामला।
1: उसके बाद हमारे एक मित्र श्रीराम बड़े ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सेलेक्ट हो गए
0: जी।
1: तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था, शायद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, तो वो सेलेक्ट हो गए वहां। तो उनका जो छुट्टियों में आना जाना होता था, तो हम उनसे सीखने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करते थे। मैं लीडर था तो कॉलेज में समर वेकेशन में 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की कार्यशालाएं आयोजित करते थे। फिर उसका कोई एक नाटक होता था, वो फिर अभी जुलूस, मुझे याद आ रहा है नाटक हमने किया बादल सरकार का
0: जी,
1: वो जुलूस के शहर भर में शो किए।
0: वाह,
1: अब ऐसा लगता है कि वो कितने लोगों को समझ में आ गया, रास्ते के आदमी को तो ठेठ बात होनी चाहिए। तो पथनाट्य भी बहुत सारे किए। तो इस तरीके के वो छुट्टियों के माहौल में एक दो नाटक तो करते ही थे। तो गंभीर नाटक क्या होता है, उसकी तरफ जो खिंचाव या आपका आकर्षण का केंद्र बना। गैदरिंग के नाटक से एंटरटेनिंग नाटक क्या होते हैं, उसका संस्कार अपने आप मिलता रहा
0: जी।
1: जो शिक्षक थे उस समय के, पढ़ाने वाले, नाटक या डायरेक्ट करने वाले, उन सबसे जो भी उनका आकलन था, वो बगल वाले जो कॉलेज होते थे उनके नाटक देखने जाते थे, तो वो क्या हमसे बेहतर करते हैं, ये तुलनात्मक अध्ययन भी होता रहा। तो पथनाट्य से लेके मनोरंजन का नाटक में भीड़ में ही समझ गया।
0: वाह वाह।
1: फिर वहां से मैं औरंगाबाद जब गया तो मुझे किसी ग्रुप के साथ ज्वाइन होना था, जहां पर राज्य नाट्य स्पर्धा के लिए नाटक होता था। पर मेरा टेम्परामेंट वो राज्य नाट्य स्पर्धा वाला भी नहीं था, और उनका अपना अपना ग्रुप में लोग होते थे तो उनके साथ वो अपना काम करते थे। तो अचानक वहां एक दिन पता चल गया कि यहाँ दलित थिएटर मूवमेंट की शुरुआत हो रही है।
0: ओ ओ ओ।
1: तो उनके कुछ मित्रों से मेरी जान पहचान हुई थी, मूवमेंट में था मैं, स्टूडेंट एक्टिविटी में था, तो जान पहचान तो हुई थी। तो एक हमारे साहेबराव गायकवाड़, ये साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे वहां के अंबेडकर कॉलेज में या मिलिंद कॉलेज में, उनसे राबता था, आना जाना रहता था उनके घर में। तो एक दिन पता चला कि वो एक नाटक कर रहे हैं वहां, दलित साहित्य सम्मेलन पहली बार हो रहा है और जो मिलिन कॉलेज के परिसर में हो रहा है, और उसमें दत्ता भगत लिखित आवर्त नाम का नाटक करना है और वो हीरो की तलाश में है। तो मुझे बुलाया गया और मुझे देखते ही अविनाश डोलस प्रोफेसर थे वो भी, और मेरे ही गुरु त्रिंबक महाजन
0: जी,
1: वो पढ़ाने आते थे तो वो मुझे जानते थे कि ये बच्चा रॉ है पर बहुत अच्छा है।

0: तो उन्होंने मुझे बुलाया और वो रोल दे दिया और मैं वो रोल निभाया और उसके 10-15 शो हमने किए।
1: वाह,
0: तो दलित थिएटर मूवमेंट की शुरुआत जो हुई उस मूवमेंट में एक काइंड ऑफ फाउंडर मेंबर के हैसियत से या एक एक्टर के हैसियत से मुझे मौका मिला। उसके बाद दलित थिएटर ने ही दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट नाटक खेला, थांबा राम राज्य तय,
1: ओहो,
0: रुकिए राम राज आ रहा है।
1: हाँ,
0: ये प्रकाश त्रिभुवन ने लिखा हुआ नाटक है, मेरे मित्र थे तो उन्होंने लिखा हुआ नाटक है। उसमें फिर बड़ा नाटक था ये लगभग, तो उसमें फिर लीड रोल करने का मौका मिला। तो ये दो जो फाउंडेशन प्ले हैं दलित थिएटर मूवमेंट के, महाराष्ट्र के और खासकर औरंगाबाद के, तो उस मूवमेंट का मैं हिस्सा बन गया और उस थांबा राम राज्य थे बहुत पॉपुलर हो गया वो
1: जी
0: नाटक। वो दिल्ली के श्रीराम सेंटर तक जो फेस्टिवल होता था, नेशनल फेस्टिवल, वहां तक पहुंचा। वो
1: वाह,
0: पीटर ब्रुक ने देखा,
1: गजब गजब,
0: हाँ, और पीटर ब्रुक ने उस नाटक की इतनी तारीफ की, दूसरे दिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आकर उनका व्याख्यान रखा था। तो उसके पहले दिन वाले शो में मैं लीड रोल कर रहा था, वो भी स्पेशल परमिशन लेके, एनएसडी में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था।
1: अरे
0: हाँ, तो अचानक पीटर ब्रुक उस नाटक की तारीफ कर रहे, तो लोगों को लगा, अरे बाप रे, हमारा ही क्लासमेट उसमें तो कल लीड रोल कर रहा था, उन्होंने भी नाटक देखा था। तो इस तरीके से उस नाटक की तारीफें हुई। फिर यहां मुंबई में भी छबीलदास थिएटर में भी उसके शो हुए, क्योंकि हमें लगा कि ये केवल मराठवाड़ा तक रहना नहीं चाहिए, अलग अलग जाके उसको परफॉर्म, तो ये परफॉर्मेंस करते रहे। पर जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का सिलेक्शन हो गया, उसके बाद फिर मुझे उस नाटक को दुर्भाग्य से छोड़ना पड़ा।
1: जी
0: फिर और वो नाटक चलता रहा, किसी और ने रोल कर लिया, पर उस नाटक में उस संवेदना ने मुझे एक और एक मौका दिया कि जो वंचित है, जो दलित है, वो उस आदमी की आवाज बनना पड़ेगा थिएटर को, या कहीं भी, या गरीब किसान है, गरीब मजदूर है। तो ये मूवमेंट में जो जो मैं कर रहा था, सौभाग्य से मुझे उसी मंच पे एक कदम रखने का मौका मिला जहां और किसी की आवाज बनकर आप उस माध्यम के द्वारा लोगों के मन में और क्या मस्तिष्क पे या ये नाटक का अनुभव ले जा रहे हो और उनको अंतर्मुख करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये औरंगाबाद का दौर रहा। फिर जो छुटपुट छोटे मोटे नाटक एकांक किया, क्लास में किया, यहां किया, वहां किया, ये सारा अनुभव लेकर मैं दिल्ली पहुंच गया।
1: जी, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है।

0: एनएसडी की एडमिशन की जो प्रोसेस थी, क्योंकि आप बहुत छोटे बैकग्राउंड से आ रहे थे और एनएसडी राष्ट्रीय मुकाबला होता है, तो वहां आपने अपनी एक बहुत जोरदार उपस्थिति उस परीक्षा में दर्ज की, वो कैसे हुआ?
1: एक तो हमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में मालूम हुआ था, एक तो हमारा ही सीनियर श्रीराम बड़े वहां सेलेक्ट हुआ था, उसके दूसरे साल शिवदास घोड़के
0: जी
1: वो सेलेक्ट हो गए, तो दोनों मेरे मित्र थे, और तीसरे साल मैं सेलेक्ट हो गया। मैंने एक साल
0: जी
1: नाट्यशास्त्र से लेके जितना भी नाटक के ऊपर लिखा गया वो सब पढ़ा। मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के, तब की मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी और अब की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है
0: जी।
1: मैं हर दिन शाम को क्लास होता था क्योंकि इवनिंग डिपार्टमेंट था, तो दिन भर क्या करें, तो दिन भर लाइब्रेरी में जाके बैठता था और हर दिन एक नाटक पढ़ता था। ये कसम खाई थी मैं जब तक यहां रहूंगा मैं हर दिन एक स्क्रिप्ट पढ़ूंगा।
0: तो सैकड़ों नाटक पढ़ लिए,
1: तो मैंने तो मुझे लगता है उस पूरे 8-9 महीने के दरमियान 200-250 नाटक तो पढ़ लिए। मान लो किसी वजह से आज कोई मित्र आ गए, कहीं सिनेमा देखने गए, कोई नाटक देखने गए, कुछ हुआ और आज नाटक नहीं पढ़ पाया, तो दूसरे दिन दो पढ़ना।
0: वाह वाह वाह।
1: और उसके साथ साथ फिर जितना भी सैद्धांतिक पक्ष था नाटक का, चाहे वो मराठी की किताबें मराठी में जो आए आर्टिकल्स है, हिंदी में जो आए, अंग्रेजी में जितना समझ में आता था वो सारे आर्टिकल स्टैनिस्लावस्की से लेके जितनी भी थियरीज है वो सब पढ़ ली
0: जी।
1: समझ में कितनी आई वो बाद में पता चला, पर पढ़ तो लिया। और दुनिया भर किस किस्म का थिएटर होता है, नाटक होता है, क्या संभावनाएं हैं, उसके बारे में बहुत सारे जो मैगजीन आते थे, इंटरनेशनल भी आते थे, हमारे यहाँ भी नाट्य दर्पण निकलता था, कोई भरत शास्त्र निकलता था मराठी के भी, ये सारा पढ़ने का मौका मिला।
0: तो एक सॉलिड बैकग्राउंड लेके गए,
1: एक सॉलिड बैकग्राउंड, और प्रैक्टिकली भी आप फोक से तो थे ही, फोक का होता आपके ऊपर। और कॉलेज में 2-3 साल जो आइटम्स हमने किए, जैसे अम्बेचा गोंधड़ एक आइटम किया था मैं और श्रीराम बड़े, वो इतना पॉपुलर हो गया कि साल भर का जो हमारा शिक्षण का खर्चा उस एक आइटम से निकलता था। लोग एक्चुअली
0: पैसे फेंकते थे,
1: इतने पैसे फेंकते थे।
0: वाह।
1: एक बार तो जो बड़ा कॉइन फेंका किसी ने, बड़ा रुपये का कॉइन होता था उस समय, वो ढोलकी के
0: पेट में लगा।
1: हाँ, पेट में लगा और वो ढोलकी फट गई।
0: अरे बाप।
1: उसके बाद भी वो रुका नहीं है। तो ऐसी सारी, कोई 10 रुपया दे रहा है, मुझे याद है कि वहां तब हमारी जो कॉलेज की और खासदार रही है, एमपी रही है, थी वो केशर भाई, केशर काकू, हम उनको काकू बोलते थे, तो उन्होंने 100 रुपये का जो नोट दिया हमको, इतना बड़ा लंबा नोट था।
0: हाँ।
1: अब वो 100 रुपया तो बहुत हो गए हमारे लिए, एक आदमी के लिए, एक साल के लिए
0: जी,
1: उससे ज्यादा खर्चा होता नहीं था। तो ये सारा का सारा, तो वो भी एक अनुभव था। और ये सारा अनुभव लेके आप, और फिर मैंने आषाढ़ का एक दिन का मैं सेट डिजाइन किया था, उसका मॉडल भी लेके गया,
0: मॉडल भी
1: साथ में लेके गया, फिर कॉस्ट्यूम प्लेट्स कुछ की थी वो भी लेके गया, ताकि आप दिखाएं कि मुझे बाबा बहुत सारा है और सीखने की इच्छा है और आगे बढ़ाई है। तो वो सब देखने के बाद मुझे लगा कि कारण जी जो डायरेक्टर थे, बीवी कारण जी जो आगे भी मेरे गुरु रहे, तो वो थे। और मेरा इंटरव्यू बड़ौदा सेंटर में हुआ, तब मुंबई सेंटर हुआ करता था, पर वो उस समय पता नहीं किसी और कारण वो बड़ौदा में शिफ्ट हो गया, तो बड़ौदा में मेरा इंटरव्यू हो गया। और उसके एक 15-20 दिन के बाद चिट्ठी आ गई कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, आप फलाना तारीख को आके ज्वाइन हो जाइए, क्लासेस शुरू हो रहे।
0: वाह क्या बात है। मैं इस पूरी यात्रा से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प बात पूछने वाला हूं, पर यहां एक गाना सुनना है
1: यार, रहमान का लगाइए।
0: ठीक है, दिल से गाना सुनना, दिल से।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में प्रस्तुत होगा छाया गीत, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए 200 रुपए का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। मौसम विभाग ने राजधानी रांची, रामगढ़ और हजारीबाग समेत राज्य के अधिकतर जिलों में 19 अगस्त तक बारिश के साथ गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कल और परसों कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता हैकथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल से शुरू हुआ पंजीकरण अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

0: वो कभी मुस्कुराकर हाल पूछती है तो कभी मेरी खामोशी को भी पढ़ लेती है। समझ नहीं आता ये बस अपनापन है या वो मेरे दिल की आहटें सुन लेती है। उसकी नजरों में कुछ तो राज छिपा है जो हर मुलाकात में थोड़ा और खुल जाता है। दिल कहता है ये मोहब्बत है, पर उसकी खामोशी हमेशा उलझा देती है और दिल में एक ही सवाल बार बार उभर आता है।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

मैं सोचता हूं क्या तोहफा दूं उसे जो उसके चेहरे पर मुस्कान बनकर ठहर जाए। फूल दूं तो मुरझा जाएंगे, चांद दूं तो हर रात बदल जाएगा। फिर सोचा अपनी धड़कनों की स्याही से कुछ अल्फाज लिख दूं उसके नाम पर, या फिर वफा की खुशबू अपनी हर खुशी उसके नाम कर दूं। मेरे पास सबसे कीमती मेरा दिल था, तो आज उसी को करता हूं नाम तुम्हारे।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं छाया गीत। जब आना मेरे पास तो अपनी आंखों में थोड़ा सा इश्क और ढेर सारा नूर लाना, होठों पर वही शरारती मुस्कान जिसे देखकर मेरी धड़कनें मुस्कुरा उठें, और हाँ एक वादा भी साथ लेते आना कि हर खुशी में मेरा हाथ थामोगे और हर मुश्किल में मेरा साथ निभाओगे। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो हर मुलाकात अपने आप में सबसे खूबसूरत तोहफा बन जाती है।
1: पापा।

तोहफे ऐसे होते हैं जो समय के साथ और भी अनमोल हो जाते हैं। वो दिल से निकलते हैं और सीधे रूह तक पहुंचते हैं। मैंने तुम्हें देने के लिए ना सितारे तोड़े हैं, ना ही चांद चुराया है। मैं तो बस अपना दिल, अपना अटूट भरोसा और उम्र भर की सच्ची मोहब्बत लेकर आया हूँ। दुनिया के सबसे अनमोल उपहार बाजारों में नहीं मिलते, वो किसी सच्चे दिल की धड़कनों में बसते हैं।

दिल का नजराना पाकर मन मयूर नाच उठता है। गोरी के पैरों की पायल भी जैसे मधुर गीत गाने लगती है। लबों पर अनकही मुस्कान के फूल खिल उठते हैं। दिल की हर धड़कन बस एक ही नाम गुनगुनाने लगती है। हर मौसम सुहाना सा लगता है। हवाओं में किसी की मोहब्बत की खुशबू घुल जाती है और सिर्फ पायल ही नहीं, पूरी जिंदगी प्रेम का गीत गाने लगती है।

0: अपनी दोस्त आरती श्रीवास्तव को छाया गीत समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में सुनवाएंगे कार्यक्रम तराने नए पुराने।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टन अंश केंद्र से बोल रहे FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। सायंकालीन सभा में आप सबों का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं अपनी सभा में प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की।

ग्रामीण कृषक महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम जननी आप सुन सकेंगे शाम 6:30 से। शाम 6:55 पर हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र की प्रसारण सेवा में, जहां ठीक 7:00 आप सुनेगा प्रादेशिक समाचार। 7:10 पर जिले में आजकल गीत गजलों का कार्यक्रम स्वरांजलि का समय होगा 7:15 पर। लोकगीतों का कार्यक्रम महुआ आप सुन सकेंगे 7:45 से। फिल्म संगीत

रात्रि 9:30 पर हम शामिल होंगे विविध भारती के कार्यक्रम में। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुन सकेंगे रात्रि 10 बजे से, हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे, अंग्रेजी में समाचार रात्रि 11:05 पर।

युवानी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आराध्या माही। आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम में आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए फिल्मी गीतों को भी सुनाएंगे। तो दोस्तों, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे महान साहित्यकार के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आम आदमी के जीवन में समाज की समस्याएं, संस्कृति और मानवीय संवेदनशीलता प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उनका नाम है अमृतलाल नागर जी। दोस्तों, अमृतलाल नागर का जन्म 17 अगस्त 1916 को आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार, उपन्यासकार और साहित्यकार थे। उन्होंने अपने साहित्य में समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन को बहुत करीब से देखा और उसे अपनी लेखनी में उतारा। उनका निधन 23 फरवरी 1990 को हुआ, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी हिंदी साहित्य में जीवंत है। अमृतलाल नागर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे अपने केवल कल्पना के आधार पर कहानी नहीं लिखते, बल्कि समाज और उनके लोगों के जीवन को गहराई से समझते थे और उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली और जन सामान्य के से बहुत करीबी थे। उनके साहित्य में हमें भारतीय संस्कृति, लोक जीवन, इतिहास, सामाजिक संघर्ष और मानवीय भावनाओं का सुंदर मेल देखने को मिलता था। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में बूंद और समुद्र, नाचियो बहुत, गोपाल, अमृत और विष, मानस का हंस, खजर नयन और सुहाग के नूपुर जैसी कृतियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मानव का हंस में उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास के जीवन के और उनके साहित्य के रूप में प्रस्तुत किया। वहीं बूंद और समुद्र में समाज और व्यक्ति के संबंधों को बहुत गहराई से समझाया गया। अमृतलाल नागर के साहित्य में हमें यह सीख मिलती है कि समाज को समझने के लिए केवल किताबें पढ़ना पर्याप्त नहीं, बल्कि हमें उनके आसपास लोगों को, उनकी समस्याओं को भी समझना चाहिए। उन्होंने गरीब, सामान्य और संघर्ष करने वाले लोगों के जीवन को भी उतनी ही महत्व दी जितनी प्रभावशाली लोगों को दी। दोस्तों, आज के युवाओं को अमृतलाल नागर जी के बारे में जानना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, आज का युवा तकनीक और सोशल मीडिया के युग में ही जी रहा है। हमारे आसपास जानकारी बहुत है, लेकिन समाज और अपनी संस्कृति को गहराई से समझने के लिए साहित्य का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। अमृतलाल नागर की रचनाएं युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ती है। उनकी रचनाओं से युवा भारतीय संस्कृति, इतिहास, सामाजिक परिस्थितियाँ और मानवीय मूल्यों को समझ सकते हैं। उनके साहित्य में संघर्ष करने की प्रेरणा भी मिलती है। वे हमें बताते हैं कि सामान्य व्यक्ति का जीवन भी महत्वपूर्ण है और समाज में हर व्यक्ति की अपनी भूमिका होती है। युवाओं के लिए उनकी सबसे बड़ी सीख यह है कि हमें अपने समय की समस्याओं को आंखें नहीं चुरानी चाहिए, हमें उन्हें समझना चाहिए, उनके समाधान के बारे में सोचना चाहिए और समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। अमृतलाल नागर का साहित्य हमें अपनी भाषा से प्रेम करना, अपनी संस्कृति को समझना और इंसानियत को महत्व देना सिखाता है। आज जब युवा तेजी से बदलती दुनिया का हिस्सा बन रहे हैं, तब ऐसी साहित्यकारों को पढ़ना हमें उनकी पहचान और

नज़रों से जोड़ने में मदद रखता है। दोस्तों, अमृतलाल नागर केवल हिंदी के महान कथाकार नहीं बल्कि वे भारतीय समाज और उनकी आत्मा के सच्चे चित्रकार भी थे। उनके जन्म दिवस पर हमें यह याद करना और भी सार्थक होता है कि हम उनकी रचनाओं को पढ़ें, उनसे सीख लें और अपने जीवन में मानवीय मूल्यों को अपनाएं। दोस्तों, अभी हम बातें कर रहे थे हिंदी के लोकप्रिय कथाकार अमृतलाल नागर जी के बारे में। दोस्तों, इस चर्चा के बाद आइए सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

अंग्रेजी भाषा को प्रभावशाली ढंग से कैसे पढ़ें। किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्यक्ति में उत्साह एवं प्रबल इच्छा का होना अनिवार्य है। इसके लिए समुचित संसाधनों का उपयोग एवं उचित माहौल की तैयारी आवश्यक है। इन बुनियादी भाषा कौशल को प्राप्त करने के लिए आपको अंग्रेजी के साथ साथ खुद पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। अपने खाली समय में घर पर काम कर अंग्रेजी को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। किसी भी भाषाओं में लिपि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हमारी भाषा हिंदी की तुलना में अंग्रेजी की लिपि आसान है। अंग्रेजी की समुचित जानकारी प्राप्त करने हेतु शब्दों की शब्दावली एवं व्याकरण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अत्यधिक शब्दावली की जानकारी हमारे अंदर के आत्मविश्वास को और बढ़ा देता है। आज के शहरीकरण, औद्योगिकरण एवं आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण बदलाव को देखते हुए हमें अंग्रेजी सीखना अनिवार्य है। हम समाचार पत्र पढ़कर, अंग्रेजी कहानी पढ़कर, सुनकर एवं किताबों की मदद से मोबाइल ऐप के द्वारा अपनी अंग्रेजी की समुचित ज्ञान को और आगे बढ़ा सकते हैं। रोजगार का अवसर ढूंढने के लिए अंग्रेजी एक सशक्त माध्यम है। अंग्रेजी सीखने के लिए अन्य माध्यम रेडियो पर अंग्रेजी समाचार सुनकर, कुछ मनोरंजक अंग्रेजी फिल्मों देखकर या कार्यक्रम देखकर भी सीखा जा सकता है। भारत के कई पर्यटक स्थल पर हम पाते हैं कि रिक्शा वाला, फेरी वाला भी टूटी फूटी अंग्रेजी बोल लेता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि लगातार किया गया अभ्यास एवं प्रयास एवं विदेशी सैलानियों से वार्तालाप का प्रयास। कहा जाता है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए लिखना आवश्यक है। अतः अंग्रेजी में व्याकरण की जानकारी को लिखकर, वाक्य बनाकर हम अपनी जानकारी और बढ़ा सकते हैं। हमें अपने अध्यापकों के साथ एवं अंग्रेजी बोलने वाले दोस्तों के साथ बातचीत करना चाहिए, तो इससे हमारे बोलने की कला में निखार आता है। किसी भी कार्य में शुरुआत में बाधा या उबाऊपन की स्थिति आ सकती है। हमें आत्मविश्वास एवं धैर्य के द्वारा सतत प्रयास कर अंग्रेजी के ज्ञान को हम बढ़ा सकते हैं। सवाल यह है कि इस भाषा को इतनी प्राथमिकता क्यों? इसका जवाब यह है कि आज के वैज्ञानिक युग में बैंकिंग के क्षेत्र में ATM, मोबाइल, कंप्यूटर, बाजार, मॉल, हॉस्पिटल, शिक्षण संस्थान एवं विदेशों में अंग्रेजी का बोलबाला है। अंग्रेजी भाषा के अगर हम आधार खोलें तो टेंस इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक शिक्षा से ही हमें स्कूल में टेंस की जानकारी दी जाती है। जो बच्चे टेंस को गंभीरता से लेते हैं वे आगे चलकर कई प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण कर जाते हैं एवं अंग्रेजी के अच्छा वक्ता भी बन जाते हैं। टेंस के बाद प्रीपोजिशन का अभ्यास जो शब्दों को जोड़ता है महत्वपूर्ण है। प्रीपोजिशन के कई पहलुओं पर अगर हम ध्यान दें, जैसे कोई भी चीज़ गति में हो तो हम इनटू का प्रयोग करेंगे, किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ हो तो उसके अर्थ में ऑन का प्रयोग करेंगे, छोटे शहर के साथ ऐट का प्रयोग करेंगे, बड़े शहर में हम रहते हैं तो इन का प्रयोग करेंगे। यह प्रारंभिक जानकारी आवश्यक है। मॉडल का प्रयोग हमारे लिखित एवं व्यवहारिक ज्ञान में भी महत्वपूर्ण है। अगर हमें आदेश लेने के क्रम में हम MI का प्रयोग करेंगे या हम May I एवं का प्रयोग करेंगे एवं योग्यता, क्षमता एवं शक्ति में कैन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार मॉडल हमारे अंग्रेजी के ज्ञान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को और मजबूत करने के लिए हमें कई विषयों पर लेख लिखकर अभ्यास करना चाहिए, जैसे विद्यार्थी जीवन, अनुशासन, विभिन्नता में एकता। अगर हम इन विषयों पर लिखने लगेंगे तो हमें शब्दावली को की आवश्यकता होगी एवं हमारा ज्ञान और व्यापक होगा। शुद्ध शब्दों का उच्चारण भी अंग्रेजी के प्रभाव को और बढ़ाता है एवं वो हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। कुछ शब्दों को अगर हम वर्तमान परिवेश में देखें तो पहले फाइनल बोला जाता था, अब फिनाले का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार पुलिस के जगह कॉप्स का प्रयोग, पीपल के जगह गाइज का प्रयोग, ये आधुनिक इंग्लिश एवं वर्तमान में चल रहे शब्दों का अगर हम प्रयोग करें तो व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करके हम अपने व्यक्तित्व को और प्रभावशाली बना सकते हैं। आज के दौर में कम्युनिकेशन स्किल सबसे लोकप्रिय डिग्री में से एक है। एक कुशल कम्युनिकेटर की आवश्यकता आज जीवन के हर क्षेत्र में है। हमें वाद विवाद प्रतियोगिता, किसी अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा, राजनीति पर चर्चा अंग्रेजी में करने से इस भाषा का ज्ञान और हम बढ़ा सकते हैं। प्रबल इच्छा, दृढ़ संकल्प एवं सतत प्रयास अंग्रेजी सीखने में मददगार साबित

0: होती है। इस भाषा के समुचित ज्ञान से हम रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को निखार कर सफलता हासिल कर सकते हैं। आधुनिक समाज, आधुनिक तकनीक एवं दुनिया से जुड़कर अपना कार्य सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अंग्रेजी भाषा के समुचित ज्ञान से हमें विदेशों में रोजगार, पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार, होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में, सेल्स एंड मार्केटिंग के क्षेत्र में, दूर संचार के क्षेत्र में व्यापक रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है। भारत की आज़ादी में भी उस समय के शिक्षाविद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इन महान नेताओं का अंग्रेजी भाषा पर समुचित पकड़ था। आज के दौर में पहले के मुकाबले अंग्रेजी सीखना ज़्यादा आसान है, क्योंकि आज कई YouTube चैनल, कई मोबाइल ऐप, गूगल साइट पर जाकर हम आसानी से अंग्रेजी भाषा को सीख सकते हैं।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी भाषा का अध्ययन कैसे करें, वार्ताकार थे मिथिलेश कुमार सिन्हा। दोस्तों, आज के समय में युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति है। युवाओं में ऊर्जा, उत्साह, आत्मविश्वास और कुछ नया करने की क्षमता होती है, लेकिन इन गुणों का सही उपयोग तभी संभव है जब हमारा शरीर और मन स्वस्थ रहे। इसलिए दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का दूसरा विषय है युवा अपने स्वास्थ्य का रखे ख्याल। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य केवल बीमार होने का नाम नहीं होता, बल्कि शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहना ही वास्तविक स्वास्थ्य है। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में युवा पढ़ाई लिखाई, नौकरी, प्रतियोगिता, मोबाइल, सोशल मीडिया और भविष्य की चिंता के बीच अपने स्वास्थ्य को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। सबसे पहले हमें अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। आजकल फास्ट फूड, जंक फूड, अधिक तेल मसाले वाले भोजन और मीठे पेय पदार्थों का सेवन बढ़ गया है। स्वास्थ्य के लिए कभी कभार ऐसी चीज़ें खाना गलत नहीं है, लेकिन अपनी रोज़ की आदत बना लेना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, युवाओं को अपने भोजन में सही हरी सब्जियां, फल, दाल, दूध या अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए। दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है व्यायाम और शारीरिक गतिविधि। दोस्तों, लगातार कई घंटे मोबाइल या कंप्यूटर पर बैठे रहना शरीर को कमज़ोर बना सकता है। रोज़ कम से कम कुछ समय पैदल चलना, दौड़ना, योग करना, खेलना या व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम केवल शरीर को मजबूत करना नहीं, बल्कि तनाव कम करना और मन को प्रसन्न करने में भी मदद करता है। दोस्तों, तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है पर्याप्त नींद। आज कई युवा देर रात तक मोबाइल चलाते हैं और अपनी नींद पूरी नहीं करते। नींद की कमी से थकान, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता में कमी हो सकती है, इसलिए समय पर सोना और पर्याप्त नींद लेना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, हम सभी मानसिक स्वास्थ्य का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य का। पढ़ाई, करियर, प्रतियोगिता के कारण तनाव होना सामान्य है, लेकिन तनाव को मन में दबाकर रखना सही नहीं। जब मन परेशान हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें, अपनी समस्या साझा करें और ज़रूरत पड़ने पर विशेष सलाह लेने में भी संकोच न करें। दोस्तों, मदद मांगना कमज़ोरी नहीं बल्कि समझदारी होती है। युवाओं को नशे से भी दूर करना चाहिए। शराब, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट और अन्य नशीली पदार्थ कुछ समय के लिए आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे शरीर, मन और परिवार और भविष्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। युवावस्था में अपने सपनों को पूरा करने का समय है, ना कि नशे की गिरफ्त में आने का। दोस्तों, आज मोबाइल और सोशल मीडिया भी हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। इनका सही उपयोग ज्ञान और अवसर दे सकता है, लेकिन अत्यधिक उपयोग समय, नींद और मानसिक शांति को प्रभावित भी करता है। इसलिए युवाओं को मोबाइल का उपयोग ज़रूरत के अनुसार और सीमित समय के लिए करना चाहिए। दोस्तों, युवाओं को यह समझना चाहिए कि स्वास्थ्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी बीमारी आनी या बाद हो जाए। स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर शरीर स्वस्थ होगा, मन सकारात्मक होगा और जीवन शैली संतुलित होगी, तो हम अपने लक्ष्य को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अपने सपनों को बड़ा रखने के लिए अपने लिए स्वास्थ्य का सही रखना और भी ज़रूरी है। पौष्टिक भोजन कीजिए, नियमित व्यायाम कीजिए और पर्याप्त नींद लीजिए। नशे से दूर रहिए, तनाव को समझिए और अपने समय का सही उपयोग करना सबसे आवश्यक होता है। दोस्तों, अभी हम बातें कर रहे थे युवा अपनी सेहत का रखे ख्याल पर। दोस्तों, अब कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव हो चला है, तो आइए आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इसी गाने के साथ हमारा आज का युवानी कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दें आपकी दोस्त आराध्या माही को। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि आगामी 20 अगस्त को छात्रों के मुख्यमंत्री आवास घेराव को भारतीय जनता पार्टी का नैतिक समर्थन है। उन्होंने राज्य सरकार से जिद छोड़कर छात्रों की जायज मांगों को मान लेने की अपील की है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों से बातचीत कर उनकी मांगे मानने की अपील की है। आज एक प्रेस वार्ता में छात्रों ने कहा कि वे पुतला दहन या मुख्यमंत्री आवास का घेराव नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि छात्र सरकार से जल्द बातचीत और आंदोलन समाप्त कर अपनी पढ़ाई पर लौटना चाहते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची जिले के सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ SIR कार्यों की समीक्षा कर शुद्ध, त्रुटि रहित और समावेशी मतदाता सूची बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने एक परिवार के सभी मतदाताओं के नाम एक ही मतदान केंद्र में रखने और नजरी नक्शा, गृह संख्या और नेशनल नंबर का सही सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री कुमार ने लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी। धनबाद में आज कांग्रेस पार्टी की समीक्षा बैठक में आगामी चुनावों को देखते हुए पंचायत, वार्ड और बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने की रणनीति बनाई गई। बैठक में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की निगरानी और स्थानीय जन समस्याओं को लेकर नियमित बैठकें करने पर जोर दिया गया। झारखंड बिजली वितरण निगम ने कहा है कि कल से राज्य भर में बिजली खंभों पर लगे असुरक्षित और अनधिकृत टेलीकॉम और केबलों को हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। निगम ने संबंधित कंपनियों को केबल और उपकरण सुरक्षा मानकों के अनुरूप व्यवस्थित करने के लिए आज तक का समय दिया था। अब निर्धारित समय तक सुधार नहीं होने पर केबल हटाने का खर्च संबंधित कंपनियों से वसूला जाएगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है ग्रामीणों के लिए कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: ग्रामीणों को संबोधित खेतीबाड़ी के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सभी को कल्याण कुमार का नमस्कार
1: और साथ ही सुनीता का भी नमस्कार।
0: और नमस्कार सुनीता जी।
1: नमस्कार कल्याण जी।
0: और श्रोताओं, आज के इस खेतीबाड़ी कार्यक्रम के तहत हम आपको चर्चा में सुनवाएंगे, बताएंगे बत्तख पालन से अतिरिक्त आय, और सुनेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई

0: योजना। इसी कार्यक्रम की कड़ी में हम आपको सुनवाएंगे कृषि विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे से ली गई भेंटवार्ता। विषय है गुट्टी विधि से नए पौध की तैयारी, और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हुए ये जानते हैं बत्तख पालन से अतिरिक्त लाभ। जी हाँ श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बत्तख पालन जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में कम लागत में अच्छी आमदनी प्राप्त करने का ये काफ़ी उपयोगी व्यवसाय है, व्यापार है। इसे छोटे स्तर पर घर के आसपास तथा बड़े स्तर पर व्यावसायिक रूप से भी किया जा सकता है। बत्तखें जो हैं वो मुर्गियों की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होती है, और तालाब हो, पोखर हो, खेत हो, साथ ही साथ खुले स्थान में भी इन्हें आसानी से पाला जा सकता है। श्रोताओं, सही नस्ल की संतुलित आहार, स्वच्छता और उचित प्रबंधन किया जाए तो निश्चित रूप से बत्तख पालन से भी अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है।
1: और इतना ही नहीं, देखिए कल्याण जी, जिन किसान भाई के लिए मछली पालन वो करते हैं तो साथ में बत्तख पालन भी कर सकते हैं, इससे उन्हें दोहरा लाभ होगा। और बत्तख जो है वो तालाब के आसपास ही पाली जाती है, और इसके लिए प्राकृतिक आहार भी उन्हें मिल जाती है। देखिए बत्तख पालन में जो है उन्हें बहुत ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बत्तखें जो होती है तालाब में टिंडा घोंघा जो भी होते हैं वो सब आहार के रूप में ले लेती हैं, या फिर मछलियाँ भी खा लेती हैं। तो इससे क्या होता है कि आहार में बहुत ज़्यादा उन्हें खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और बत्तखें जो होती हैं बहुत कम बीमार पड़ती हैं। तो देखा जाए तो ये बहुत ही लाभदायक होता है किसानों के लिए।
0: जी हाँ, आपने सही बताया सुनीता जी, कि बत्तख जो है वो पानी में तैरने वाले जो भी प्राकृतिक भोजन है उन्हें वो लेती हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं जो भी बत्तख पालन का व्यवसाय करते हैं तो उनकी चारे की लागत में कमी जरूर हो जाती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं श्रोताओं, कि बत्तख के जो अंडे हैं वो काफ़ी महंगे भी हैं, पौष्टिक भी हैं, गुणकारी भी हैं, तो और साथ ही साथ बड़े भी हैं। मुर्गियों के अंडे की अपेक्षा ये काफ़ी बड़े भी होते हैं। तो श्रोताओं, यदि आप अच्छे नस्ल वाले अंडा देने वाले यदि अगर आप बत्तख का चयन करते हैं तो आपको नियमित रूप से बत्तख के जो अंडे हैं वो प्राप्त होते रहेंगे। बत्तख के अंडे जो हैं वो आकार में बड़े भी होते हैं, और कई जगह पर देखा जाए तो या निश्चित रूप से प्राय सभी जगह इनकी जो मांग है अच्छी खासी बनी रहती है।
1: मुर्गियों के अंडे की अपेक्षा इनकी मांग ज़्यादा होती है, क्योंकि ये ज़्यादा पौष्टिक होते हैं।
0: जी बिल्कुल, तो निश्चित रूप से सोचता हूँ इस अंडे के व्यवसाय से भी आप नियमित आय को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ बात हम करते हैं बत्तख के मांस के बारे में, तो बत्तख के मांस के लिए भी बत्तख को पाला जाता है। सोचता मांस देने वाली नस्लों को यदि हम उचित आहार दें तो अच्छी इसकी वृद्धि भी होती है, और देखा जाता है कि त्यौहार हो, समारोह हो या स्थानीय बाजार हो, तो बत्तख के जो मांस है उसके बेहतर दाम भी हमें मिल पाता है।
1: वो महंगी कीमत मिल जाती है। और लेकिन देखिए, ये जो व्यवसाय है तभी फल फूल सकता है या लाभदायक बन सकता है जबकि वे बत्तख के रख रखाव पर भी थोड़े बहुत ध्यान रखें। तो श्रोताओं, ध्यान दें कि जहाँ भी आप बत्तख पालन कर रहे हैं तो तालाब के आसपास करें, इससे आपको आसानी होगी। दूसरी बात कि आप जहाँ बत्तखें रहती हैं वहाँ पे स्थान जो है सूखी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, जिससे कि उनमें रोग लगने की जो संभावना है वो नहीं के बराबर हो। इतना ही नहीं श्रोताओं, अगर कोई भी बत्तख अगर बीमार पड़ जाती हैं तो तुरंत उसे अन्य बत्तख से अलग रख दें, और पशु चिकित्सक से मिलकर जरूर उसका निराकरण करें समय रहते, और अगर ज़रूरत हो तो आप उन्हें टीका भी दे सकते हैं। अच्छा होगा कि आप उन्हें समय पर टीकाकरण करवा दें। और इतना ही नहीं श्रोताओं, आहार में तो संतुलित आहार यदि उसे दिया जाता है तो वे कम बीमार पड़ेंगे और हिस्ट पुष्ट रहेंगे। तो कुछ बातों का, बस थोड़ी बहुत बातों पर उन्हें जरूर ध्यान देनी चाहिए।
0: कुल मिलाकर यदि देखा जा श्रोता हो तो बत्तख पालन जो है कम निवेश में शुरू करने वाला है, बहु उपयोगी एक व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आपको अंडा, मांस और बत्तख के बच्चे के साथ साथ यदि समेकित मछली पालन करते हैं तो कई स्रोतों से आय की बढ़ोतरी हो जाती है। उचित नस्ल का चयन करना जरूरी है, साथ ही साथ संतुलित आहार, स्वच्छता, रोग पर नियंत्रण, बाजार का प्रबंधन, इन सब चीज़ों को किया जाए तो बत्तख पालन स्वरोजगार के लिए बहुत ही लाभदायक एक व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। और देखा जाए श्रोताओं तो छोटे और

0: सीमांत किसान हैं, तो उनके आय बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। तो श्रोताओं, ये तो थी बातें बत्तख पालन से अतिरिक्त लाभ, और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं कृषि विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे से ली गई भेंटवार्ता। विषय है गुट्टी विधि से नए पौध की तैयारी, और इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
1: खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे, चौपाल में उपस्थित सभी किसान भाई बहन, बालकों, बुजुर्गों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाणी में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे नए पौध तैयारी की, और किस प्रकार हम नए पौध तैयारी करें, कौन सी विधियां लगाएं जिससे हम अधिक से अधिक पौध उत्पादन करके और खेतों में उसे लगा सकें। और वो विधि है किसान भाइयों गुटी विधि, जिस पर विस्तृत जानकारी आज हमारे साथ साझा करेंगे पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र प्रबंधक

0: जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गुट्टी विधि से नए पौध की तैयारी, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे कृषि विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और अब श्रोताओं आइए जानते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। जी हाँ श्रोताओं, आज का चर्चा का हमारा विषय ही है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। जी हाँ श्रोताओं, इसे हम PMKSY के नाम से भी जानते हैं और यह भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसकी शुरुआत 2015 में की गई। इसका उद्देश्य था प्रत्येक खेत तक सिंचाई की सुविधा पहुंचना, जल के उपयोग की दक्षता को बढ़ाना और हर खेत को पानी सुनिश्चित करना। भारत जैसा कि एक कृषि प्रधान देश है श्रोताओं, और यहाँ पर हमारे जो भी किसान भाई हैं प्रायः वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं और अनियमित वर्षा और सूखे की स्थिति में फसल का उत्पादन काफ़ी प्रभावित होता है। तो इसी समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई।
1: और देखिए कल्याण जी, प्रति बूंद अधिक फसल इसका उद्देश्य है। तो इस घटक के अंतर्गत डीप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाना भी है ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके और इस तकनीक से पानी की बचत भी हो सके। और इससे इतना ही नहीं, फसल की गुणवत्ता भी बरकरार रहती है और उत्पादन भी अधिक मिलते हैं। तो ये भी एक उद्देश्य है कि किसान भाई ड्रिप सिंचाई विधि का अधिक से अधिक प्रयोग करें और पानी की बचत करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। और इसका उद्देश्य है जल संरक्षण भी, साथ ही साथ मिट्टी के कटाव को रोकना भी और जल संसाधनों का अतिरिक्त

0: प्रयास करना ताकि भविष्य के लिए पानी उपलब्ध हो सके हमारे किसान भाइयों को।
1: जी अशोतो, सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलने से ही हमारे किसान भाई की फसल के उत्पादन बढ़ सकती है। पानी की बचत होने से ही खेती की जो लागत है वो प्रायः कम होती है, साथ ही साथ सूखे और अनियमित वर्षा के प्रभाव को भी हम कम कर सकते हैं। इससे हमारे किसान भाई के आय में स्थिरता भी आती है और कृषि अधिक लाभदायक बनती है। श्रोताओं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को भी बढ़ाती है। जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण, सिंचाई उपकरणों की स्थापना, रख रखाव से स्थानीय लोगों को काम भी मिलता है। इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी मजबूती मिलती है श्रोताओं, और साथ ही साथ हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ चुनौतियाँ भी होती हैं।
0: और देखिए कल्याण जी, आज जो है जल संकट एक गंभीर चुनौती है, सब विश्वव्यापी समस्या बन चुका है ये। तो इसीलिए प्रत्येक किसान को चाहिए कि वह अपने खेतों में मेड़बंदी करे ताकि वर्षा का जो जल है वो खेतों में रुक सके, साथ ही साथ वर्षा जल का संचयन करे, खेत तालाब या पोखर तालाब जो भी हो अपने खेतों में जरूर बनाए या आसपास बनाए ताकि पानी का
1: संचयन हो
0: और पानी का जो उपयोग हो वो काफ़ी सोच समझ कर यानी विवेकपूर्ण तरीके से उसको खर्च करें या व्यय करें। तो इस प्रकार से उनका सहयोग इतना ही नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सिंचाई तक ही होनी चाहिए, बल्कि भविष्य को देखते हुए उन्हें इसके संरक्षण पर भी ध्यान देनी चाहिए और इसकी बचत पर भी ध्यान देनी होगी
1: निश्चित रूप से। और जल संरक्षण की जब हम बात करते हैं सुनीता जी, तो निश्चित रूप से हमें इस क्षेत्र में जागरूक होने की भी ज़रूरत है, और यदि हम जागरूक रहते हैं तभी हम आधुनिक सिंचाई तकनीकों को भी अपनाएंगे, जल संरक्षण को भी अपनाएंगे, और साथ ही साथ उन स्थानों को भी हम चिन्हित करेंगे जहां पर इन संसाधनों की कमी है और उन तकनीकों की जानकारी की अभाव की समस्या को भी हम खत्म करेंगे। ज़रूरत है कि कुछ जागरूकता होने की, जानकारी होने की। तो निश्चित रूप से इसमें हमारे जो किसान भाई हैं वो काफ़ी इसके प्रति अभी के समय देखा जाए तो लोग जागरूक भी हो चुके हैं और लोग कहीं ना कहीं जल संरक्षण के प्रति भी चिंतित हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल समस्या
0: गंभीर
1: समस्या होने वाली है। तो निश्चित रूप से इसके लिए काफ़ी चुनौतियाँ भी हैं।
0: तो देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कई उद्देश्य हैं और उन सभी पहलुओं पर जरूर ध्यान दें हमारे किसान भाई और इसका लाभ भी लें, है ना
1: जी।
0: तो चलिए देखिए कल्याण जी, अब समय हो चला है कि हम अपने किसान भाइयों को जल्दी से एक लोकगीत सुनवा दें।
1: जी बिल्कुल।

0: इसी लोकगीत के साथ समय हो चला है कि हम आपसे ले विदा कार्यक्रम खेती बाड़ी से। तो सुनीता को दे इजाजत
1: और कल्याण को भी दे इजाजत। नमस्कार
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए, अब समय हो चला है ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम जननी का। तो जननी कार्यक्रम सुनने वाली तमाम श्रोता बहनों को सुनीता का नमस्कार
1: और साथ ही कल्याण कुमार का भी नमस्कार।
0: तो बहनों, आज देखिए, हर महिलाएं जो हैं उनका ये सपना होता है कि वे स्वावलंबी हो, अपने पैरों पर खड़ी हो, ताकि वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को उड़ान दे सके और अपना एक अलग पहचान बना सके। महिलाओं को सपनों को साकार करने में स्वयं सहायता समूह की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसी महिला जो अपने सपने को साकार नहीं कर पा रही हैं, जिनके पास पूंजी का अभाव है, वे भी किसी भी काम से जुड़ सकती हैं और अपने जो सपने हैं उसको साकार कर सकती हैं। इसमें बहुत बड़ी भूमिका है स्वयं सहायता समूह का। वे स्वयं सहायता समूह से जुड़े और इसका लाभ ले। तो आइए बहनों, अब विस्तार से हम लोग देखेंगे कि स्वयं सहायता समूह के क्या क्या लाभ हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, स्वयं सहायता समूह, जिसे हम SHG के नाम से भी जानते हैं, और इसमें प्रायः 8 से 12 या 15 महिलाएं शामिल होती हैं। यहाँ पर लोगों को, महिलाओं को एक संगठित, छोटे स्तर पर संगठित किया जाता है, और इस संगठन के कई बातें होती हैं। सर्वप्रथम इनका एक ही उद्देश्य होता है कि हमें अपनी गरीबी को हटाना है, अपने आप को दक्ष बनना है। तो इसके लिए अपने एक नियमित बैठक के द्वारा बचत करना सीखती है।
0: हाँ देखिए, जब महिलाएं इस समूह से जुड़ती हैं तो कुछ न कुछ आय का उपार्जन करती हैं, और जब आय उनके हाथों में आती है तो वो कुछ न कुछ बचत करना भी सीख लेती हैं, और इस बचत को वो जो है बैंक में ऋण के लिए भी वे इसके लिए शुरुआत कर सकती हैं। और ऋण लेकर महिलाएं बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, सिलाई कढ़ाई, मशरूम उत्पादन, सब्जी खेती, यानी जो भी उनकी सुविधा अनुसार कोई भी छोटे मोटे काम वो शुरू कर सकती है और अपनी आय को बढ़ा सकती है, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकती है।
1: स्वयं सहायता समूह को भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा भी कई तरीके से प्रोत्साहित किया जाता है। स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को प्रशिक्षण देना कि किस तरीके से आप बचत कर सकते हैं, और बचत के बाद आपसी विचार विमर्श के द्वारा उन रुपयों का अपने सदस्यों के बीच कैसे लेन देन करना है, और साथ ही साथ बैंक से भी इन समूह को जोड़ा जाता है, और बैंक से समूह से जुड़ने के पश्चात इन समूह के महिला, जो भी उन महिला सदस्य होती है, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें लोन उपलब्ध कराया जाता है। और सबसे जो मुख्य बात है श्रोताओं, कि इसमें जो ब्याज की दर है प्रायः कम होती है। आकस्मिक कभी ज़रूरत पड़ती है तो कई बार अपने जो भी गांव या पंचायत के जो सेठ साहूकार होते हैं, उनसे काफ़ी मोटी सूद पर हमारी जो ग्रामीण महिलाएँ जो है प्रायः लोन लेती थी। तो उन सब समस्याओं से निजात दिलाने के लिए यह स्वयं सहायता संगठन या स्वयं सहायता जो समूह है काफ़ी कारगर साबित हो रहा है।
0: ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कल्याण जी, कि साहूकारों से बचने के लिए, उनके चंगुल से बचने के लिए ही सरकार इस योजना की शुरुआत की है, ताकि महिलाएं कम से कम ऋण लेकर

किसी रोज़गार को शुरू कर सके। और सबसे बड़ी बात तो ये है बहनों कि आज गांव हो या शहर, हर महिलाएं चाहती है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो। और आज गांव में भी देखा जाए तो हर महिलाएं कुछ ना कुछ किसी काम से जुड़ी हुई

0: उत्पादन है, जैसे कि टोकरी बनाना, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, पापड़ अदौरी बनाना, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे हैं काम और भी हैं। तो अपने इच्छा अनुसार बहनें उसका चुनाव कर सकती हैं और अपने इच्छा अनुसार वो उसमें सहयोग देकर अपने आय को बढ़ा सकती हैं।
1: जी हर्षतों, और साथ ही साथ जैसा कि हमने आपको बताया कि इन समूह को सशक्त करने के लिए कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी हैं जो इन प्रत्येक महिलाओं को दक्ष बनाती हैं, चाहे वो मार्केटिंग की बात हो, चाहे बाजार में बेचने की बात हो, चाहे पैसे की रख रखाव की बात हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी की बात हो, उन सभी चीज़ों में इन्हें दक्ष बनाया जाता है। और हम सब जैसा कि अभी देख पा रहे हैं कि जो भी ग्रामीण परिवेश की जो भी महिलाएं हैं काफ़ी बढ़ चढ़ कर कुटीर उद्योग में और साथ ही साथ अन्य कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। तो निश्चित रूप से महिलाओं का स्वयं सहायता समूह से जुड़ने से काफ़ी उत्थान हो रहा है।
0: इतने ही नहीं कल्याण जी, देखा जाए तो आज महिलाएं अपनी इच्छा अनुसार, आवश्यकता अनुसार उन पैसों को खर्च कर रही हैं।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि परिवार को चलाना, बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए हो, या फिर बच्चे के शादी ब्याह हो, या फिर कोई आकस्मिक घटना हो, इस तरह की कई बातें जो हैं जहां महिलाएं अपने इच्छा अनुसार वो अपने खर्च कर सकती हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि अगर महिलाएँ मजबूत होती हैं तो फिर उनकी जो आत्मविश्वास है वो तो बढ़ ही जाती है, और जब आत्मविश्वास बढ़ती है तो उन्हें और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और जब चार लोगों के बीच में महिलाएं बैठती हैं तो उनमें आपस में विचारों का आदान प्रदान होता है, तो इससे भी उनमें और अधिक बल मिलता है और उनकी जो आँखें हैं वो खुलती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो समूह से जुड़ने से उन्हें एक नहीं कई तरह के फायदे होते हैं। और सचमुच में जो महिलाएं अभी तक जिन्हें आगे बढ़ने के जो शौक रखती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, वे जरूर जुड़े इस समूह से और इसका लाभ लें।
1: जैसा कि जानकारी प्राप्त है सुनीता जी कि कई ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर स्वयं सहायता समूह की सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है कि वहाँ पर किसी बात का डिसीजन हो, निर्णय लेने की बात हो, तो वहाँ पर स्वयं सहायता समूह की महिला की उपस्थिति जरूरी हो जाती है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार से करने से कहीं ना कहीं महिलाओं की जो सामाजिक स्तर है वो काफ़ी बेहतर होते जाने जा रही है, उनको एक सम्मान मिल रहा है, और इन सम्मान के साथ साथ उन महिलाओं में एक आत्मविश्वास की भी बढ़ोतरी होते जा रही है। तो निश्चित रूप से आत्मविश्वास जब बढ़ता है तो काम करने की दक्षता और भी बेहतर होते चले जाते होते हैं। तो निश्चित रूप से महिलाएं, आप अगर अभी तक स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाएं और जुड़कर इसका लाभ लें। जरूरत दो बातों का है, पहली बात नियमित रूप से बचत करना और साथ ही साथ नियमित रूप से बैठक में उपस्थिति दर्ज कराना। जब ये दोनों काम आप करते हैं तो आप देखेंगे कि काफी तरीके से जो वहां पर जो जो चीजें होती हैं तो उससे आपके जीवन में भी बदलाव आते चला जाएगा। तो बातें ये तो थी स्वयं सहायता समूह की, और अब आइए सुनवाते हैं एक भेंटवार्ता। विषय है जैविक खाद और भेंटवार्ताकार है कृषि विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे, और इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष।

0: भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का अर्थ है कृषि विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और श्रोताओ भाइये,
1: और हम बातें करेंगे
0: जी
1: कि अभी हम लोग जैसे कि महिलाओं के आत्मनिर्भर की बात कर रहे थे
0: जी, बिल्कुल।
1: तो महिलाएं जो हैं वो निश्चित ही कृषि में अपना सहयोग तो देती ही है, और महिलाओं के बिना कृषि कार्य संभव ही नहीं है। और देखिए, सब्जियों का जो उत्पादन है उसमें भी महिलाओं का बढ़ चढ़ कर हिस्सा होता है, क्योंकि सब्जियों की जो खेती है सालों भर होती है और इससे सालों भर उन्हें आय का स्रोत बना रहता है। तो आज सब्जियों की खेती करना कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय साबित हो रहा है, और यदि महिलाएं परिवार को देखते हुए इस व्यवसाय से जुड़ती है तो बहुत कम श्रम में उन्हें ये अच्छा व्यवसाय साबित हो सकता है उनके लिए। लेकिन यदि वे व्यवसाय शुरू करती हैं तो कुछ बातों का ख्याल जरूर रखें, जैसे कि अगर वे घर के आसपास खाली ज़मीन का प्रयोग करती हैं, या घर के पीछे जो बाड़ी होता है या खेत के छोटे हिस्से होता है उसमें शुरुआत करती हैं, तो इसमें उन्हें अधिक पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अपने आप जलवायु के अनुसार, मांग के अनुसार उसमें टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, लौकी, कद्दू, खीरा, पालक, जो भी मौसमी साग सब्जियां हैं उसे लगा सकती हैं। और यदि लत्तर वाला सब्जियां लगाती हैं तो उसमें और भी कम जगह की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन
0: और साथ ही साथ श्रोताओं, जब भी आप सब्जियों की खेती करते हैं तो अच्छी नस्ल के बीजों का चयन करें, और उन बीजों के साथ साथ वैसी किस्म का चयन करें जो रोग प्रतिरोधी हो, क्योंकि रोग के कारण सब्जियों का उत्पादन, सबके उत्पादन के पूर्व ही जो है वो कीट पतंगे या रोग व्याधियों के कारण वो काफ़ी हद तक नष्ट हो जाते हैं। तो जब भी आप चयन करें तो रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें, के प्रकार के किस्मों का चयन करें, और अच्छी नस्ल के ही बीज या अच्छे किस्म के बीज
1: का प्रयोग करें। और देखिए बहनों, आप जब भी खेतों में उर्वरक का प्रयोग करती हैं तो ध्यान रहे कि सब्जियों के लिए बर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर के सड़े हुए खाद या कंपोस्ट खाद यानी जैविक खाद का प्रयोग करें, तो इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, खेतों में लागत कम आएगी, और साथ ही साथ इससे आपके जो बाज़ारों में इसको उत्पादित, जब आप उत्पादन बेचने जाएंगे बाज़ारों में तो इसे महंगे कीमत में मिलेगी। तो जब भी आप खेती करते हैं तो कोशिश करें कि अधिक से अधिक जैविक खाद का प्रयोग करें, जिसमें कीट पतंगे और रोग लगने की संभावना भी कम हो जाती है, और साथ ही साथ इससे पर्यावरण भी शुद्ध रहता है। सिंचाई का भी प्रबंध होनी चाहिए, यदि ड्रिप सिंचाई की आप ड्रिप सिंचाई से भी सिंचाई करती हैं तो इसमें जल का तो बचत होगा ही, साथ ही साथ ये सब्जियों को आवश्यकता अनुसार इसमें सिंचाई कर सकती हैं, कम पानी में अच्छी प्रकार से इसमें सिंचाई हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि आप ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करें, और जल निकास की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, नहीं तो सब्जियां जो है जहां जल का जमा होता है सड़ गल सकती हैं और इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।
0: बात जब नुकसान की है सुनीता जी, तो हम श्रोता भाई को ये बताना चाहते हैं कि सब्जियों का सबसे ज़्यादा जो खराब जो होने की जो बातें आती हैं, तो वो खराब चाहे वो सड़ने के कारण हो या किसी प्रकार से हो, तो वो खराब होने के कारण ही काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये बर्बाद होती है। तो इसलिए श्रोताओं, सब्जियों के उत्पादन के पश्चात अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए उन्हें साफ, स्वस्थ और बिना चोट वाली अवस्था में ही उस सब्जियों को चुनें। सब्जियों को धोने के पश्चात अच्छे तरीके से उसे सुखा कर रखें। यदि पत्तेदार सब्जियाँ हों तो उसमें नमी बनाए रखने वाले जो भी छेददार जो थैले होते हैं उसमें उन्हें रखें। आलू, प्याज और लहसुन को सूखी, हवादार और अंधेरी जगह पर रखें। और यदि टमाटर, गाजर, फूलगोभी जैसे सब्जियां हों तो उनके लिए उचित तापमान पर रखें, जिसके लिए अगर आपके घर में या बड़े स्तर पर रेफ्रिजरेटर है तो वहां उन्हें रख सकते हैं। श्रोताओं, यदि सड़ी या खराब सब्जियाँ हों तो उन स्वस्थ सब्जियों से इन्हें तुरंत अलग कर दें। सब्जियों को सीधे धूप, अधिक गर्मी और नमी से बचाएं, और साथ ही साथ श्रोताओं, नियमित रूप से अपने सब्जियों की जांच करते रहें। और इसे करने से श्रोताओं, निश्चित रूप से जो नुकसान की जो बात आती है, सड़ने गलने की जो बात आती है, और इससे जो होने वाले जो आर्थिक नुकसान की बात आती है, तो वो काफ़ी कम हो जाती है
1: जी। तो बहनों, ये आप जरूर कुछ कुछ बातों का ध्यान रखें,

0: सब्जियों को उत्पादन करना ही काफ़ी नहीं होता है, उसे सुरक्षित रखना भी और बाजार तक ले जाना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तभी आपको उसका पूरा पूरा लाभ मिल पाएगा। तो देखिए बहनों, अब समय हो चला है कि हम आपसे ले इजाज़त कार्यक्रम जननी से, तो हमें दे इजाज़त।
1: नमस्कार।

अभी हमारे बहनें सुन रही थी कार्यक्रम जननी, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला प्रसारण रांची केंद्र से होगा, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल बस कुछ ही पलों में।

0: चल अपना कार्ड और पिन दे।
1: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
1: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।
4: हर घर

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

0: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
1: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आँखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन

0: 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
1: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
0: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। छात्रों के आंदोलन पर सियासत तेज, भाजपा ने 20 अगस्त के घेराव को दिया नैतिक समर्थन। छात्रों ने की मुख्यमंत्री से बातचीत की अपील। झामुमो बोला, संवाद को सरकार तैयार। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की SIR कार्यों की समीक्षा। शुद्ध और त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने के साथ दावे आपत्तियों के समयबद्ध निस्तारण के दिए निर्देश। खान और खनिज संशोधन विधेयक के खिलाफ महागठबंधन के घटक दलों ने झारखंड के हितों की अनदेखी का लगाया आरोप। राज्य भर में आंदोलन की दी चेतावनी। मौसम विभाग ने राज्य में 19 अगस्त तक बारिश के साथ वज्रपात और मेघ गर्जन की जताई संभावना। राजधानी रांची समेत अधिकतर जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। और राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की जीत से शुरुआत। पहले मुकाबले में चंडीगढ़ को 6-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। JPSC और JSSC की परीक्षाओं को रद्द करने और कथित गड़बड़ियों की CBI से जांच की मांग पर बैठे छात्रों के आंदोलन का आज 23वां दिन है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि आगामी 20 अगस्त को छात्रों के मुख्यमंत्री आवास घेराव को भारतीय जनता पार्टी का नैतिक समर्थन है। उन्होंने राज्य सरकार से जिद छोड़कर छात्रों की जायज मांगों को मान लेने की अपील की है।
1: बच्चों की उन मांगों को मान लेनी चाहिए। क्या है, जांच ही तो होगी, आखिर सुधारने का कोई तो हमें प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। इसलिए अगर जिन लोगों ने JSSC हो JPSC हो जिन लोगों ने गड़बड़ किया है वो अंदर जाएंगे। मुख्यमंत्री को जिद पर नहीं आना चाहिए।
0: इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने कहा है कि छात्रों से संवाद के लिए राज्य सरकार का दरवाजा हमेशा खुला है, लेकिन मुख्यमंत्री आवास घेराव के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
2: छात्र शांति प्रिय तरीके से आंदोलन करें, अपनी बातों को रखें। वार्ता के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री या हमारी सरकार का द्वार हमेशा खुला है। क्या आज हम TGL की परीक्षा रद्द कर दें तो वो अवमानना नहीं होगा कोर्ट का? और मैं समझता हूँ छात्रों की मांगे अगर जायज है तो एक बार छात्र का रुख भी कर सकते हैं, और हम मुझे लगता है किया भी होगा। 4-4 मंत्रियों की कमेटी बनी और वो लगातार बात उन्होंने किया, लेकिन किसी एक बिंदु पर हठधर्मिता अगर होगी तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी।
0: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों से बातचीत कर उनकी मांगे मानने की अपील की है। आज एक प्रेस वार्ता में छात्रों ने कहा कि वे पुतला दहन या मुख्यमंत्री आवास का घेराव नहीं करना चाहते हैं।
3: हम लोग JSSC CGL और JPSC का जो भी मांग किए उसको जल्द से जल्द पूरा करिए मुख्यमंत्री जी। हमारे भाई बहन जो भूख हड़ताल है उनको आप अनशन तोड़वाने की दिशा में हमारी मांग पूरा कीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी बात यदि आप जल्दी मानते हैं, मैं तो चाहूंगा कि आज तत्काल वार्ता हो जाए। राजनीतिक एंगल से नहीं करने देंगे, और कोई यदि इस प्रकार की मंशा रखता है तो उसको भी हम लोग एक्सपोज करने का काम करेंगे। हम लोग विशुद्ध रूप से छात्र हैं, हम लोग वापस लाइब्रेरी जाना चाहते हैं, अपने रूम जाना चाहते हैं।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की मासिक बैठक रामगढ़ में हुई, जिसमें संगठन की आगामी रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में छात्र आंदोलन को भी प्रमुख मुद्दे के रूप में उठाया गया। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि छात्र आंदोलन समेत विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर बैठक में विचार विमर्श हुआ। वहीं हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने छात्रों पर अत्याचार और वर्ष 2025 में भी प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाया। धनबाद में आज कांग्रेस पार्टी की समीक्षा बैठक में आगामी चुनावों को देखते हुए पंचायत, वार्ड और बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने की रणनीति बनाई गई। प्रदेश प्रभारी के राजू ने जमीनी स्तर पर संगठन की सक्रियता बढ़ाने की बात कही, जबकि स्थानीय मुद्दों पर जन आंदोलन तेज करने की जिम्मेदारी बड़का गांव से पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को दी गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री

0: इरफान अंसारी ने कहा कि कांग्रेस छात्रों की मांगों के साथ खड़ी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची जिले के सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ एसआईआर कार्यों की समीक्षा कर शुद्ध, त्रुटि रहित और समावेशी मतदाता सूची बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने एक परिवार के सभी मतदाताओं के नाम एक ही मतदान केंद्र में रखने और नजरी नक्शा, गृह संख्या और नेशनल नंबर का सही सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही श्री कुमार ने लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी। झारखंड बिजली वितरण निगम ने कहा है कि कल से राज्यभर में बिजली खंभों पर लगे असुरक्षित और अनधिकृत टेलीकॉम और केबलों को हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। निगम ने संबंधित कंपनियों को केबल और उपकरण सुरक्षा मानकों के अनुरूप व्यवस्थित करने के लिए आज तक का समय दिया था। अब निर्धारित समय तक सुधार नहीं होने पर केबल हटाने का खर्च संबंधित कंपनियों से वसूला जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। संसद से पारित खान और खनिज विकास और विनिमयन संशोधन विधेयक के खिलाफ आज रांची में महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई और सीपीआईएमएल ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता में कहा कि इस विधेयक के खिलाफ पूरे झारखंड में आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश राजद की उपाध्यक्ष अनिता यादव ने कहा कि इस विधेयक से झारखंड के हितों की अनदेखी होगी।
1: जिस तरह से खनन खनिज संशोधन बिल लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ बैठ कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ झारखंड सरकार के लिए नहीं, हर एक झारखंडी के लिए ये खतरे की घंटी है, और अगर आज हम नहीं चेते तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी आने वाला है।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ जिले की इलामी पंचायत में डीएमएफटी मद से बनी पीसीसी सड़क और गार्ड वॉल निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने नीट यूजी 2026 के आधार पर आज राज्य मेडिकल काउंसिलिंग के लिए 3,227 अभ्यर्थियों की स्टेट मेरिट लिस्ट जारी की है। इसके तहत एमबीबीएस, बीडीएस और बीएचएमएस पाठ्यक्रमों में नामांकन होगा। अभ्यर्थी 19 अगस्त तक पसंद के कॉलेज और पाठ्यक्रम के लिए चॉइस फिलिंग कर सकेंगे, जबकि 20 अगस्त को इसमें संशोधन किया जा सकेगा।
2: छात्र आधिकारिक यूजी
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं।
2: छात्र आधिकारिक यूजीसी नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं। प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने के लिए ₹200 प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। छात्रों को प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 18 तारीख है। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित सूचनाओं पर ही भरोसा करें। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने राजधानी रांची, रामगढ़ और हजारीबाग समेत राज्य के अधिकतर जिलों में 19 अगस्त तक बारिश के साथ गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कल और परसों राज्य के अधिकतर जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 में हॉकी झारखंड ने शानदार शुरुआत करते हुए अपने पहले मैच में हॉकी चंडीगढ़ को 6-0 से हरा दिया। पुणे में खेले गए इस मुकाबले में झारखंड की ओर से पुष्पा डांग ने 2 गोल किए, जबकि एस्थिर होरो, सरोज मुंडरी, जमुना कुमारी और संगीता कुमारी ने 1-1 गोल दागा। कप्तान रजनी केरकेट्टा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छात्रों के आंदोलन पर सियासत तेज, भाजपा ने 20 अगस्त के घेराव को दिया नैतिक समर्थन, छात्रों ने की मुख्यमंत्री से बातचीत की अपील, झामुमो बोला संवाद को सरकार तैयार। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की SIR कार्यों की समीक्षा, शुद्ध और त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने के साथ दावे आपत्तियों के समयबद्ध निस्तारण के दिए निर्देश। खान और खनिज संशोधन विधेयक के खिलाफ महागठबंधन के घटक दलों ने झारखंड के हितों की अनदेखी का लगाया आरोप, राज्य भर में आंदोलन की दी चेतावनी। मौसम विभाग ने राज्य में 19 अगस्त तक बारिश के साथ वज्रपात और मेघ गर्जन की जताई संभावना, राजधानी रांची समेत अधिकतर जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। और राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की जीत से शुरुआत, पहले मुकाबले में चंडीगढ़ को 6-0 से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पाकुड़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे पाकुड़ संवाददाता।
1: पाकुड़ जिले के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में हर घर तिरंगा अभियान चलाकर लोगों में राष्ट्रीय एकता, अखंडता सहित देश प्रेम की भावना जगाने का काम किया गया। इस पर बात की भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री रूपेश भगत ने।
2: नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान सह तिरंगा यात्रा का आयोजन 9 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक पूरे देश भर में किया जा रहा। उसी क्रम में आज पाकुड़ जिले के कार्यकर्ताओं द्वारा भी तिरंगा यात्रा सिद्धू कानू पार्क से निकाला जा रहा है और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं।
1: विश्व आदिवासी दिवस पर पाकुड़ में जिला प्रशासन के अलावे झारखंड मुक्ति मोर्चा, संथाल परगना हूल समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन द्वारा रविंद्र नगर भवन में आयोजित आदिवासी महोत्सव के मौके पर आदिवासी कलाकारों ने अपनी परंपरा, धरोहर, संस्कृति से संबंधित नीत गीत प्रस्तुत किया। इस पर बात की उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने।
3: आदिवासी दिवस है और यहाँ पे हम लोग की महोत्सव मना रहे हैं फाइनली। और अंदर का जो टीम था जो भी हमारे मिर्गायु और नस्ल है वो सम्मानित कर रहा है। जो अभी हम लोगों ने आंगनबाड़ी से देखकर हाइका और हमारी रेने मुसैया जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम लोगों ने सम्मानित किया। यहाँ पे मैसेज तो यही है कि जो हमारा ट्रेडिशनल वैल्यूज है, आदिवासी समाज का जो जीवन जीने की जो शैली है, उसको हम लोग भी अपने जीवन में लागू करें, उतारें।
1: झारखंड लोक सेवा आयोग एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय के सामने धरना दिया। इस पर बात की जेकेएलएम के मार्क बास्की ने।
4: टीडीपीएल एजेंसी के चयन स्तरीय जांच हो, दूसरा है जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो, तीसरा है TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को निरस्त कर पुनः आयोजित किया जाए, चौथा है परीक्षा प्रक्रिया का संचालन स्वयं आयोग द्वारा किया जाए, पांचवा है 11वीं 13वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का ऑनलाइन मूल्यांकन की जांच, छठा है 14वीं एपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को निरस्त कर पुनः आयोजित करने के संबंध, सातवां है झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किसी भी निजी एजेंसी के माध्यम से ना कराकर आयोग स्वयं अपनी प्रत्यक्ष निगरानी और नियंत्रण में कराए, आठवां है झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित उक्त सभी परीक्षाओं का जिनमें प्रश्न पत्र लीक, मूल्यांकन में अनियमितता, परीक्षा प्रक्रिया में धांधली अथवा अन्य भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं उनकी निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से कराई जाए, नौवां है आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की योग्यता आधारित नियुक्ति, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति केवल योग्यता, ईमानदारी, निष्पक्षता एवं उत्कृष्ट प्रशासनिक अनुभव के आधार पर, दसवां है उच्च स्तरीय चयन पैनल का गठन हो, ग्यारहवां है आयोग की संरचना में सुधार एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन पर विचार करें।

0: जिले में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों के अलावे राजनीतिक दलों के कार्यालयों में भी शान से तिरंगा फहराया गया। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़।
1: अभी आप सुन रहे थे पाकुड़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप हमारे रांची केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:15 बजे हैं। अब लीजिए पेश है गीत एवं गजलों का प्रोग्राम स्वरांजलि। आज इस प्रोग्राम के तहत हम आपको सुनवाएंगे गुलाम अली की गाई चंद गजलें।

गुलाम अली की आवाज़ में अभी आपने सुनी चंद गज़लें, और इसी के साथ स्वरांजलि कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम महुआ। इसके तहत आइए सुनते हैं विंध्यवासिनी देवी और साथियों को।

अभी आप सुन रहे थे लोक गायिका विंध्यवासिनी देवी को, और इसी के साथ लोक गीतों का कार्यक्रम महुआ अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब लीजिए पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से।

चित्रपट से कार्यक्रम सुन रहे हैं अभी आप, और हम आपको सुनवा रहे थे तेरे नाम फिल्म के कुछ गाने। आइए सुने वीर सारा फिल्म से कुछ गीत।

रूप कुमार राठौर और अलका लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म वीर ज़ारा में। और अब आइए सुनते हैं अगला गीत।

0: सिलसिला फिल्म में लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन को।
1: तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों

अभी जी पेश है। अभी आप सुन रहे थे द ट्रेन फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे आरडी बर्मन। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से, आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। आइए सुने अगला गीत।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे फिल्म द ट्रेन में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और इसकी तर्ज बनाई थी आर डी बर्मन ने। आइए अब सुनते हैं सच्चा झूठा फिल्म का गीत। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से होगा, जहां से आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार। प्रतीक्षा कीजिए।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी।

0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है।
0: श्री शाह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता है और गुजरात के किसानों ने इसे साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों की नस्लें राजस्थान के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भी अंतरित की। इससे पहले गृह मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका को अतुलनीय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है।
2: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary

0: disciplinary learning, creativity, entrepreneurship, and critical thinking. I am pleased to note SRM growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology, and sustainable development. These fields will shape the economics and the society's future.
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
2: लगभग 3 किलोमीटर लंबी यह रणनीतिक सुरंग कालीधार पर्वत श्रृंखला के बीच बनाई गई है। इसके शुरू होने से मौजूदा मार्ग में कठिन हिस्से को बाईपास किया जा सकेगा और यात्रा की दूरी करीब 13 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा का समय भी काफी कम होगा। यह सुरंग ऐसे समय में खोली गई है जब अखनूर से राजौरी होकर पुंछ जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए ही खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में 1950 बीमारियां शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉक्टर पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चिकित्सकीय मार्गदर्शन पर आधारित चिकित्सा पद्धति पर बल दिया है। नई दिल्ली में प्रोफेसर आनंद एन मालवीय और डॉक्टर प्रशांत कौशिक की पुस्तक रूमेटोलॉजी एसेंशियल्स अ न्यू फ्रंटियर फॉर एस्पायरिंग क्लिनिशियंस के विमोचन के अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिआयामी दृष्टिकोण अनावश्यक दवाओं का उपयोग करने, जांच कम करने, निदान में देरी को रोकने और ये सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि मरीज सही समय पर उचित विशेषज्ञ से परामर्श ले सके। राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
3: DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का

0: लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकरों और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जांच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
2: उड़ीसा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 49 ब्लॉक और 5 शहरी इलाके प्रभावित हैं और लगभग 2.37 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित इलाकों में करीब 293 राहत शिविर चल रहे हैं। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर जिलों में तैनात किया गया है, जबकि प्रभावित जिलों की मदद के लिए एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा गया है। भद्रक, केंदुझर और मयूरभंज जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीद होंगी। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches development projects worth over 6,400 crore rupees at Alwar in Rajasthan, asserts empowering youth, poor, women and farmers.

0: यानी छालिया दरामद करते थे, लेकिन उसे बांग्लादेश की पैदावार बताते थे। इत्तलात की बुनियाद पर DRI ने कोलकाता और विशाखापट्टनम में दरामद कार, कस्टम ब्रोकर्स और IES होल्डर्स से वाबस्ता कई मकामात पर बैक वक्त तलाशी की कार्रवाई की। इस दौरान कई ऐसे दस्तावेजात और दीगर शवाहिद मिले जिनसे साबित होता है कि सुपारी दर हकीकत जुनूब मशरकी एशियाई ममालिक से दरामद की गई थी। DRI के अफसरान ने तकरीबन 75 लाख रुपए नकद भी जब्त किए हैं। शुबा है कि यह गैर कानूनी तौर पर दरामद किए गए सामान की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम है। इसके अलावा तकरीबन 160 मेट्रिक टन सुपारी की एक खेप जब्त की गई है। मस्कुरा गिरोह के दीगर मेंबरान की शिनाख्त और उससे हुए नुकसान का पता लगाने के लिए तहकीकात जारी है। सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
1: भारत के महकमे मौसमियात IMD ने गंगाई, मगरबी बंगाल और उड़ीसा में कल के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसी तरह की सूरत हाल अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मशरकी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में आइंदा 2 दिनों के लिए जारी रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आसाम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कल शदीद बारिश होने की तवक्को है। उड़ीसा में ताज़ा सैलाब आने का अंदेशा है, क्योंकि शुमाल मगरबी खलीज बंगाल पर कम दबाव के हल्के में इजाफा होने का इम्कान है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। 49 ब्लॉक और 5 शहरी इलाके मुतासर हुए हैं, जबकि 2,37,000 अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। मुतासर इलाकों में तकरीबन 293 राहती कैंप काम कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी अनु गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने सैलाब से मुतासर अजला में हुक्काम को हिदायत दी कि वो ड्यूटी पर रहें और अपनी छुट्टियों को मनसूख कर दें। आकाशवाणी न्यूज भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हबीब रहमान।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जमैका के वज़ीर आज़म एंड्रयू हॉलनेस का भारत के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद देने के लिए शुक्रिया अदा किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत जमैका के साथ बढ़ती हुई दोस्ती की दिल से कदर करता है, नेज़ खुसूसी और करीबी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के तई पुरुम्मीद है। अमले, अवामी शिकायात और पेंशन के वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में कौमी अनुभव अवार्ड्स 2026 तफवीज करेंगे। अमले, अवामी शिकायात और पेंशन की वजारत ने कहा है कि इस तकरीब में पेंशन मित्र पर एक किताबचा और मुल्क गिर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLS मुहिम के लिए 5 रहनुमा खतूत भी जारी किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ कौमी शाहराह पर सुंगल टनल को आवाम के लिए खोल दिया गया है, जिसका तवील अरसे से इंतजार था। ये टनल राजौरी और पुंछ के 2 जिलों नेज मुत्तसिल इलाकों के साथ कनेक्टिविटी को बहुत ज्यादा बेहतर करेगी। सरहदी शाहराहों की तंजीम के जरिए तामीर करदा इस टनल को पहले 22 अगस्त को आवाम के लिए खोलने का प्रोग्राम था, अलबत्ता इसे यौम आज़ादी के तोहफे के तौर पर वक्त से पहले ही खोल दिया गया है। यह सारफीन को राहत फराहम करेगी और खित्ते में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
0: कालीधर रेंज से होकर गुजरने वाली 2.79 किलोमीटर तवील ये अहम टनल तामीर की गई है। ये मौजूदा रूट के मुश्किल हिस्से को बाईपास करेगी और तवक्को है कि इससे तकरीबन 13 किलोमीटर का सफरी फासला कम होगा। इसके अलावा ये सफर के वक्त में भी नुमाया कमी करेगी। अखनूर, राजौरी, पुंछ शाहराह पर सड़क चौड़ा करने और अपग्रेडेशन का काम तेजी के साथ जारी है, जिसके बायस ये टनल खोली गई है। सुंगल टनल की तामीर तकरीबन 600 करोड़ रुपए की तखमीनी लागत से की गई है। अब जबकि इस टनल को अवामी नकलो हरकत के लिए खोल दिया गया है, इस पर कुछ तामीरी और हतमी काम किया जा रहा है। फिलहाल सिर्फ छोटी गाड़ियों को इस टनल को इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है। भारी गाड़ियां, बसें और साजो सामान लाने ले जाने वाली गाड़ियों को अभी तक इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि इस पर अभी कुछ काम होना बाकी है। भारी गाड़ियों की नकलो हरकत को इस काम के पूरे होने के बाद आने वाले महीनों में आमदोरफ्त की इजाजत दी जा सकती है। आकाशवाणी न्यूज जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
1: यूक्रेन और रूस ने आज एक दूसरे पर मिसाइलों और ड्रोन्स के हमले किए, जिसमें दोनों जानिब कम से कम 11 अफराद हलाक हुए हैं। यूक्रेन ने इस जंग में अपने सबसे बड़े फजाई हमलों में से एक में पूरे रूस में सैकड़ों ड्रोन से हमला किया, इनमें 6 अफराद हलाक हो गए। 3 कस्बों पर हमलों के बाद रूस के जनूब मगरबी खित्ते में

5 अफराद हलाक हो गए। 150 से ज्यादा ड्रोन्स के हमलों में बहुत से घर और एक रेलवे स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि जंगल में आग भड़क उठी है। मास्को खित्ते में एक निजी घर पर यूक्रेन के ड्रोन के एक हमले में 48 साल शख्स हलाक हो गया। मास्को के गवर्नर ने भी इस बात की तस्दीक की है कि यूक्रेन के हमले में एक वेयर हाउस में आग लग गई। रूस की वजारत दिफा ने कहा है कि उसने रात के दौरान 822 यूक्रेन के ड्रोन्स को नाकारा बना दिया। FIH खवातीन हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने आज नीदरलैंड्स के एम्स्टेलवीन में ग्रुप मरहले के मैच में चीन के खिलाफ 2-2 से सनसनीखेज ड्रॉ के साथ अपने मुहिम का आगाज किया। नवनीत ने 8वें मिनट में भारत को इब्तदाई बर्तरी दिलाई, लेकिन चीन ने 15वें मिनट में जोंग यिंग के पेनाल्टी स्ट्रोक के जरिए गोल करके बराबरी कर ली। दीपिका ने 25वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल करके भारत की बर्तरी को बहाल किया। तीसरे क्वार्टर में चीन की मैनिंग ने 39वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर गोल करके स्कोर को 2-2 से बराबर कर दिया। भारत और चीन पूल डी में इंग्लैंड और जुनूबी अफ्रीका के साथ हैं। पूल से सरे फहरिस्त दो टीमें अगले राउंड में पहुंचेंगी। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप कल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारत इस आलमी चैंपियनशिप की 17 साल बाद मेजबानी कर रहा है। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, श्रेषा डेली और गायत्री गोपी चंद भारतीय दस्ते की नुमाइंदगी करेंगे। भारत को मर्दों के सिंगल्स, खवातीन के सिंगल्स, मर्दों के डबल्स और खवातीन के डबल्स में 2-2 एंट्रीज हासिल हुई हैं, जबकि मिक्स्ड डबल्स मुकाबले में 3 भारतीय जोड़ियां हिस्सा ले रही हैं। मर्दों के क्रिकेट में गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 9 विकेट पर 460 रन बना लिए थे। स्टंप्स होने तक प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव क्रीज पर मौजूद थे। इससे कबल देवदत्त पडिक्कल ने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी स्कोर करते हुए 167 रन बनाए। केएल राहुल ने 82 रन जबकि ध्रुव ड्रेल ने 51 रन बनाए। श्रीलंका की जानिब से प्रबोध जयसूर्या ने 4 विकेट जबकि केशरा नुवंथा ने 3 विकेट लिए। सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच कोलंबो में 23 अगस्त को शुरू होगा। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने राजस्थान के शहर अलवर में 6400 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। उन्होंने जोर दिया कि भारत को 2047 तक मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मकसद को हासिल करने के लिए नौजवानों, गरीबों, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाना लाजमी है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने तालिब इल्मों पर जोर दिया है कि वो मुल्क सबसे पहले के उसूल को अपनाएं और विकसित भारत 2047 के लिए तआवुन करें। भारत ने बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर सुपारी यानी छालिया की दरामद करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए का महसूलाती खसारा सामने आया है और 9 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। गंगाई, मगरबी बंगाल और उड़ीसा में कल बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे पर मिसाइलों और ड्रोन्स के हमले किए जिनमें दोनों जानिब 11 अफराद हलाक हुए हैं। हॉकी में नीदरलैंड्स में FIH खवातीन के आलमी कप में भारत ने चीन के खिलाफ 2-2 से मैच बराबर करके अपनी मुहिम का आगाज किया। और BWF आलमी चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। PV सिंधु और लक्ष्य सेन भारत की क्यादत करेंगे। बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, श्रेषा डेली और गायत्री गोपी चंद भारतीय दस्ते की नुमाइंदगी करेंगे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों रहा।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

आज एक ऐसी नायिका की दास्तां लेकर आई है आपकी ये रेडियो सखी, जिसके चेहरे में न जाने क्या है कि हम सब अनायास ही आकृष्ट हो जाते हैं। वे सचमुच बंगला सौंदर्य की स्वामिनी हैं। उनकी आवाज और संवादों की अदायगी में मीठा मीठा और नमकीन नमकीन बंगला स्वाद घुला है। आइए सलाम करें सादा सरल सहज और सुंदर अभिनेत्री राखी की प्रतिभा को।

बहुत बरस पहले की बात है, बांग्ला अभिनेत्री संध्या रॉय राणाघाट यानी पश्चिम बंगाल में अपने किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। माछेर झोल का स्वाद इस अभिनेत्री को ले आया अपने एक परिचित परिवार के घर, और ये घर था अभिनेत्री राखी का, जिन्हें संध्या राव को देखकर अभिनय की लौ लग गई।

15 वर्ष की उम्र में अभिनेत्री राखी का ब्याह हो गया अजय विश्वास से, जो कि एक फिल्म निर्माता और पत्रकार थे। सन 1968 में राखी अपने पति के पास मुंबई आ गईं। दरअसल एक दिन उनके पति ने अपने ही निर्देशन में बनने वाली फिल्म में राखी को भूमिका देने से इनकार कर दिया। दोनों के बीच यहीं से दूरियां बढ़ने लगी। उन दिनों राखी ने मुंबई में मॉडलिंग और डबिंग जैसे काम किए। थोड़े समय संघर्ष के बाद फिल्म जीवन मृत्यु से राखी की जिंदगी झिलमिल सितारों का आंगन बन गई।

जीवन मृत्यु के बाद राखी के पास फिल्मों का अंबार लग गया। उन्होंने बहुत सोच समझकर फिल्में चुनी। उसी दौर में राखी ने सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा में एक छोटी सी लेकिन यादगार भूमिका निभाई।

बाद राखी की कुछ बहुत ही सफल फिल्में आईं, जिनमें से एक थी फिल्म ब्लैकमेल, जिसमें नायक थे धर्मेंद्र, जो राखी की पहली फिल्म जीवन मृत्यु में भी नायक थे। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने राखी से राजेंद्र कृष्ण के इस गीत के जरिए जो कुछ कहा, जमाना आज उस बात को दोबारा तिबारा बल्कि हजार हजार बार कहते हुए भी नहीं थकता।

राखी स्वयं अपनी फिल्म शर्मिली को एक यादगार फिल्म मानती हैं, जिसमें उनकी दोहरी भूमिका थी। आज भी छोटे पर्दे पर इस फिल्म को देखकर लड़के आहें भरते हैं और लड़कियां कहती हैं, हाय कितनी प्यारी लग रही है ना।

0: आंगन।
1: अभिनेत्री राखी ने कुछ ऐसी फिल्में भी की जो व्यावसायिक तो नहीं थी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण थी, जैसे फिल्म परमा, फिल्म वित्त निगम की फिल्म 27 डाउन। इसके अलावा उन्होंने एक असमिया फिल्म भी की थी। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ राखी ने लगभग 2 दर्जन फिल्में की। खास बात ये कि इनमें वे कहीं अमिताभ की नायिका हैं तो कहीं माँ। फिल्म काला पत्थर और फिल्म कस्मे वादे।

अमिताभ बच्चन के अलावा अन्य नायकों के साथ भी राखी की बेमिसाल जोड़ी बनी।

बात चल रही है राखी की अलग अलग नायकों के साथ अभिनीत फिल्मों की। यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी में राखी की अहम भूमिका थी। इस फिल्म में शशि कपूर और अमिताभ बच्चन एक साथ थे।

सन 1973 में राखी ने लेखक, निर्देशक और गीतकार गुलजार से ब्याह रचा लिया। आज उनकी बेटी बोस्की यानी मेघना खुद फिल्म निर्देशिका बन चुकी हैं। उनकी पहली फिल्म फिलहाल काफी चर्चित रही। अपने फिल्मी करियर के बाद के दिनों में राखी ने चरित्र भूमिका निभानी शुरू की। आज के जमाने के कई नायकों की माँ की भूमिकाएं राखी ने निभाई हैं।

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे ये वो कैप्सूल है।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती का प्रसारण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजे हैं। अब लीजिए पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

बैजू बावरा और आज़ाद फिल्म के गाने सुनी, आवाज़ लता मंगेशकर की थी। आइए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म का नाम है नया अंदाज़। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और शमशाद बेगम।

दिल अपना और प्रीत पराई, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। आइए सुनते हैं कोहिनूर फिल्म का यह अगला गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर।

भाभी की चूड़ियाँ। इस फिल्म का ये नगमा अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, और अब लीजिए पेश है आरती फिल्म का गीत जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में दिल एक मंदिर फिल्म का ये गीत। और अब अगला गीत हमने लिया है गीता दत्त की आवाज़ में, फिल्म का नाम है साहिब बीवी और गुलाम।

अब आइए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है अकेली मत जइयो। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में लीजिए पेश है।

काजल फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, और अब कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं बहू बेगम फिल्म का ये गीत।

फिल्म बहू बेगम के इस गीत के साथ ही रजनीगंधा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार हिंदी और अंग्रेजी में। प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार में मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्ण ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुल थुर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिक

0: संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज यूजीसी नीट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पारी में आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की भी शुरुआत की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य के स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशहरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जांच में अब तक 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan today after laying the foundation stones for and inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state. He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026, the Modi government had introduced major schemes for farmers and continuously increased the minimum support price. Mr. Shah also highlighted the potential of the dairy sector to transform the rural economy. Vice President C.P. Radhakrishnan has called upon graduating students to use their knowledge, skills and innovation for nation building guided by the principle of nation first. Addressing the 22nd convocation of SRM Institute of Science and Technology at Kathankulathur near Chennai, the Vice President said, India's youth have a vital role to play in the country's journey towards Viksit Bharat by 2047.
2: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship.